ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, सत संवत 1948 के आषाढ़ माह की तृतीय तिथि। तदनुसार दिनांक 24 जून सन 2026। इस समय सवेरे की 5:57 होने को है। आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सन सिटी चैनल पर हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज हुरमुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हुरमुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज

0: बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। आइए अब आपको ले चलते हैं विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन।

आज का कथन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास सदैव रखना चाहिए। ये था आज का चिंतन। लीजिए सुनते हैं भक्ति रचनाएं वंदनवार में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती झरोका में। लीजिए सुनिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 229 6:35 से। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार एसएल कंडारा। इस कार्यक्रम का 7वां भाग आज आप सुनेंगे समय सुबह व शाम 6:45 से। सात बजे लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत 7:30 से हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 से और दिन में 2 से त्रिवेणी आप सुनेंगे। चित्रलोक का समय होगा सुबह 8:30 से और रात्रि 8:15 से। 9:30 से आज के फनकार केंद्रित होगा अभिनेत्री करिश्मा कपूर पर। दस बजे से पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। गीतकार शायर और लेखक शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग आज आप सुनेंगे। समय 10:00। ग्यारह बजे से लेकर आएंगे रंग तरंग और 12:05 से समय होगा यादों की महफिल का। एक बजे से वक्त होगा सुरीला सफर का। 2:30 से सदाबहार नगमे आप सुनेंगे।

चार बजे से पिटारा में आज के मेहमान चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग आप सुनेंगे। संपादन सहायक काजल भद्रगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। वक्त हमने बताया 4 बजे दिन में। पांच बजे से छाया गीत, 5:30 से तराने नए पुराने लेकर आएंगे। छह 6:35 से वक्त होगा भक्ति रचनाओं का संध्या रंजन में। 7 बजे से फौजी साथियों के लिए जयमाला लेकर हाजिर होंगे। 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग सुनिएगा। 8 बजे से हवा महल में सुनिएगा झलकी वो कैसी होगी, लेखक सुधा जौहरी, निर्देशक H.S. व्यास। 9 बजे से प्रोग्राम होगा आपके लिए। 9:30 से आज के फनकार और 10 बजे से छाया गीत आप सुनेंगे। दस 10:30 से ढलती जाए रात। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्री राम के मन में ये सोच व्याप्त है कि राजा जनक समेत भरत सभी माताएं अयोध्या तथा जनकपुरवासी दुखी हैं और व्यर्थ ही चित्रकूट में वनवास के कष्ट भोग रहे हैं। उनकी चिंता सुनकर वशिष्ठ जी मिथिलापति से सबकी दुविधा समाप्त करने का आग्रह करते हैं। मुनिवर के वचन सुनकर जनक जी का ज्ञान और वैराग्य तिरोहित हो गए। वो प्रेम और मोह के वशीभूत हो गए। उन्हें लगा कि यहां आकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने तो पुत्र विरह में अपने प्राण त्याग दिए और वे उन्हें और गहन वन में भेजकर अपने प्राण भी नहीं त्याग सकेंगे। मिथिलापति को नहीं समझ में आता कि अब क्या किया जाए। अतः क्या किया जाए इसका निर्णय उन्होंने भरत पर छोड़ दिया। भरत ने कहा, सारा जगत जानता है कि सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। बैर अंधा होता है और प्रेम में बुद्धि साथ छोड़ जाती है। अतः मुझसे न पूछकर श्री राम की रुचि का ध्यान रखते हुए वही करना चाहिए जो सर्वसम्मत तथा सबके लिए हितकारी हो।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस की भाग 229।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एस एल कंडारा जी। आपको तबले पर संगति कर रहे हैं श्री संतोष मिश्र जी। पंडित जी, रागों की चर्चा हो रही है। पिछली कड़ी में हमने राग शंकरा की बात की, आज राग मिश्र खमाज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जैन जी, ये बहुत रेलेवेंट और बहुत आपने अच्छा चयन किया, क्योंकि शंकरा बहुत गंभीर राग है
1: जी,
2: जबकि मिश्र खमाज लाइट प्रकृति का राग है, सुगम संगीत में ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है
1: जी जी।
2: और ठुमरी दादरे में मुख्य रूप से खमाज में ठुमरी गाई जाती है
1: जी, बिल्कुल।
2: और लाइट म्यूजिक का सबसे प्रिय राग है ये मिश्र खमाज।
1: हाँ,
2: ठुमरी दादरा में बनारस और पटियाला, ये दो स्कूल बहुत बड़े स्कूल रहे हैं
1: जी।
2: पटियाला में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उनके बेटे मुनव्वर अली खान, अजय चक्रवर्ती, जगदीश प्रसाद पंडित, ये सब लोग उस परंपरा को फॉलो करते रहे
1: जी।
2: जबकि बनारस घराने की जो स्टाइल है ठुमरी, उसमें सिद्धेश्वरी देवी और महादेव प्रसाद मिश्रा, उनके पहले मौजुद्दीन खां, और बड़ा उनका इतिहास
1: जी।
2: लेकिन जो उसके बाद जो कलाकार मुख्य रूप से जिनका योगदान रहा है वो गिरजा देवी जी, और गिरजा देवी जी के बाद सिद्धेश्वरी देवी या उनकी समकालीन कह लीजिए आप, और पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी जो इस परंपरा के बहुत बड़े एक्सपोनेंट थे। तो उनके साथ मैंने कुछ कॉन्सर्ट संगत की थी, तो मुझे भी उनके गाने की बड़ी मन में उनका गाना बैठा, तो उनकी परंपरा से मैं एक ठुमरी पेश करना चाहता हूँ आज मिश्र खमाज।
1: स्वागत।

0: क्या बात है पंडित जी, जैसे जैसे इस ठुमरी के स्वर गूंज रहे थे मन में गीत उभर रहा था फिल्म बुढ़ा मिल गया।
1: अरे बहुत अच्छा मन्नाडे साहब का,
0: मन्नाडे साहब का गाना है
1: बिल्कुल,
0: आयो कहां से घनश्याम
1: बिल्कुल।
0: और ये शब्द मजरू सुल्तानपुरी के हैं, संगीतकार राहुल देव बर्मन। यही गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं
1: जरूर।

0: मिश्र खमाश पर आधारित बुढ़ा मिल गया फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं। इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब समाप्त हो रही है। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक विको वज्रदंती। विको वज्रदंती मजेदार ही नहीं असरदार, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
2: विको वज्रदंती, शायद इसमें आपको टेस्ट का मजा नहीं मिलेगा, झाग का मजा नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे तो मिलेगा क्या? असर कम प्रॉब्लम्स पर। इसकी 18 जड़ी बूटियां स्वोलन गम्स, ब्लीडिंग गम्स जैसे प्रॉब्लम्स को रखे दूर और दांतों को रखे हेल्दी। मजा नहीं, असर। अब पेस्ट है, पिक्चर का टिकट थोड़ी।
3: विको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
2: मजेदार नहीं असरदार।

धरती माता, ये था फिल्म का नाम। पंकज मलिक, उमा शशि, केएल सहगल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। पंकज मलिक ने संगीत दिया और पंडित सुदर्शन ने इसे लिखा है।

fuera, Coca, fuera.

0: शमशाद बेगम और गीता बाली की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रंगीन रातें फिल्म का नाम था। केदार शर्मा ने इसे लिखा, रोशन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।

0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।
3: अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। अरे भाई निकल

0: अरे भाई अरे भाई
1: अरे भाई निकल के आ घर से आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से देख ले फिर से, अरे भाई निकल

अपने मन को दीप बना, खुद अपने मन को दीप बना। तू रस्ते की हर ठोकर को, तू रस्ते की हर ठोकर को कदमों से

0: सुधा मल्होत्रा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। तू अपने मन का ये गीत था, जलदीप फिल्म का नाम था।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है।

0: किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बंदी फिल्म का नाम था। इंदिवर ने इसे लिखा। श्यामलाल मित्रा का संगीत।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में।
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

ये सुदास हेमलता और बंसरी सेनगुप्ता की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म का नाम था। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और उन्हीं का संगीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में धर्मवीर इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे दूसरा आदमी फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा, राजेश रोशन का संगीत। इसके साथ ही प्रोग्राम हमें राही प्यार के यही संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात रिले किए जाएंगे।
2: वाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को

0: मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
2: रास लाफान परियोजना में जो वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
2: हम लोगों ने

0: था कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेशी सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
1: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
0: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
4: ओवरऑल अभी तक

3% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25 से 50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए

0: जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज करेंगे हम लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म के इस गाने के साथ, जिसे आवाजें दी है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। स्वानंद किरकिरे की बोल और शांतनु मोइत्रा का संगीत।

फिल्म संगीत की ही आखिरी पेशकश है मुल्क फिल्म से। शफाकत की आवाज, शकील आजमी के अल्फाज और साज है अनुराग साइकिया की।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हमारा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम नमस्कार।

0: अभ्यास हमें बलवान बनाता है, दुख हमें इंसान बनाता है, हार हमें विनम्रता सिखाती है, जीत हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमेशा अपने लोगों पर, अपने आप पर और अपने ईश्वर पर विश्वास रखना।
1: जी दोस्तों, बिल्कुल, इस मोटिवेशनल कोट के साथ में स्वागत है आपका आकाशवाणी की जोधपुर केंद्र पर। मैं हूं आपकी आज की होस्ट मनीषा जोशी बोरा और मेरे साथ हैं
0: मीता मुल्तानी।
1: जी दोस्तों, बिल्कुल समय हो गया है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार का। प्रोग्राम वो जिसमें हम आपको रूबरू करवाते हैं कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ। इसी के साथ दोस्तों आपको रखते हैं अपडेट, लेकिन इन सबसे पहले हो जाए हमारी टीम का परिचय जो निर्बाध रूप से आप तक सभी प्रोग्राम्स पहुंचाती है। दोस्तों, आज ट्रांसमीटर पर हमारा साथ दे रहे हैं नरेंद्र सिंह राठौड़ और कैलाश चंद्र सोलंकी।
0: कंट्रोल रूम से कंट्रोलिंग कर रहे हैं इंजीनियर प्रवीण कुमार।
1: कंसोल पर हमारा साथ दे रहे हैं शराफत अली।
0: और एफएम पर कंसोल संभाल रही है उद्घोषिका मोनिका।
1: इसी के साथ ही दोस्तों, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश लामरोड। दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको गीत नए नवेले।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण

0: राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: दोस्तों स्वागत है आपका फिर से नमस्कार प्रोग्राम में, जो कि है जानकारियों से भरा प्रोग्राम। और इसी के साथ भी हम आपको सुनवाते हैं नए नवेले गीत और साथ ही आपके साथ शेयर करते हैं कुछ प्रेरक प्रसंग। दोस्तों आज का जो प्रेरक प्रसंग है वो है मेहनत का दीपक। दोस्तों जो दादी नानियाँ हमें कहानी सुनाती हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं, हमें एक सही दिशा देती हैं। तो क्यों ना एक कहानी आपके साथ साझा की जाए। तो हम आपके लिए लाए हैं मेहनत का दीपक। दोस्तों इस कहानी में ऐसा होता है कि एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ाई में थोड़ा सामान्य सा था। जब भी परीक्षा होती उसके कुछ दोस्त उससे अच्छे अंक लाते। धीरे धीरे अर्जुन को लगने लगा कि वो कभी सफल ही नहीं हो पाएगा। एक दिन वो बहुत निराश होकर गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक के पास गया और उनसे बोला कि गुरुजी मैं मेहनत तो करता हूँ लेकिन फिर भी सबसे पीछे रह जाता हूँ। तो गुरुजी उसे अपने घर के आंगन में ले गए। वहाँ एक छोटा सा दीपक जल रहा था। गुरुजी ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि यह छोटा सा दीपक पूरे गांव को रोशन कर सकता है? तो अर्जुन ने कहा नहीं गुरुजी, ये तो केवल अपने आसपास ही प्रकाश देता है। फिर गुरुजी मुस्कुराए और बोले
2: लेकिन यह दीपक अपनी पूरी क्षमता से प्रकाश दे रहा है। यदि गांव का हर घर एक एक दीपक जला दे तो पूरा गांव रोशन हो जाएगा। फिर गुरुजी ने कहा सफलता भी ऐसी ही होती है, दूसरों से तुलना करने के बजाय हर दिन अपनी पूरी क्षमता से मेहनत करो, छोटी छोटी प्रगति ही एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। फिर क्या हुआ दोस्तों, अर्जुन ने गुरुजी की बात गांठ बांध ली। उसने रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसके अंक बढ़ने लगे और कुछ ही वर्षों बाद वह एक सफल अधिकारी बन गया। तो मित्रों इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों से तुलना करने के बजाय स्वयं को हर दिन बेहतर बनाने का प्रयास करें। लगातार की गई छोटी छोटी मेहनत ही बड़ी सफलता का आधार बनती है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और दिन प्रतिदिन की मेहनत से सफलता मिलती है। तो अब इसी बात को आप भी अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए और हमेशा मेहनत की ओर कदम बढ़ाइए। और अब चलते हैं इस म्यूजिकल ट्रैक की ओर।

0: प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले, विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

श्रोताओं, अभी एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से हमने यह सीखा कि दिन प्रतिदिन की मेहनत से सफलता मिलती है, लेकिन यदि उसमें कोई मुश्किलें आए तो आप डरना मत, क्योंकि मुश्किलें आए तो कभी मत डर जाना। साहस रखना, उनसे निडरता से लड़ जाना, बस विश्वास रखना अपने हृदय में हमेशा, और मेहनत से संसार में अपना नाम कमाना। तो मेहनत ही सफलता की कुंजी है। यह सीख आपको जीवन में हमेशा आगे ही आगे ले जाएगी। सुनते हैं नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं कि प्रयास, छोटे छोटे प्रयास जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं एक बड़ी सफलता पाने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे बारिश की बूंदें होती हैं, वे भले ही छोटी होती हैं लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों की का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ले आते हैं। इसीलिए आप प्रयास कीजिए, भले ही छोटा ही क्यों ना हो, वो आपकी सफलता का एक बड़ा कारण ज़रूर बनेगा।

0: हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर इस समय सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ पलों में हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक की। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के सांगानेर में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1538 विकास कार्यों का

0: शिलान्यास और लोकार्पण करेंगी। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को निराधार बताया, कहा ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और राज्य में प्री मानसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ा, आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स समूह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी सदस्य देशों के बीच अधिक एकजुटता और सहयोग की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान सदस्य देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अब समय केवल उत्पादन बढ़ाने का नहीं बल्कि भारतीय उत्पादों और ब्रांडों को वैश्विक पहचान दिलाने का है। कल नई दिल्ली में वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र विषय पर दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि भारत की गुणवत्ता, नवाचार और क्षमता को दुनिया के हर बाजार तक पहुंचाना सरकार का संकल्प है। श्री सिंह ने कहा कि देश के विभिन्न राज्य और वस्त्र क्षेत्र के सभी हितधारक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले सालों में ये गति और तेज होगी। केंद्र, राज्य, जिले और उद्योग जगत के सामूहिक प्रयासों से उत्पादन, निर्यात और मूल्य संवर्धन के नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे।
1: सिल्क बोर्ड 26,000 मेट्रिक टन पर 2014 में प्रोडक्शन साइज था, अभी 42,000 से ज्यादा है। आने वाले दिन में प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी होनी चाहिए। फैब्रिकेटर से भी कहूंगा, एक लाइन तुम अपने ब्रांड का भले उस नाम से नहीं लेकिन दूसरे नाम से एक्सपोर्ट करना शुरू करें, जिससे इंडिया का ब्रांडिंग भी हो।
0: वस्त्र मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात को 37 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। सम्मेलन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उद्योग जगत के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। पशुपालन और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ब्यावर की एक गौशाला से इसका शुभारंभ करेंगे। पशुपालन विभाग ने बताया कि ये वायरस मक्खी, मच्छर और किलनियों के जरिए फैलता है। विभाग ने सभी पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण कराने और बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि वर्ष 2022-2023 में इस बीमारी के कारण राज्य में लगभग 76,000 गौवंश प्रभावित हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर की सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1,538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें जयपुर भीलवाड़ा मार्ग के मुहाना मोड़ जंक्शन पर 124 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर और बंबाला क्षेत्र में 88 करोड़ रुपए के सीवरेज और एसटीपी कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा भांकरोटा में नए ट्रोमा सेंटर और पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जेडीए, नगर निगम, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा से जुड़े 208 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यों को गति देने के लिए अत्याधुनिक सुपर सकर और मैकेनिकल लिटर पिकर मशीनों को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी आवासीय भूमि का कानूनी स्वामित्व देने के लिए स्वामित्व कार्ड भी बांटे जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं।

केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को भ्रामक और निराधार बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है और सरकार इसकी लगातार निगरानी रख रही है। मंत्रालय ने कहा कि 20% एथेनॉल मिश्रण वाले E20 पेट्रोल से वाहनों के इंजन खराब होने की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर गन्ने का रस सीधे पेट्रोल में मिलाने या ईंधन टैंक के पास जमा होने के वीडियो पूरी तरह से झूठे हैं। E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन का बीमा खत्म होने का दावा भी गलत पाया गया है। सरकार के अनुसार अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में यह व्यवस्था पहले से ही सफलतापूर्वक लागू है। इस कार्यक्रम से देश में कच्चे तेल की आयात में कमी आई है और 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। साथ ही कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। राज्य में प्री मानसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। आज राजधानी जयपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सीकर, झुंझुनू, करौली, श्रीगंगानगर और भरतपुर में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। विभाग ने आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम के इस बदलाव को देखते हुए किसानों के लिए विभाग ने विशेष एडवाइजर जारी की है। किसानों से खेतों और मंडियों में खुले में रखी पकी हुई फसलों और अनाज को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ढककर रखने की अपील की गई है। रेलवे ने यात्री अनुशासन को मजबूत करने और यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नियमों में कई बदलाव किए हैं। बिना टिकट यात्रा करने वालों पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है। रेलवे बोर्ड आदेश के अनुसार 20 जून से देशभर में तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया है। जयपुर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूजा मित्तल ने बताया कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों में खतरनाक और प्रतिबंधित सामान ले जाने के मामलों में भी सख्ती बढ़ाई गई है। पटाखे, गैस सिलेंडर या विस्फोटक सामग्री ले जाने पर न्यूनतम 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। गंभीर मामलों में आरोपी को जेल भी भेजा जा सकता है। वहीं अन्य व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट पर यात्रा किए जाने पर पूरी यात्रा का किराया और कम से कम 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा विभाग की विभिन्न भर्तियों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतिम चरण के साक्षात्कार 2 और 3 जुलाई को होंगे। सहायक आचार्य इतिहास और पुस्तकालय अध्यक्ष के साक्षात्कार 6 से 17 जुलाई तक चलेंगे। सहायक आचार्य संस्कृत के लिए 6 से 16 जुलाई और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के अंतिम चरण के इंटरव्यू 6 से 10 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न सुपर स्पेशलिटी के लिए सहायक आचार्य के साक्षात्कार 10 जुलाई को होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक की। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए राज्य स्तरीय निशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के सांगानेर में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1,538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को निराधार बताया, कहा यह पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और राज्य में प्री मानसून गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ा। आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में तेज बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचारों के बाद आपका पुनः स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। मित्रों, आज है 24 जून और 24 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिन का मुख्य उद्देश्य कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देना है और कूटनीति में लैंगिक समानता को

0: बढ़ावा देना है।
1: जी दोस्तों, महिलाएं विश्व भर में शांति स्थापना, संघर्ष समाधान, मानवाधिकारों की रक्षा और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर भी कूटनीति के उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है और इसी तरफ ध्यान गया यूनाइटेड नेशंस का और उन्होंने इस दिवस को मनाना शुरू किया दोस्तों, ताकि कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सम्मान दिया जा सके और उनके नेतृत्व को बढ़ावा मिल सके। दोस्तों, जब महिलाएं कूटनीति में समान रूप से भाग लेती हैं तो विश्व में शांति, विकास और सहयोग की संभावनाएं और अधिक मजबूत होती हैं। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिलाओं की उस महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो वे देशों के बीच संबंध मजबूत करने, शांति स्थापित करने और वैश्विक समस्याओं के समाधान में

0: मजबूत करने, शांति स्थापित करने और वैश्विक समस्याओं के समाधान में निभाती हैं। दोस्तों, क्या है कूटनीति? कूटनीति वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से देश आपसी बातचीत, समझौते और सहयोग के जरिए अपने संबंधों को बेहतर बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान खोजते हैं। और इस कार्य में राजदूत, विदेश नीति विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 जून 2022 को एक प्रस्ताव पारित करके इस दिवस की स्थापना की गई थी। और मित्रों, यह दिन याद दिलाता है कि कूटनीति केवल पुरुषों का कार्यक्षेत्र नहीं रहा है और इसमें महिलाओं की मौजूदगी वैश्विक प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यक है।

0: दिन क्या क्या हुआ। सबसे पहले 1564 की बात करते हैं। आज ही के दिन भारत की वीरांगना महारानी दुर्गावती मुगलों से जंग के दौरान शहीद हुई थी।
1: वर्ष 1793 में आज ही के दिन फ्रांस ने पहली बार रिपब्लिकन संविधान अपनाया था। मित्रों,
0: 1963 में आज ही के दिन डाक एवं टेलीग्राफ विभाग ने राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत की थी।
1: साल 1974 और दिन था आज का। भारतीय टीम लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में इंग्लैंड के खिलाफ केवल 42 रन पर सिमट गई। यह टेस्ट में भारत का न्यूनतम स्कोर है और वह टेस्ट मैच पारी और अपने 285 रन से उसमें हार गया था।
0: दोस्तों, 2010 में आज ही के दिन विंबलडन में टेनिस इतिहास का सबसे लंबा मैच 11 घंटे और 5 मिनट तक चला था। ये ऐतिहासिक मैच अमेरिका के जॉन इस्नर और फ्रांस के निकोलस माहुत के बीच हुआ था।
1: साल 1983 में आज ही के दिन पहली बार अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री सैली राइड ने अंतरिक्ष में 6 दिन बिताकर पृथ्वी वापस आई थी। टेनिस के पूर्व खिलाड़ी रह चुकी राइड ने इस यात्रा में फ्लाइंग इंजीनियर के रूप में काम किया। उन्होंने 50 फुट लंबी एक यांत्रिक बाह को डिजाइन और संभालने का काम भी किया। इस यांत्रिक बाह का काम उपग्रहों को पकड़कर अपनी तरफ खींचना था ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। इतिहास की बातें और भी करेंगे, पहले सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको आज के सेगमेंट के बारे में। आज का हमारा सेगमेंट है इतिहास में आज मल्हार। दोस्तों हम बात करेंगे आज मल्हार के बारे में। छत्तीसगढ़ में स्थित ऐतिहासिक और पुरातात्विक नगरी मल्हार अपनी समृद्ध प्राचीन विरासत के लिए प्रसिद्ध है। ये बिलासपुर जिले में स्थित है और यहाँ शैव, जैन और बौद्ध धर्म के प्राचीन साक्ष्य, मूर्तियाँ और दुर्लभ कलाकृतियाँ मिली हैं। दोस्तों यहाँ का पुरातात्विक वैभव, इसलिए इतिहास जो है वो इतिहास प्रेमियों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। और मल्हार की जो पुरातात्विक और ऐतिहासिक संपदा है उसका विस्तृत विवरण भारत कोश में भी उपलब्ध है। दोस्तों यहाँ के मुख्य आकर्षणों की अगर जानकारी देखें तो यहाँ पर मौर्य, सातवाहन, कुषाण और गुप्त वंश के शासनकाल का एक प्रमुख व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र मल्हार रहा है। प्रमुख मंदिर और स्मारक जो है वो यहाँ प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर है और प्राचीन विष्णु मंदिर भी यहाँ का प्रमुख है, जो कि उत्कृष्ट मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हैं। और संग्रहालय जो यहाँ पर स्थित है वो है एक स्थानीय पुरातत्व संग्रहालय है, जो कि जहाँ पर खुदाई में बहुत ही दुर्लभ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी के बर्तन भी जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं वो अभी तक सहज कर रखे गए हैं।
4: श्रोताओं, प्राचीन नगर मल्हार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मस्तूरी से 14 किलोमीटर दूर है। प्राचीन काल में मल्हार महत्वपूर्ण नगर रहा होगा। इस नगर को राजधानी का दर्जा प्राप्त था या न था, इस पर तो विभिन्न मत है, लेकिन इस नगर का जो पुरातत्व संपदा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इस नगर का उत्खनन प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग के ऐसे शोध में पता चला, जिसमें प्रतिमाएं, विभिन्न संरचनाएं, सिक्के, पॉटरी, शिलालेख एवं अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई थी। इनके आधार पर आकलन किया गया कि इस स्थान से 5 ऐतिहासिक कालखंडों के प्रमाण मिले हैं और यह नगर जो पहले आबाद रहा होगा, अब यह टीले के रूप में जो प्राप्त हुआ, इसमें जो 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच का यह मंदिर प्राप्त हुआ है, इस शिवालय का निर्माण सोमवंशी शासकों ने कराया था। मंदिर के समीप ही प्रांगण में 2 बड़ी प्रतिमाओं के शीर्ष भाग रखे हुए हैं। विशालता देखते हुए ग्रामीण जनों ने महाभारत कालीन भीमा किचक के रूप में इसकी पहचान की है। मंदिर के द्वार पट पर शिव के गणों की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। मुख्य द्वार पर शाखा पर परिचारिकाएं स्थापित है। द्वार पर किए गए बेलबूटे के अलंकरण देखकर सिरपुर के तिवर देव विहार का स्मरण हो जाता है। मंदिर की भित्तियों में प्रतिमाएं लगाई गई हैं और मंदिर के निर्माण में बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है। मंदिर की भित्तियों पर पशु पक्षियों, यक्ष, दक्षिणी, गंधर्व, कीर्तिमुख, भारवाग आदि प्रतिमाएं भी बहुत ही अच्छे से और बारीकी से उकेरी गई है। द्वार पर स्थापित नदी देवियों के वस्त्र अलंकरण भी बहुत ही मनमोहक हैं, जिसे शिल्पकार ने अपने कार्य को बहुत ही महीनता से अंजाम दिया है। तो कुल मिलाकर मल्हार का छत्तीसगढ़ की पुरातत्व धरोहर के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो मित्रों, जब भी आपको समय मिले जरूर इस स्थान का भ्रमण करें।

0: दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं आज के काम की बात। दोस्तों वर्तमान जीवन शैली में अधिकतर लोगों में आजकल एक आम समस्या देखी गई है और वो है एड़ियों के दर्द की समस्या। दोस्तों ये समस्या ज़्यादा देर तक खड़े रहने और कार्य करने की वजह से एक आम समस्या सी हो गई है और महिलाओं में ज़्यादातर समय खड़ा खड़े ही सारे कार्य करती हैं महिलाएँ, तो ये उनमें समस्या ज़्यादातर देखी गई है। लेकिन पुरुषों में भी ये समस्या देखी गई है, क्योंकि ऐसे जो पुरुष जो कार्य करते हैं जहाँ पर उनको कार्यस्थल पर अधिक देर तक खड़ा रहना पड़ता है, तो उनमें भी ये समस्या अब आम हो गई है। और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या है इसके कारण और हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं।
1: दोस्तों एड़ी का दर्द, जिसे हम हील पेन कहते हैं, इसका एक प्रमुख कारण प्लांटर फेशियाइटिस होता है, जिसमें पैर के तलवे की उत्तक पट्टी में सूजन आ जाती है। लंबे समय तक खड़े रहना, अधिक चलना या दौड़ना, मोटापा, गलत आकार के जूते पहनना, बढ़ती उम्र, पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आदि ये इसके प्रमुख कारण हैं। साथ ही सुबह उठते समय एड़ी में तेज दर्द या चलने या खड़े होने पर दर्द का बढ़ना, एड़ी में सूजन या अकड़न का होना, ये इसके लक्षण हैं।
0: दोस्तों ये एक आम समस्या होती जा रही है और इस समस्या से निपटने के लिए कोई दवाई हमारे लिए सहायक नहीं होगी, क्योंकि दवाई का असर जो होता है वो कुछ देर के लिए होता है। इसके लिए हमें यही है कि बचाव ही उपाय है। तो बचाव क्या हो सकता है कि आप आरामदायक और सही आकार के जूते पहनें, लंबे समय तक लगातार खड़े रहने से बचें, बीच बीच में थोड़े से छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, बैठ कर कार्य कीजिए, उसके बाद में आप अपने वजन

नियंत्रित रखिए। अगर आपका वजन ज्यादा है तो उस पर ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा अपने, क्योंकि हमारे बॉडी का ज्यादातर वेट जो होता है वो पैर ही लेते हैं, पैर ही सहन करते हैं, तो आप अपने बॉडी का वेट जो है वो नियंत्रित रखिए। उसके अलावा आप अपने पैरों को नियमित स्ट्रेचिंग कीजिए, व्यायाम कीजिए, और जब दर्द ज़्यादा हो तब आप थोड़ी देर बैठ जाइए। इसके अलावा जो है आवश्यकता पड़ने पर आप एडी के लिए कुशन या सॉफ्ट सोल का उपयोग कर सकते हैं। वैसे ये जो उपाय है ये सबसे ज़्यादा कारगर होता है कि आप सॉफ्ट कुशन वाले सॉफ्ट एडी जो सोल होता है वो ऐसे चप्पल पहने, और उसमें आपको देखा जाएगा कि उसमें सबसे ज़्यादा आराम आपको मिलेगा, क्योंकि ये हमने भी टेस्ट एंड ट्राइड है और हमें भी इससे इसमें बहुत लाभ मिला है। तो ये हमने एक देखा है कि ये सबसे कारगर उपाय है जो हमें आराम देता है। तो ये थी हमारे आज की काम की बात। होपफुल आपको पसंद आई होगी और आपके भी काम की बात साबित हुई होगी।

0: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर
2: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर
3: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने जोधपुर मोबाइल 9829027065

श्रोताओं, अब हम करते हैं आज की खास बात के बारे में। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जून को राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार शामिल थे। दूसरे चरण के प्रमुख पद्म पुरस्कार विजेताओं में भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा और उनके अभिनेता और साथ ही अभिनेता आर माधवन को सिनेमा और खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही दिग्गज मलयालम अभिनेता ममूटी और प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण से नवाजा गया। इस तरह इस वर्ष यह 2026 में पद्मश्री पुरस्कारों पद्म पुरस्कारों का दूसरा चरण था। इसके पहले चरण में 66 हस्तियों को सम्मानित किया गया था। तो मित्रों, ये थी आज की खास बात। उठे सबके कदम।

0: दोस्तों प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के जयंती विशेष में। दोस्तों पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक, संगीतज्ञ, शिक्षक और संगीत शास्त्री थे। आज के दिन 24 जून को यानी कि 1897 में गुजरात के खंबात में के गांव में जन्मे ओंकारनाथ जी ग्वालियर घराने की परंपरा के प्रमुख प्रतिनिधि गायक थे। दोस्तों उन्होंने महान संगीताचार्य विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी और अपनी भावपूर्ण और प्रभावशाली गायकी के लिए वे प्रसिद्ध रहे। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को देश विदेश में लोकप्रिय बनाया और इसी के साथ ही उन्होंने संगीत पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जिनमें संगीतांजलि विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसके साथ ही दोस्तों वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत संकाय के डीन भी रहे और संगीत शिक्षा को नई दिशा दी और इसी के लिए संगीत में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और साथ ही संगीत नाटक अकादमी जैसे पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए।
1: इसी के साथ ही जयंती के इस अवसर पर हम आज याद करते हैं प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े को जिनका जन्म 24 जून 1863 को महाराष्ट्र में हुआ था। उन्हें इतिहासाचार्य राजवाड़े के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत और व्याकरण के वे प्रकांड पंडित थे जिसका प्रमाण उनकी सुप्रसिद्ध कृतियां राजवाड़े धातुकोश तथा संस्कृत भाषेचा उलगड़ा आदि में दिखाई देता है। विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने भारतीय विवाह संस्था का इतिहास नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना मराठी भाषा में की थी। उनके व्यापक अध्ययन और चिंतन की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मित्रों आगे भी हम इस बारे में बात करेंगे। सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, आज जयंती है मास्टर तारा सिंह की, जो कि भारत के प्रमुख सिख नेता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। 24 जून 1885 को रावलपिंडी में जन्मे तारा सिंह का मूल नाम नानक चंद था और उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया था। सिख समुदाय के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। इसके साथ ही उन्होंने गुरुद्वारों के प्रबंधन को जनता के हाथों में लाने के लिए चलाए गए गुरुद्वारा सुधार आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, भारत विभाजन के समय भी उनकी भूमिका मुख्य रही। भारत के विभाजन के दौरान

0: उन्होंने सिख समुदाय के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय प्रयास किए और विभाजन के बाद वे पंजाब और सिख समाज के प्रमुख नेताओं में गिने जाने लगे। दोस्तों, मास्टर तारा सिंह ने शिक्षा, सामाजिक सुधार और धार्मिक जागरूकता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए और वे सिख समुदाय की एकता और उत्थान के लिए जीवन भर कार्यरत रहे।
1: श्रोताओं, जयंती के बाद हम याद करते हैं उन महापुरुषों को जो आज के दिन इस दुनिया से विदा हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चंद भारतीय सैनिकों में से एक दरबान सिंह नेगी, जिन्हें ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा युद्ध पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस मिला था, उनका आज ही के दिन निधन हुआ। दरबान सिंह नेगी करीब 33 साल के थे और उन्होंने 39वीं गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन में नायक के पद पर अपनी भूमिका निभाई। 23-24 नवंबर 1914 को उनकी रेजिमेंट ने दुश्मन से फेस्टुबर्ट के करीब ब्रिटिश खंडकों पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की। इस युद्ध के दौरान उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। साथ ही आज स्मृति दिवस मना रहे हैं हम भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी को, जिन्हें हम वीवी गिरी के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1969 से 1974 तक यह पद संभाला। इसके अलावा वे देश के तीसरे उपराष्ट्रपति और पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। एक प्रमुख मजदूर नेता और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनके योगदान के लिए उन्हें 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

0: दोस्तों, आज के दिन हम स्मृति दिवस मना रहे हैं भारतीय लेखक और पत्रकार अवधानम सीतारमन का। साहित्यिक और सांस्कृतिक त्रैमासिक त्रिवेणी जैसे अंग्रेजी और तेलुगु प्रकाशनों में उन्होंने अपना स्वतंत्र योगदान दिया। साथ ही लंदन की पत्रिका द स्टूडियो में एक कला सलाहकार के रूप में भी उन्होंने काम किया।
1: दोस्तों, इसके साथ ही आज हम मना रहे हैं पुण्य तिथि रानी दुर्गावती की, जो कि भारत के इतिहास की महान वीरांगनाओं में से एक थी। वे गोंडवाना राज्य की रानी थी और अपनी वीरता, कुशल शासन और मातृभूमि की रक्षा के लिए किए गए बलिदान के कारण आज भी सम्मानपूर्वक याद की जाती हैं। दोस्तों, पति की मृत्यु के बाद उनके पुत्र वीर नारायण बहुत छोटे थे, तो उन्होंने संरक्षिका के रूप में राज्य का शासन संभाला और उनके शासनकाल में गोंडवाना राज्य जो था वो बहुत समृद्ध हुआ और मजबूत प्रशासन बना। दुर्गावती को साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है और उनकी स्मृति में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी खोला गया है और भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया है।

श्रोताओं, ये प्रसिद्ध आरती लिखी थी पंडित श्रद्धाराम शर्मा ने, जिनका आज हम स्मरण दिवस मना रहे हैं। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के रूप में उन्हें वह प्रसिद्धि नहीं मिली जो इन्हें इनके द्वारा लिखी गई अमर आरती ओम जय जगदीश हरे के कारण मिली। पंडित जी सनातन धर्म प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संगीतज्ञ होने के साथ साथ हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। अपनी विलक्षण प्रतिभा और ओजस्वी वाक्पटुता के बल पर उन्होंने पंजाब में नवीन सामाजिक चेतना एवं धार्मिक उत्साह जगाया, जिससे आगे चलकर आर्य समाज के लिए पहले से निर्मित एक उर्वर भूमि मिली। मित्रों,

0: दोस्तों आज के वर्ल्ड
1: फीफा वर्ल्ड कप
0: फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा के बारे में बात कर लेते हैं। कल के जो मैच में फ्रांस, नॉर्वे और अल्जीरिया जीते थे और आज जो मैच खेले जाएंगे उनमें कोलंबिया वर्सेस कांगो, स्विट्जरलैंड वर्सेस कनाडा, बोस्निया वर्सेस हर्जेगोविना, मोरक्को वर्सेस हैती और स्कॉटलैंड वर्सेस ब्राजील के मैच आज खेले जाएंगे।
1: इसी के साथ श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो हम अब इजाजत देते हैं आपसे। और अब मीता मुल्तानी
0: और मैं मनीषा जोशी बोहरा, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार, जिसे हमने आकाशवाणी के सूर्य नगरी चैनल से प्रस्तुत किया था। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के ठीक 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम मरुधरारा गीत।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी

तो राम राम सा, घणो स्वागत, खमा घणी सलाम, जय बाबेरी सा। तो हुकुम, सबसे पहली आज रो कार्यक्रम मरदुरारा गीत आप तक राजी खुशी पुगाउन वाली टीम सु आपरी ओळखाण कराए दो। कंट्रोल रूम सु पूरी देखरेख कर रिया है प्रवीण कुमार जी। ट्रांसमीटर सु मदद मिल रही है नरेंद्र सिंह राठौड़ जी, और साथ है कैलाश चंद्र जी सोलंकी भी। अरियनपुर कार्यक्रम री परिकल्पना या यूं कहवा के खाको तैयार करियो है राजेश जी लोमरोड़।

इणरमा थे जलमिया कई वीर स्वाभिमानी अमर है, जकारि त्याग तपस्या वीरतार कीर्ति अमिट है, जिणी रियाज तई सच्चार स्वाभिमानी मिनख मानवी सोगन खावे, आण लेवे के वाने हमेश पूजी है, अरवाड़ा परवाड़ा गावे। इन महान धरा इन महान माटीरी मैं जय जयकार करूं, जय मरुधरा जय मरुधरा जय मरुधरा। मैं हूं आज आपरे साथे कपिल। अपारी लोक संस्कृति लूठी है सा घनी चावी है, और अपारा लोक गीत जका है घना ठाव का है घना चावा है। आज इन कार्यक्रम रे मायने आपने लोक गीत सुनवा वाला जका के संस्कृतियों जुड़ियोड़ा है, कठिन कटी सांगो पांग रंगी जोड़ा है राजस्थान री संस्कृति रे मायने, और साथ ही आपने दो तीन किस्सा कहानियां बातों यहाँ पर साथ है साझा करोला।

Adam Meira.

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: साथियों अबार आप सुनियो गीत हिचकी, वो संस्कृतियों जुड़ियोड़ो है। किन्हीं याद आवे, किन्हीं चिता रहे तो हिचकी आवे। और इनीज भात अपन राजस्थान री लूठी संस्कृति रे मोयने पावणा घरे पधारे तो पावणा रे वास्ते गीत है।

अपॉर्टेड राजस्थान में देखो ने आपके जीरो बावे तो जीरा रोई गीत है के और उन जीरा रमायनी एडी कोगत करिए कि मत जाओ मत बाओ मारा साजन जीरो और जीरो जीवरो बैरी रे तो फसलों वास्ते ही गीत है हाथे रहते जीव जंतुओं माथे गीत है मोरियो गीत आप कई बार सुनियो बोला मोरियो गीत एक बालिकारी व्यथा है जिनरो संबंध सीधो सीधो तय वे चुक्यो है पण उन्हें ब्याह रे मायने अज जेज है जणवा मोरिया ने कहीं कहवे।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणोजी का बाग, खोखरिया, बिराम मंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
7: इन अंतराल रे पछे पाछो आपरो स्वागत है घणे मौन हितळु श्रोतावा कार्यक्रम मरुधरारा गीत में। हरेक श्रोता, सगला सुनने वाला भाइयों बहनों, मोटेरों और टाबरियों रे पौन, और घनी लूठी आज तक री प्रस्तुतियों रे पौन, आज वो कार्यक्रम एफएम सनसीटर सिरमो और कार्यक्रमों से एक वेग्यो है। अमाटी मरुधरारी अपने छाती सु चेप ने राखे, अरे अठे एड़ो कोई नहीं है जको इन मरुधरा सु हेत नहीं राखे। सगला ने मरुधराऊ घणो हेत है। लोक गीत, लोक भजन आज आपने सुनाए रिया है इन कार्यक्रम रमाय ने, पण आप सोचता बोला

तो सर सोशल मीडिया जो है एक चमत्कार है। इन मायने आप कई चीजें पढ़ा देखा हो सके मैं जो किस्सो अब आप रहते शेयर कर रही हाँ वो आप रहे सुनियोड़ो वह पढ़ियोड़ो वह पर एक फेरों सुन लिया हो चौकी बात हुनन में घड़ी घड़ी हुनन में की हर जो को नहीं गालियां थोड़ी काटा आपने आप घड़ो हेत है हुक्म। अब बात यूं है कि आगे कार्यक्रम रमायण एक हरजस लेनो है। हरजस ही तो लोक संस्कृति जुड़ियोड़ा है तो हरजस रमायण जितने ही भजन है वे सब हरजस ही है। हरिरा जस को और भले ही कोई मान खान है अच्छी सीख देवन कोई भजन वे सब हरजस ही जुड़ियोड़ा है। तो हुक्म एक लोक कथा की इन तरिया है पुराने टाइम री बात है कि घर परिवार रे मायने जितनी परेशानियां जितना ही दुख दारिद्र चलता है वहां उसको एक मान खो काठो काठो कायो हो गयो उनरे घर रे मायने रोजी ना कीन की मत फोड़ी चलती ज रहती। अब घर रे मायने आवड़े कठू इन माथा पच्ची माथा फोड़ियों कायो होर और एक दिन वो फैसलो करियो सेवट कैसा वो घर तो हमें छोड़नो पड़ी। देखो सा गृहस्थ धर्म ही एक मोटो धर्म है किन हाथ पकड़ ले उन पर छोड़ा छोड़ी चले को नहीं एन जे छोड़ दे तो पचे उन बतो कायर कोई मिनख नहीं पर हमें अपारी कहानी अपारी बात रो ओ जको मानखो है ओ तो हार मान ली का ठुकायो हो गयो घर छोड़नी तेवड़ ली। संन्यास री बात हो चंदुखी वे न वो आदमी एक संतरे खने पूगो संतरे खने जाए और कियो के महात्मा जी आप मने आप रो चेलो बनाए लो मारा गुरु बन जाओ मने हमें संन्यास लेनो है मारी मदद करो मैं हार गु हूं इन दुनिया हूं आ दुनिया स्वार्थी है इन दुनिया में मैं तलीज गो हूं काठो कायो हो गयो और सगलो काम धंधो छोड़ छाड़ हमें मैं भक्ति करनी चाहूं मैं तो आपरी शरण में आई गयो मने आपरी शरण में राख लो। संत पूछे रे भाई बीरा तू घर बीजे हैंग छोड़ना आईगो पण मने थने की बात पूछनी है उन थू हाचो हाचो जवाब देला नहीं देला गिरस्ती बीजी छोड़ना आईगो रे भाईला तू तो कायर लागे ना ना सा हूं कायर को नहीं मैं तो आईगो हमें छोड़ छाड़ने पण भक्ति तो करूला भक्ति में मोह राखूला जने महाराज की होच बीजो कर थोड़ोक विचार कर हैं पूछियो। क्या बता भाईला थने घर में किनु प्रेम बीजो है मोह बीजो है तो मिनक तो फट नटगो मोह वेतो तो छोड़न थोड़ी आतो ना सा मने मारा परिवार में किनु कोई मोह कोई तरह रो प्रेम नहीं है जने संत कियो के थने ना थारा माँ बाप हूं भाई बहन हूं लुगाई टाबरम हूं किनु ही तो थोड़ो घणो लगाव वेला रे वो भाई वीरो कियो गुरुजी पूरी दुनिया स्वार्थी है मैं तो घर परिवार में किनु ही प्रेम नहीं करूं मने तो हमें

कोई लगाव नहीं है इन खातरीज तो मैं हैंग छोड़ छाड़ और संन्यास लेवन आयो हूं। आप ओ कहीं पूछो मने मैं घड़ी घड़ी जने संत कियो भाई तू मने माफ कर। मैं थने मारो चेलो नहीं बना सकूं। मैं थारा इन अशांत मन ने शांत नहीं कर सकूं। और सुन अर वो मिनख बत्थो अचंभम पड़गो। संत भड़े कियो कि भाई जे थने थारा परिवार मैं थोड़ो ही सने नहीं है जण मैं तो एड़ा पद माते हूं कि मैं मोह ने पदा सकूं। तू गरस्त में हो संन्यास तो मोह लियोड़ा हाँ ठेठ हुई। तू गिरस्त में हो गिरस्त में हो जन थारो कर्तव्य थारा जिका थारी जी की ड्यूटी ही वा तो थारे परिवार प्रति ही माँ बाप प्रति ही तो तू थारा परिवार माँ बाप भाई बहन लुगाई टाब रहा हूं थोड़ो घणो मोह राख तो मैं थारा उन मोह ने भक्ति हम ही मोड़ सकते पर तू तो कह मारे माँ इन मोह है ज को नहीं लगाव है ज को नहीं। जो माँ बाप हूँ प्रेम नहीं कर सकियो लुगाई टाबरा ने आपरा मौन वारे हाथे जीवन नहीं बिता सकियो वो भक्ति रे मौन ने मन कहीं लगाए थारो मन तो कठोर भी करड़ो लागे। अरे गैला एक छोटा बीज ने देखो आप के वो ही अटी उटी पड़ियो ऊंदो की खरी पड़े वलई पर उन्हें पानी अगर मिल जा तो वो एक मोटो बड़लो भी जावे। पर थारा मन में कोई भाव है ही को नहीं इन वास्ते मैं किणी भाटा ने पानी रो झरनो कीकर बना सकूं। तो जका लोग आपरा परिवार रू प्रेम करे माता पिता रो सम्मान करे वे लोग भगवान री भक्ति पूरी एकाग्रता पूरो चित्त लगाएं कर सके। अपारा शास्त्र अपारी संस्कृति भी आज कहे कि जका माता पिता रो सम्मान करे आपरा घर रहूं प्रेम करे वे बारे भी लोगों प्रेम कर सके वारो सम्मान ही राख सके और दुनिया रे मायने सच्चो और सफल जीवन जी सके और वे भगवान रिवाने विशेष कृपा भी मिलती रहे।

राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर

मोती खान रस्वर में आप सुनी आकुर्जा। कुर्जा पक्षी ने संबोधित करता तो कहा, विरियाणियों आप प्रीतम री याद रमाने वो गीत गावे जिनमें नायिका आप परदेश में बैठा पति ने कुर्जा रो संदेश देवे और कहवे इन गीत रमाने। तो जैसलमेर में झोरावो गावे कठे सुवटियो सजों पीपली जकड़िया पपिया मोरिया कागा उड़ावे बहुत बहुत रा गीत सुनता पौन धरती रा अन खास रंग रो ठा पड़ता इन माते आन बान और शान वे जिनसों जुड़ियोड़ो ओ गीत संस्कृतियों जुड़ियोड़ो हर तरीकों लागे ए लोक गीत ए लोक भजन घना ठावका है। ज्यों ज्यों आगे बढ़े है वो प्रोग्राम न्यारे न्यारा लोकगीत आप तो पुगे है ए लोकगीत राजस्थान री संस्कृति सू घणो गहरो जुड़ाव रखे लगभग सब तरह रो आना टाणा माथे अपनी धरती माथे ए लोकगीत चावा है। पीरों री जकी भक्ति करे पीरों वास्ते जो परवाड़ा गावे वे भी तो आ गीतों में ही गिनी जाए। मोहनदास निंबारकरी आवाज में सुनो सा आलोक रचना।

हितालु श्रोताओं, इन रे अलावा ही राजस्थान री संस्कृति में सुन सराबो और लोकगीत घना ही है, जो के ओड़ू, जल्लो, जलाल, दुपटो, कामण, पावणा, जीरो, बिछुड़ो, बीटी, घूमर, लांगुरिया, गोरबान, रीडाणी, घुड़लो, मूमल, हिंडोलिया, जच्चा गीत, ढोला मरवण री प्रीतरा गीत, केसरिया बालम। अरे राजस्थान री संस्कृति में रचियो बसियो एक भले लोकगीत कांगसियो ओ मरुदुरारी माटी रो श्रृंगारी गीत कही जे। आप सुनो सा इन कार्यक्रम री आ छेली रचना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मरुधारा गीत। आपने ट्यून इन किया है एफएम सनसिटी चैनल 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सवेरे की 11 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रेडियो रेस्टोरेंट।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
2: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, विराम मंडो।
1: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
3: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
4: नमस्ते एंड वेलकम लिसनर्स इन योर फेवरेट प्रोग्राम रेडियो रेस्टोरेंट। फ्रेंड्स, हमारे ये रेडियो रेस्टोरेंट प्रोग्राम आपके लिए हर एक बुधवार बढ़िया गानों के संग चुनिंदा रेसिपीज लाता है, तो तैयार हो जाइए कॉपी और पेन के साथ कुछ चुनिंदा रेसिपीज नोट करने के लिए और मस्त मस्त गाने सुनने के लिए। हमारी प्लेलिस्ट और रेसिपीज भी रेडी हैं खास आपके लिए। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कपिल। सच्ची मुच्ची गाने मस्त मस्त।

जी हाँ श्रोताओं, ये बात जिसने भी पहली बार कही थी 100% सही कही थी कि किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम में इसका एक और इम्पॉर्टेंट मीनिंग यही निकाला जा सकता है कि हमारा आपका जो सीने में धड़कता असली दिल है, एक वाइटल ऑर्गन है। उसको हेल्दी रखने के लिए सही खान पान से उसको डिजीजे से बचाया रखना जरूरी है, और वैसे ही उसे बचाया जा सकता है।

आप समझ गए होंगे श्रोताओं कि आज दिल से जुड़ी बातें हम क्यों कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि रेडियो रेस्टोरेंट में आज हम आपको दिल के जो मरीज हैं उनके लिए खास जो रेसिपीज होनी चाहिए वो शेयर करने वाले हैं आपके साथ।

कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो रेस्टोरेंट एफएम सनसिटी पर। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जो हैं, यानी कि सीवीडी, पूरी दुनिया के साथ ही भारत भर में मौतों का एक सबसे बड़ा रीजन बन चुका है। श्रोताओं, हालांकि हार्ट की नियमित जांच जो है वो बहुत जरूरी होती है, और साथ ही हृदय रोगों से बचने के लिए नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है, लेकिन साथ ही खान पान जो है उस पर पूरा स्ट्रेस देते हैं डॉक्टर्स और कार्डियोवास्कुलर जो स्पेशलिस्ट हैं वो सभी। आज रेडियो रेस्टोरेंट प्रोग्राम में कुछ खास हार्ट फ्रेंडली रेसिपीज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बने रहिएगा 102.1 FM सन सिटी पर प्रोग्राम रेडियो रेस्टोरेंट में।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

तो लिसनर्स, सबसे पहली हार्ट फ्रेंडली रेसिपी जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वो है हार्ट फ्रेंडली ओट्स इडली रेसिपी। जी हाँ, ओट्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करते हैं और ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं, स्टेबल रखते हैं। इसलिए हार्ट के पेशेंट्स को दवाइयों के साथ ही प्रेस्क्राइब किया जाता है डाइटरी कंट्रोल भी, और उसमें हार्ट फ्रेंडली ओट्स इडली रेसिपी जो है शामिल उनके द्वारा की जा सकती है। इसके लिए जो जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें रोल्ड ओट्स जो कि पीसे हुए होने चाहिए 1 कप, सूजी रवा हो आधा कप, कम फैट वाला दही हो आधा कप, कटी हुई सब्जियां जिसमें कि गाजर, मटर और शिमला मिर्ची हो सकती हैं ये भी आधा कप, और हरी मिर्च और कद्दूकस किया हुआ अदरक, साथ ही स्वाद के अनुसार नमक जो कि बहुत कम हो या स्वादानुसार हो। एसिडिटी रेगुलेटर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो हम किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं ले सकते, और फ्रूट सॉल्ट भी आप ले सकते हैं, साथ ही इसमें 1 छोटा चम्मच हो, और पानी जो है वो घोल बनाने के लिए जरूरी होगा। अब आगे बात करते हैं हार्ट फ्रेंडली ओट्स इडली रेसिपी बनाने की जो विधि है, मेथड है उस पर। फ्रेंड्स, एक बड़े बाउल में पीसे हुए ओट्स, सूजी, दही और पानी डालकर गाढ़ा घोल बना लीजिए। घोल में कटी हुई सब्जियां, अदरक, हरी मिर्ची और नमक मिला दें और इसे करीबन 15 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद इसमें एसिडिटी रेगुलेटर पाउडर जो भी आप यूज करते हैं वो डालकर थोड़ा पानी डालें और हल्का सा इसे फेंटें। इडली के सांचों में थोड़ा सा तेल लगाएं और घोल को सांचों में डालें। 10 से 15 मिनट तक स्टीम में इसे पकाया जा सकता है, पकाना चाहिए, और हरी धनिया की चटनी के साथ गर्मा गर्म इसे सर्व करें। ये एक हेल्दी रेसिपी है, खासकर हार्ट के मरीजों के लिए, और आम जो दूसरे लोग हैं वो भी इसे यूज करें तो वो हार्ट की डिजीज से दूर ही रहेंगे, तो ये तो और भी बढ़िया है। आपने ट्यून इन किया है एफएम सेंसिटी चैनल 102.1 MHz पर, कार्यक्रम आपका फेवरेट रेडियो रेस्टोरेंट, और आज बातें हार्ट फ्रेंडली रेसिपीज पर। गाने भी बहुत ही शानदार आपके लिए, पूरी प्लेलिस्ट हमारी लोडेड है।

0: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक यू आर लिसनिंग प्रोग्राम रेडियो रेस्टोरेंट। दोस्तों जिनको दिल की बीमारी यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो चुकी है उनके लिए खान पान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। उन्हें डॉक्टर्स यही सलाह देते हैं कि ओट्स और दलिया लें, हरी पत्तेदार सब्जियां लें, सूखे मेवे और बीज ज्यादातर यूज करें, वसायुक्त मछली फैटी फिश भी उन्हें यूज करने की सलाह दी जाती है। लेकिन जो लोग मांसाहारी नहीं हैं उन्हें मौसमी फल और नट्स वगैरह पर अधिक तवज्जो देनी चाहिए। दिल की सेहत के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी हम आपको दे देते हैं क्योंकि आप रेडियो रेस्टोरेंट जो सुन रहे हैं और आपका दिल जो है उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। नमक पर आपको लगाम कसनी होगी, ऊपर से नमक यानी कि टेबल सॉल्ट डालने की आदत को आपको छोड़ना होगा। स्वाद बढ़ाने के लिए मसालों का प्रयोग किया जा सकता है, तेल का सही चुनाव आपको करना पड़ेगा। रिफाइंड या बार बार गर्म किया हुआ तेल जो है वो सीमित मात्रा में लिया जाना चाहिए या फिर बहुत कम या ना लें। जैतून के तेल की ज्यादातर सिफारिश की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, ऑलिव ऑयल की, और साथ ही सरसों का ऐसा तेल जो कि आप नजरों के सामने निकलवा सकें तो सबसे बेहतर होगा। और प्रोसेस्ड फूड जो हैं उससे आपको बचना होगा, पैकेट बंद चीजें, ज्यादा मीठी चीजें और ट्रांस फैट से भरपूर फास्ट फूड आपके दिल के लिए बहुत हानिकारक है। आपका दिल अगर बीमार होगा तो आपका रेडियो रेस्टोरेंट सुनने और एफएम सनसिटी सुनने का मन भी तो नहीं करेगा। हम चाहते हैं आप बिल्कुल निरोगी रहें और सुनते रहें 102.1 एफएम सनसिटी प्रोग्राम रेडियो रेस्टोरेंट। और प्यारे प्यारे गाने भी तो हैं आपके मनोरंजन के लिए। मनोरंजन जो है, म्यूजिक जो है ना, वो भी सेहत को बहुत बढ़िया करता है।

श्रोताओं, हार्ट पेशेंट्स के लिए रेसिपी में कम तेल या जीरो ऑयल हो तो बहुत बढ़िया रहता है। कम नमक, हाई फाइबर वाली सामग्री जो है उसका भी उपयोग होना चाहिए।

चलिए आपको एक बेहद महत्वपूर्ण और रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि फिर से बड़ी पौष्टिक है। और ये वेजिटेबल दलिया रेसिपी है, खासकर दिल के मरीजों के लिए। दलिया फाइबर का बेहतरीन स्रोत है, जो दिल के स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। इस रेसिपी के लिए आवश्यक सामग्री की बात करें तो दलिया आधा कप, मिलीजुली सब्जियां बारीक कटी हुई, जिनमें कि गाजर मिल सके तो ठीक, अन्यथा बीन्स मटर वगैरह लें, करीब एक कप। जीरा आधा छोटा चम्मच लिया जा सकता है। हल्दी पाउडर करीब आधे से कम छोटा चम्मच। हींग एक चुटकी और पानी दो से तीन कप। तेल जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल हो तो बेहतर रहेगा, एक छोटा चम्मच मात्र। और नमक बहुत ही कम मात्रा में। अब बात करते हैं इसके बनाने की विधि पर।

0: जीरा हींग का तड़का लगाएं, उसके बाद कटी हुई सब्जियां डालें और 2 मिनट तक उसे अच्छे से भूनें। भुना हुआ दलिया, हल्दी और नमक इसमें डाल दें और आवश्यकता अनुसार पानी डालकर कुकर में 3 से 4 सीटी बजाएं। और आपको तैयार मिलेगा पौष्टिक वेजिटेबल दलिया। जी हाँ, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

श्रोताओं, दिल के मरीजों को आहार में ताजे फल, हरी सब्जियां शामिल करना चाहिए और नमक और चीनी और प्रोसेस्ड फूड जो है वो उसका सेवन कम करना चाहिए। अपने आहार में पौष्टिक चीज़ें शामिल करके आप न केवल अपने करीबियों का दिल जीत सकते हैं बल्कि अपने दिल को और अधिक मजबूत और सेहतमंद भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं वो केवल दिल के मरीज ही लें। अगर सामान्य स्थिति में भी आप अगर ये यूज़ करते हैं तो आपको कभी ये बीमारी होने के चांसेस ना रहें, ये भी कहा जा सकता है। हालांकि इसमें साथ में पूरी जो लाइफस्टाइल है और एक्सरसाइज वगैरह है वो भी बहुत महत्व रखती है। दिल की सेहत सुधारने के लिए इन खास खाद्य पदार्थों को अपनी थाली का हिस्सा बनाना जरूरी है। तो आइए जल्दी से आपके साथ एक और रेसिपी शेयर कर लेते हैं। ये भी फिर से आपके लिए हार्ट फ्रेंडली रेसिपी ही है। यह है हार्ट पेशेंट्स के लिए बेहतरीन जीरो ऑयल फाइबर से भरपूर मिक्स्ड स्प्राउट्स और ओट्स चीला। जी हाँ दोस्तों, ये मिक्स्ड स्प्राउट्स और ओट्स का चीला बनाने के लिए जो सामग्री, जो इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं, आइए वो आपसे साझा करते हैं। इसके लिए आपको ओट्स चाहिएंगे करीब आधा कप, वो पाउडर किया हुआ होना जरूरी है। मिक्स्ड स्प्राउट्स चाहिएंगे आधा कप, जिसमें मूंग, मोठ, चने का अंकुरित मिश्रण आपको तैयार करना होगा। और दही जो है 2 बड़े चम्मच लिया जा सकता है, लेकिन कम फैट वाला हो, ये ध्यान रखें। हरी मिर्च और अदरक जो है वो 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई होनी चाहिए। बारीक कटी सब्जियां जिनमें आधा कप इसमें जरूरी होगा, इससे अधिक की जरूरत नहीं है। नमक और मसाले जो है वो स्वाद के अनुसार ही लें और हो सके तो सेंधा नमक यूज करें। नमक की मात्रा बहुत कम रखी जानी चाहिए। अब इसकी जो विधि है बनाने की वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको इसे बैटर तैयार करना होगा। एक बड़े बाउल में ओट्स पाउडर, मिक्स्ड स्प्राउट्स, दही, हरी मिर्च, अदरक और सभी कटी हुई सब्जियों को मिला लेना होगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा बैटर तैयार करें और 10 मिनट के लिए इसे रख दें। इसके बाद इसमें स्वाद के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा सेंधा नमक और हल्की काली मिर्च मिलाएं। काली मिर्च को जो है वो बहुत सेहतमंद माना गया है, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद कही गई है और

चीला बनाएं, इसके बाद में एक नॉन स्टिक तवे को गर्म करें। तवे पर बिना तेल लगाए या बहुत हल्का सा ऑलिव ऑयल लगाकर आप एक बड़ा चम्मच इसमें ये सारा घोल बैटर डालें और गोलाई में इसे फैलाएं। अब इसे धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेक लें और जनाब तैयार है आपका खास भरपूर मिक्स्ड स्प्राउट्स और ओट्स से बना चीला।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो रेस्टोरेंट। आपने ट्यून इन किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम सनसिटी चैनल। श्रोताओं, दिन के 12 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया हिंदी समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर

0: पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून इन किया है एफएम सन सिटी चैनल। अब विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे दिन में 1:15 तक।

हम सुन रहे थे गीतबाजी फिल्म से गीता दत्ते की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए याद करते हैं गीता दत्त को उनके गीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं उनके ही द्वारा गाया गया ये और एक और गीत।

0: हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में और भी नगमे हम सजाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान।

0: वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बादशाह व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
3: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
2: सखी सहेली?
3: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
2: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
4: सखी सहेली।
1: और कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं एक छोटा सा विराम।

है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है यादों की महफिल और हमने आज की यादों की महफिल सजाई है गीता दत्त के द्वारा गाए हुए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं सुजाता फिल्म का यह गीत जिसे गाया है गीता दत्त ने। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और सचिन देव बर्मन ने इसे संगीत दिया है।

आइए सुनते हैं गीता दत्त के द्वारा गाया हुआ, जिसमें मोहम्मद रफी और साथियों ने उनका साथ दिया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, और फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

0: हम सुन रहे थे आर पार फिल्म का ये गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर का संगीत। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज सजाई है यादों की महफिल गीता दत्त के गानों के साथ। तो आइए सुनते हैं फिल्म CID का यह गीत, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतकार हैं ओपी नैयर और गाया है गीता दत्त ने।

निर्णाम।

हम सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में, कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला गीत, जो कि है 12 o'clock फिल्म से। गीता दत्त की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत।

भी पता।

हम सुन रहे थे ये गीत श्रीमती 420 फिल्म से गीता दत्त की आवाज में जानिसार अख्तर के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं एक और गीत गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में गीता दत्त की आवाज में, और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं उन्हीं के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अनुभव फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है गीता दत्त ने, लिखा है गुलजार ने और कनु रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे साहेब बीबी और गुलाम फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और हेमंत कुमार के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत कागज के फूल फिल्म से गीता दत्त की आवाज में कैफी आजमी के बोल और सचिन देवर्मन का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस शुरू होगा कुछ ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर, एक सफर जहां हम अपनी यादों को भी याद करते हैं और बड़े प्यारे से गीतों और जज्बातों के साथ बात करते हैं। आज सुरीला सफर की इबारत कुछ अलग तरीके से हम लिखकर लाए हैं और उस इबारत पर आप सभी ने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और अब हम चलते हैं उस इबारत की ओर जो हमने आपको सौंपी थी। इबारत कुछ ऐसी है कि फिल्में बदलती हैं, किरदार बदलते हैं, मगर कुछ फैशन ऐसे होते हैं जो समय नहीं इतिहास बन जाते हैं। और जब बात फैशन की हो तो हिंदी सिनेमा का जिक्र भला कैसे ना हो। दशकों से हमारी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, वे ट्रेंड भी गढ़ती हैं, सपने भी बुनती हैं और अलमारियों का रंग रूप भी तय करती हैं। कभी अनारकली की अनारकली कुर्तियां दिलों पर राज करती हैं, तो वक्त का हेयर कट युवाओं के आईने का सपना बन जाता है। ब्रह्मचारी की सादगी भरी साड़ी हो या बॉबी का चंचल पोल्का डॉट्स, हर दौर ने अपने हिस्से का एक फैशन इतिहास लिखा है। कुर्बानी के जंपसूट ने आत्मविश्वास को नया रूप दिया, तो चांदनी के शिफॉन की साड़ियों ने हवाओं को भी रुमानी बना दिया। रंगीला का रंग हो या तेरे नाम के राधे का अंदाज, हर गली में उनकी झलक दिखाई देती थी। देवर की भाभी की बहन की बैंगनी साड़ी से लेकर जफी महक के बेफिक्र और सुकून भरे कपड़ों तक, फिल्मों ने हमारे वार्डरोब भी नहीं हमारी सोच को भी सजाया है। और फिर ये जवानी है दीवानी की साड़ियां जो आज भी अनगिनत अलमारियों में अपनी जगह बनाए हुए हैं, वहीं डोला रे डोला की भव्य साड़ी, वह तो मानो हर फैशन प्रेमी

मी के सपनों की अलमारी में टंगी हुई एक अधूरी ख्वाहिश है। तो आइए यादों की इस रैंप वॉक में आप भी शामिल हो जाइए। बताइए कौन सा फिल्मी फैशन को अपनाया था आपने, कौन सा अंदाज आज भी आपके दिल के किसी भी कोने में सजा हुआ है। तो ये दो प्रश्नों के उत्तर आप बहुत देर से दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे इस बात की ख्वाहिश है। पर हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज तो फैशन का जलवा ही है, शुरुआत से लेकर आज तक हर 20 साल बाद पलट कर आती है। तो हर चीज जो पुरानी फिल्मों में दिखाई देती थी आज वही चलन में है। बड़े प्रिंट वाले कपड़े, साड़ियां, बालों की भी वही फैशन। पर एक बात है, साड़ी नहीं बदलती, वो विभिन्नता लेकर आती है, पर कुछ साड़ियां राज्यानुसार वो की वो ही रहती हैं। जैसे महाराष्ट्र की पैठणी, नवारी, बंगाली, तमिल की कांजीवरम, गुजरात की बांधनी और सभी परंपरागत रूप से बनकर आई हैं। ये सारी बातें यहाँ पर कहती है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ में मौसम के फूल और पाठ बदलते हैं, उसी तरह फैशन के युग बदलते हैं, जमाना बदलता है, हालात बदलते हैं, साथ साथ इंसान के दिमाग और पहनावे में भी बदलाव आता जाता है। जी, हमारे एक श्रोता ने जानकारी दी है कि भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी जो 3 मई 1913 को रिलीज हुई और वर्ष 1931 में बनी आलमारा देश की पहली बोलती फिल्म थी। इस जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। वो कह रहे हैं कि फिल्मी फैशन को अपनाने की बात करें तो वो कहना चाहते हैं, माँ तो माँ होती है, बचपन में हम खार मुंबई में रहते थे, पूज्य माता जी जब भी लिंकिंग रोड के हेयर ड्रेसर के पास ले जाती थी तो कहती थी बेटे के हेयर कट शशि कपूर जी के स्टाइल में कानों तक बड़े ही रखो। परंतु विवाह के बाद यानी शादी के बाद उनकी धर्मपत्नी ने डंडा दिखाकर उनका हेयर कट स्टाइल बॉर्डर फिल्म देखकर छोटे फौजी जैसे कटवा दी है और कहती है कि अब ज्यादा स्मार्ट लगने लगे हो। ये फैशन है जो बदलता रहता है। देखिए हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फैशन के कपड़े सब हमारे सिनेमा जगत की देन है। ब्रह्मचारी की मुमताज की साड़ी, देवदास की माधुरी, ऐश्वर्या की ड्रेस, माधुरी के नए स्टाइल, दीदी तेरा देवर दीवाना, अनगिनत ड्रेस श्रृंखला है। और इस सब में वो कहते हैं कि राजेश खन्ना का स्टाइल नहीं भुला सकते। काफी श्रोताओं ने बता दिए तो गाने वो बता नहीं रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। हमारे श्रोताओं में बहुत सारे श्रोताओं ने एक बात जरूर कही है कि आज तो बातें महिलाओं की होंगी, हम पुरुष इसमें क्या करेंगे। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, हम महिलाओं का फैशन, अगर महिलाएं फैशन करती भी हैं तो आप पुरुषों के लिए ही तो करती हैं, सच समझ कर एक दूसरे के सामने ही तो जाते हैं। तो ये फैशन जो है जो बदलता रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैशन केवल महिलाओं का बदला है। फैशन इंडस्ट्री में फैशन जो है फिल्मों के साथ बदला पुरुषों के लिए भी है। एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। कल शायद कोई एक तरह का पैंट जो पुरुष पहना करते थे आज महिलाएं पहनकर घूम रही हैं। तो बहुत सारे बदलाव आए हैं फैशन के, हम आज उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में ऐसी कोई बात है तो जरूर हमसे साझा कीजिएगा। और चलिए चलते हैं पहले गीत की तरफ। और पहले गीत में मेरा तो यही प्रश्न है कि ऐसा कौन सा स्टाइल है, फैशन स्टाइल जो आपने देखा था, मन में था कि ये पहनना है, लेकिन किसी ना किसी कारण से आज तक नहीं पहन पाए। हो सकता है वो पुरुषों का हो सकता है वो महिलाओं का हो। आप अपनी बात रखिए कि कोई एक स्टाइल होगी जो मन ने कहा था पहन लो, या मन ने कहा था ऐसे बाल कटा लो, या मन ने कहा था ये वाली अंगूठी, ये वाली चैन, या कुछ तो होगा जो मन में होगा। उस मन की बात को हमसे कह दीजिए और सुनिए ये वाला नगमा।

हम सुन रहे थे ये बढ़िया सा गीत जिसे हमने लिया मुगले आजम फिल्म से, और हमारे श्रोता ने सही कहा कि इसमें मधुबाला ने अनारकली सूट पहना हुआ है। लता मंगेशकर की आवाज और साथियों की आवाज में सुन रहे थे इस गीत को, शकील बदायूं ने लिखा और नौशाद ने संगीत से सजाया। हम जो ये गीत सुन रहे थे, इस गीत में यानी इस फिल्म में मुगले आजम फिल्म की पोशाकें मक्खन लाल एंड कंपनी के द्वारा डिजाइन की गई थी। दिल्ली के कारीगरों ने इसे सिला था और इसके लिए जरदोजी जरी सूरत के विशेषज्ञों ने इसका काम किया था। मखमल, रेशम, ब्रोकेट जैसे महंगे और प्रामाणिक कपड़ों का भी इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको बता दूं, पहले जो होता था कि कोई कंपनी वाले फिल्मों को डिजाइन करते थे, फिल्मों के कपड़ों को डिजाइन करते थे। अभी ड्रेस डिजाइनर का जो चलन था वो आया नहीं था फिल्मों में। कब आया था, थोड़ी देर बाद उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब चलते हैं हमारे श्रोताओं के मजेदार बातों की तरफ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक तारा बोले टुन टुन क्या कहे ये तुमसे, तंग पेंट पतली टांगे लगती हैं सिगरेट जैसे। उसके साथ ही लिखते हैं, भाभी की उंगली में हीरे का छल्ला, हीरे का छल्ला पहना बहुत दिन पहले बॉटम, आज साड़ी पहन शर्माई, बड़ी खूबसूरत सी बात वो लिख रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि हालांकि हमारे पूर्व श्रोताओं ने कहा कि इसमें हम क्या कमेंट करें, पर हमारे एक श्रोता ने बड़ी संजीदगी से बड़ा प्यारा कमेंट किया है। वो लिखते हैं कि प्राचीन काल में बिना ब्लाउज और पेटीकोट की साड़ी शरीर पर लपेटी जाती थी। हाँ, ये नौ गजी साड़ी होती थी जिसे पूरे शरीर पर लपेटा जाता था, उसी से एक ब्लाउज नुमा एक तैयार कर लिया जाता था और वही पेटीकोट बन जाता था, वही साड़ी होती थी, एक ही साड़ी होती थी, एक ही कपड़ा होता था। उसके बाद फिर अंग्रेज ब्रिटिश काल में ब्लाउज पेटीकोट का प्रचलन चालू हुआ। उसके बाद अब वो कहते हैं कि आजकल महिलाएं प्री ड्रेप्ड साड़ी, कैप स्टाइल, रफेल और जैकेट स्टाइल साड़ी पहनना पसंद करती हैं। इसके अलावा साड़ी को बेल्ट के साथ पहनना भी एक बहुत बड़ा फैशन स्टेटमेंट बन गया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, फैशन बदलता जा रहा है पर कपड़े तो लगभग वही हैं। तो इसके साथ साथ हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में महिलाओं के फैशन का नाम आते ही सबसे पहले उन्हें याद आती है साधना। अच्छा, माथे पर हल्की जुल्फें, फैशन कौन भूल सकता है। और इसके साथ ही वो बहुत सारी बातें इसमें लिखते हैं। इसके साथ ही वो लिखते हैं कि फैशन का क्या कहना, हमारे हर जमाने में फिल्मी सितारों का फैशन देखते हुए अपनाया गया। मेरी मम्मी को नरगिस जैसी साड़ियां पहनने का शौक था और उन्हें, यानी वो लिखती हैं कि मुझे इंदिरा गांधी जी की साड़ी का स्टाइल पसंद है और आज भी

स्टाइल में साड़ी पहनती हूँ। क्या बात है, बढ़िया बात है। ऐसी फैशन ही तो हमें बनाता है, जोड़ता है किसी के साथ में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा बदली है वो फैशन है। आज स्कर्ट का कुर्ता तो कल स्कर्ट का, सही बात है। फैशन के पीछे पागल होते रहते, लेकिन वो बहुत अच्छी बात कहती हैं। कहती हैं कि फैशन चाहे जितना बदले, मगर मेरा तो मानना है कि फैशन कितना भी बदले, आप वही पहने जो आप पर फबे फबे भी। और दूसरी बात ये भी होता है, एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं, कैरी करना, यानी संभाल पाना। हम जिस वस्त्र को अच्छे से संभाल सकें वो पहने तो कितना अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमने जो फैशन अपनाया वह अमिताभ बच्चन से प्रेरित होकर अपनाया, उनके बालों का हेयर स्टाइल, आधे कान ढके हुए और इस टाइप की कटिंग, और पैंट में जो बेल बॉटम टाइप का था उसके नीचे काफी फैला हुआ रहता था, पैंट की मोहरी ज्यादा बड़ी हो।

0: चे काफी फैला हुआ रहता था, पैंट की मोहरी ज्यादा बड़ी होती थी जी। वो फैशन बहुत चला और बहुत लोगों ने उसे अपनाया, और हमने आपसे प्रश्न पूछा था बड़ा सरल सा कि आपको ऐसा कौन सा है स्टाइल जो पसंद आया था पहन नहीं पाए। तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अच्छा एक बहुत अच्छी बात लिखी है, अनारकली अब फैशन में आई है नए कलर में, स्त्री वर्ग पहनती नहीं है, अब आम वर्ग में फैशन में इसे ज्यादा अपनाया है, ज्यादा मोटी स्त्री अपना पेट छुपा सकती है। नहीं देखिए क्या है, ये जो चीजें हैं जैसे अनारकली है वो बड़ा अगर उसे हमारे कॉटन के कपड़ों में सूती कपड़ों में बना लिया जाए तो कितना अच्छा होता है ना पहनने में, कितना सुकून मिलता है इसके साथ। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें यहाँ पर लिख रहे हैं फैशन के बारे में, और मुमताज जी दुपट्टा बालों में लगाती थी, वो उन्हें बहुत पसंद है, और पर ना बाल तब वैसे थे ना कॉपी करना आया, सो मन की बात मन में रह गई। मुमताज की अदायगी को कौन नहीं अपनाना चाहेगा।
1: श्रोताओं आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल, दिन के 1:15 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है आदि आबादी का पसंदीदा कार्यक्रम गणगौर।

0: सुरक्षा मेरा अधिकार है।
1: कड़कती बढ़ती गर्मी और लंबी छुट्टियों के बाद जब पाची स्कूल खुले तो बारी रौनक देखने लायक होया करे। सुबह सुबह उठने रो आड़स पर नवा बस्ता, नई यूनिफॉर्म और नवी कॉपियां रो चाव टाबरा रे चेहरे माते हैं जिको साफ देखने मिलिया करे।
2: बिल्कुल। और सुनसान पड़ी स्कूल री गलियां और कमरा पाछा गुंजन ने लाग जावे और टाबरिया जका एक दूजा सु घना दिना बाद मिले तो वारी जकी खुशी है बाबी पार नहीं रेवे।
1: बिल्कुल सही क्यों कोमल। और छुट्टियों री बात करनी कठे घूमने गया दादा दादी रे घरे कितनी धमा चौकड़ी मचाई। इस अगली बात

0: तो कोमल अपा बात कर रहे हैं स्कूल री
1: बिल्कुल
0: तो स्कूल जब टाबर पहली बार जावे तो आजकल अपा कई करा छोटा छोटा जब बच्चा ढंग से बोलनी शुरू को नहीं होवे उन्हीं टाइम अपा स्कूल डाल दा पढ़ना ही अड़ा अपने नहीं करना जब टाबर 3-4 साल रो जावे अच्छे से आप रे मन री बात या जो बात है वो अपन समझा सके उन समय उन्हें स्कूल डालना तो और पहली अपने प्ले ग्रुप रे मैंने डालना ताकि बच्चे उठनी बैठनी घुलना मिलना सब चीजें सीख जावे 5-6 साल री उम्र जब होवे बच्चों पहली कक्षा रे मैंने बैठ सके और सरकारी नियमों की बात करा तो उनरे मुझे भी 6 साल की उम्र जरूरी होया करे पहली कक्षा रे वास्ते
1: बिल्कुल पूनम जी और बच्चों जब पहली बार स्कूल जावे तो उन्हें घर सु कई बातारी ट्रेनिंग भी जरूर देनी चाहिए क्योंकि आपा ही सबसे पहली अपना बच्चा ने सिखा सका तो पहली तो बात है कि टावरा ने जकी स्कूल है फिर नाम सुबह ने डराओ मती स्कूल रे चौकी चौकी बात बताओ बांक भी बांक मायने जो को चाव है वो जगाओ ताकि बे जाबा तई करे स्कूल और हर बराबर आपने जकी रफ्तार है विषय भी वो सीखे ताकि और जबरदस्ती भी बिरे साथे मत करो
0: बिल्कुल सही क्यों कोमल कई बार आप घर मायने टाबर थोड़ी सी बदमाशी करे तो आप डरा दा कि रुक थना भाई स्कूल डालू ला जब तू सीधो जा रहा और टाबर ने कुछ गरु शिक्षा देनी भी जरूरी है जन टाबर ने खुदरो नाम है माता पिता रो नाम है वो पूरा याद होना चाहिए भूख प्यास अगर लागे तो वो बोलना सीखना आना चाहिए कि भाई अभी ने भूख लगी है प्यास लगी या पचे उन्हें टॉयलेट जाना है आ ट्रेनिंग अपने घर से देनी चाहिए खुदरो टिफिन है बोतल है वो खोलने वो खानो जीन सके है हाथ धोना खुदरो नाक साफ करना ये चीजें भी अपने सिखानी चीजें और आपकी जो चीजें है जन बैग है जूता है रख रखाव है सही जगह पर रखनो ए बात भी ने आनी चाहिए
1: बिल्कुल और जी की छोटी छोटी चीजें है वे भी अपने सिखानी चीजें आप अपने स्तर पर भी सिखा सका जी रंग है कोई चीज रो आकार है वीरो ज्ञान 1-10 तक गिनती है।

0: हिंदी इंग्लिश में जगह अक्सर हुई करे बारी छोटी मोटी पहचान हुई कोई कविता हुई और मिलर बांटनो धैर्य राखनो बड़ा रो आदर करनो ये सगली चीज़ें जकी है। बट टाबर ने घर सू सीखनी चाहिए क्योंकि टाबर ने जकी पहली पाठशाला हुए वो उनारो घर हुए परिवार हुए और आप अकेवा भी आके जकी पहली गुरु है उनारी माँ ही हुई करे।
1: बिल्कुल। और बात करा विद्यारंभ संस्कार री तो आखर ज्ञान रिया पावन शुरुआत होया कर है और आपनी संस्कृति रे मायने 16 संस्कार रो घणो महत्व है। इन 16 संस्कार मासुई जे एक है विद्यारंभ संस्कार। इन रो सीधो मतलब है टाबर ने आखर ज्ञान और पढ़ाई लिखाई री शुरुआत करानी। जब टाबर 5 बरस रो हो जावे तो इन पावन कार्यज ने करियो जाया करे है। और पुरानी मान्यता रे मुजब विद्या ने सबसे मोटो धन मान्यो गया है। टाबर री बुद्धि और ज्ञान ने सही दिशा देवन सारू विद्यारंभ संस्कार घणो जरूरी है।
0: बिल्कुल जरूरी तो वही है जणे तो अपन अठे चोखो मुहूर्त देकर पूनम जी इन संस्कार सु जुड़ेड़ी रिवाजें हैं रीतियां हैं बैठे निभाई जावे। सबसे पहले तो टाबर ने नहलावे धुलावे नया कपड़ा पहनावे और भगवान गणेश जी रे सरस्वती माता रे और कुल देवता रे जकी पूजा है वह करवार वारो आशीर्वाद लियो जावे। और जकी पार्टी हुए या थाली हुए बीरमाई ने रोली चावल सु ओम और स्वास्तिक हुए जोको अपने अठे बनावे पच्चे जका गुरु है या पिता है या जको है वो टाबर री आंगली पकड़ और पेलो अक्सर लिखवावे जो काम है वो पूरा होवन रे पचे सब ने गुड़ लाडू या मिश्री बांट और सगला रो मीठो मुंडो करायो जावे।
1: बिल्कुल कोमल सही की। और आज री भागदौड़ वाली जिंदगी में भले ही लोग टाबर ने सीधे स्कूल भेज देवे पर ओ संस्कार टाबर ने सिखावे कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी पावन सारू ही नहीं बल्कि एक चोखो और संस्कारी इंसान बनन सारू भी जरूरी है।
0: बिल्कुल।

0: जब सूरत री पहली रन धरती माते आवे तो हर घर में एक न्यारी ही रौनक बिखर जाया करे। वह रौनक है टाबरारी स्कूल जाबारी तैयारी री। सुबह सुबह मामा अपने टाबरा ने लाडूडो बेटो कहने भगत वेगियो है जाया करे है। टाबर आखिया मलता मलता उठे है और घर में एक भागदौड़ शुरू हो जाया करे। कटे बस्तारी चिंता तो कटे धोती पोती ड्रेस री संभाल तो कटे रसोई सो आवती ताती ताती रोटियां महक। मारी आंगली पकड़ माथे तिलक लगाए जब टाबर हंसता मुड़कता स्कूल की तरफ पग बढ़ावे तो लागे जो साक्षात ज्ञान री गंगा उमड़े सागे चाल रही है। स्कूल रो वो रास्तो सिर्फ पढ़ाई रो नहीं है बल्कि एक सुथरे भविष्य रो रास्तो है और इन रास्ते में मार्गदर्शन करिया करे है अपना शिक्षक। तो आज स्कूल जाने री तैयारी सु जानकारी देवन सारू अपने सागे है शिका रिम्पा चक्रवर्ती। तो रिम्पा जी आप घने हे थरक सु स्वागत है जोधपुर आकाशवाणी केंद्र रे स्टूडियो में और हेड प्रीत सु भरोड़ा राम राम।
1: आकाशवाणी की सभी टीम को और सुनने सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से राम राम।
0: तो सबसे पहले आप वही जानना चाहवा कि नए सत्र रे महीने बच्चा जब स्कूल जावे तो व्यानो स्वागत करने वास्ते काई तैयार है स्कूल रे महीने करी जाया करे है।
1: जब बच्चा पहले दिन स्कूल के प्रवेश द्वार पर गुब्बारे रंगोली या मुस्कुराते हुए शिक्षक और स्वागत गतिविधियां देखता है तो उनकी घबराहट काफी हद तक कम हो जाती है। पिछले वर्ष मुझे याद है एक बच्ची पहले दिन बहुत संकोच में थी लेकिन वेलकम सॉन्ग और कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ

0: आ गई। ऐसी छोटी छोटी पहले बच्चों के मन में स्कूल के प्रति सकारात्मक भावना और उत्साह पैदा करती है। एक शिक्षक और एक अभिभावक दोनों के रूप में मेरा मानना है कि बच्चों का पहला अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि शुरुआत खुशी, उत्साह और आत्मीयता के साथ, तो पूरा शैक्षणिक वर्ष भी अधिक सफल और आनंदमय बन जाता है।
1: बिल्कुल रिम्पा जी, आप बहुत सही की हो। घबराहट है जकी हर बच्चा में रिया करे, और आज जकी घबराहट है बा एडमिशन रे भगत माँ बाप में भी थोड़ी सी रिया करे, वाने आप रे हिसाब सूझी टेम वाने चिंता रहे कि एडमिशन मतलब कि कर हुई या हो जाए या फिर कहीं कोई परेशानी तो नहीं आवे, तो वी टेम वाला माता पिता ने कौन सी खास बातों रो ध्यान रखनो चाहिए।
0: देखिए, एडमिशन के समय माता पिता को केवल स्कूल की बिल्डिंग के एकेडमिक रिजल्ट देखकर ही निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये भी जरूर देखना चाहिए कि स्कूल बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कैसा वातावरण प्रदान कर रहा है, या फिर स्कूल की टीचिंग मेथोडोलॉजी, शिक्षकों की गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था, खेलकूद और को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ मूल्यों और लाइफ स्किल्स पर भी कितना ध्यान दिया जाता है। एक शिक्षक के रूप में मेरा मानना है कि हर बच्चा अलग होता है, और इसलिए स्कूल का चयन उसकी रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर किसी बच्चे की रुचि संगीत, कला या खेल में अधिक है, तो ऐसे स्कूल का चयन किया जाना चाहिए जहां इन क्षेत्रों को भी उचित महत्व दिया जाता है। और एक अभिभावक के रूप में अगर मैं सोचूं, तो स्कूल और माता पिता के बीच अच्छा संवाद होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब विद्यालय और परिवार मिलकर बच्चे के विकास के लिए कार्य करते हैं, तब उसके सीखने की यात्रा और अधिक सफल हो जाती है।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा।
1: और आपसे पूछा कि छोटो बच्चों जब पहली बार स्कूल जावे तो वो अक्सर देखो बहुत ज्यादा रोया करे है, तो उन समय जिको माहौल है स्कूल रो वो चरकिन प्रकार बनावे कि वो उन महीने ढल जावे।
2: जी जी जी, लेकिन जब कोई छोटा बच्चा पहली बार स्कूल आता है ना तो उसके लिए बहुत बड़ा बदलाव होता है। पहली बार वो अपने घर और माता पिता से खुद समय के लिए दूर रहना सीखता है।
1: बिल्कुल,
2: ऐसे में टीचर की भूमिका केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं रहती बल्कि वो एक मार्गदर्शक, मित्र और कभी कभी माँ जैसा सहारा भी बन जाती है। तो एक शिक्षक के रूप में हमारी कोशिश होती है कि बच्चा स्कूल को डर या दबाव की जगह एक खुशहाल और सुरक्षित स्थान के रूप में देखे। हम शुरुआती दिनों में कहानियों, गीतों, खेलों और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से बच्चों को स्कूल से जोड़ते हैं ताकि वे सहज महसूस करें और नए वातावरण को अपनाने लगे। और अगर मैं एक अभिभावक हूँ और मैं उस हिसाब से भी बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को नए

0: माहौल में ढलने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, इसलिए टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को मिलकर बच्चे का उत्साह बढ़ाना चाहिए। जब बच्चा टीचर के चेहरे पर अपनापन और मुस्कान देखता है तो उसका स्कूल का सफर और अधिक आसान, सुखद और यादगार बन जाता है।
1: बिल्कुल, यादगार तो बने ही है, पर आजकल आपा देखा कि टाबर जगह है वे पढ़ाई रो घणो लोड लेवे। अगर कोई दबाव ने कम करने या फिर टाबरा ने मानसिक रूप से चिंता से मुक्त राखण सारू स्कूल में कई बंदोबस्त है जगह करे जाना चाहिए।
0: ठीक है, आज के समय में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी उनकी पढ़ाई। नई शिक्षा नीति भी इस बात पर विशेष जोर देती है कि शिक्षा केवल अंकों तक सीमित न रहे बल्कि बच्चों के समग्र विकास, रचनात्मकता और भावनात्मक कल्याण को भी बढ़ावा दे। इसी सोच के साथ विद्यालय में पढ़ाई को बोझ बनाने की बजाय सीखने को आनंददायक बनाने का प्रयास किया जाता है। कक्षाओं में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट वर्क, आर्ट इंटीग्रेशन, खेल आधारित गतिविधियाँ और समूह कार्यों को शामिल किया जाता है जिससे बच्चे बिना तनाव के सीख सकें। हम बच्चों को केवल सही उत्तर देने के लिए नहीं बल्कि प्रश्न पूछने, सोचने और अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और नई शिक्षा नीति के अनुसार भी बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन केवल परीक्षा के अंकों से नहीं बल्कि उनके कौशल, रचनात्मकता, सहभागिता और सीखने की प्रक्रिया के आधार पर भी किया जाना चाहिए। इसलिए हम बच्चों की छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करते हैं और उनकी तुलना दूसरों से करने की बजाय उनके व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देते हैं। और एक शिक्षक के रूप में ये कहना चाहूंगी कि घर पर बच्चों से केवल आज कितने नंबर आए पूछने के बजाय आज क्या नया सीखा पूछना अधिक महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा बदलाव बच्चों के मन से प्रदर्शन का दबाव कम कर सकता है। इसलिए हमारा उद्देश्य केवल अच्छे अंक प्राप्त करवाना नहीं बल्कि ऐसे आत्मविश्वासी, खुश और संवेदनशील बच्चों का निर्माण करना है जो जीवन की चुनौतियों का सकारात्मक सोच के साथ सामना कर सके।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणो जी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरी, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: तो लंबी छुट्टियां बाद भी बच्चा अक्सर अजे को स्कूल जाने से कतराया करे और उनारी इन स्कूल एंग्जाइटी ने आप किन प्रकार दूर करिया करो?
1: देखिए, लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल आना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि मेनली क्या होता है, वेकेशन के बीच में उनकी जो दिनचर्या है वो बहुत बदल जाती है. वो अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, ज्यादा से ज्यादा माता पिता को देखते हैं और बहुत ही कंफर्ट जोन में रहते हैं. तो ऐसे में स्कूल जब दोबारा शुरू होता है तो उनके मन में एक डर होता है कि कैसे करें, कैसे शुरुआत करें.
0: बिल्कुल.
1: तो मेरा मानना है कि बच्चों की इस भावना को हम समझें, क्योंकि उनको अगर हम डांट कर या जबरदस्ती भेजते हैं तो वो दुखी होके जाते हैं, जो हमें भी अच्छा नहीं लगता है. तो इससे अच्छा है कि हम प्यार से और थोड़ा सा पेशेंस के साथ उनकी बात को सुने, उनको थोड़ा समझाएं. स्कूल शुरू होने से कुछ दिन पहले तो आप उनकी दिनचर्या सेट कर दीजिए, थोड़ा सा बदलाव कीजिए, उनकी दिनचर्या सामान्य कीजिए. जैसे कि वो समय पर सो रहे हैं, समय पर उठ रहे हैं, हल्का सा पढ़ाई उनके दिनचर्या में शामिल हो जाए. ऐसे छोटी छोटी आदतों से क्या वो धीरे धीरे वो क्या टाइमली आ जाते हैं अपने टाइम, मतलब रूटीन में.
2: आजकल हर कोई चाहे कि एडमिशन री प्रोसेस है जो को साफ सुथरो होवे, तो स्कूल में दाखिला री प्रक्रिया ने पारदर्शी और सोरी बनाउन सारू काई कदम उठायो जावे?
1: आज के समय में ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो एडमिशन का प्रोसेस है वो बहुत ही इजी ट्रांसपेरेंट हो जाए और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए वो सुविधाजनक हो. जैसे कि बहुत सारे विद्यालय हैं उसमें ये प्रयास किया जाता है कि माता पिता को, पेरेंट्स को एडमिशन से जुड़ी सभी जानकारी स्पष्ट रूप से पहले से ही समय पर उपलब्ध हो जाए.
0: बिल्कुल.
1: और जैसे एडमिशन की पात्रता है, आवश्यक दस्तावेज है या फिर फीस संरचना, ऐसी जो चीजें हैं ये अगर उनको पहले से टाइमली पता चले तो वो बहुत इजीली उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं. और इसके साथ ही हर एक विद्यालय में हेल्प डेस्क या फिर काउंसलिंग की व्यवस्था भी अगर होती है तो अभिभावक अपनी जिज्ञासाओं का समाधान बहुत आसानी से कर सकते हैं. अगर जैसे न कोई नए माता पिता एडमिशन करवा रहे हैं अपने बच्चों के, तो उनके मन में कई सवाल होते हैं, जैसे कि वातावरण कैसा है, शिक्षण पद्धति कैसी है, सुविधाएं कैसी है. तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, अगर उनका समाधान उनको समय से मिल जाए तो बहुत उनके लिए भी इजी हो जाता है प्रोसेस.
0: तो आजकल जो आधुनिक शिक्षा और तकनीक रो दौर है, तो इन दौर में स्कूल में मैंने तकनीक और पारंपरिक पढ़ाई रे बीच किन प्रकार संतुलन बनाया जा सके?
1: देखिए, आज का जो टाइम है ना वो बिल्कुल टेक्निकल हो गया है. टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में बिल्कुल अंदर तक आ चुकी है. तो लेकिन जहाँ तक हम शिक्षा की बात करें तो तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी जो शिक्षा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है. लेकिन एक शिक्षक के रूप में मैं ये मानती हूँ कि टेक्नोलॉजी कभी भी किसी टीचर का स्थान नहीं ले सकती, बल्कि ये सीखने की प्रक्रिया को और भी अधिक प्रभावी बनाने का एक सशक्त माध्यम कह सकते हैं हम इसको.
0: बिल्कुल.
1: जैसे कि विद्यालय में तकनीक पारंपरिक शिक्षण दोनों का अगर प्रॉपर वे में करा जाए तो बहुत अच्छा वहाँ पे प्रभाव पड़ता है. मैं एक एग्जांपल के साथ इसको पकड़ूंगी. जैसे अगर बच्चों को क्लास में सौरमंडल पढ़ाया जा रहा है तो केवल किताब की तस्वीरें या एक लेक्चर मेथड से उस सौरमंडल के बारे में, ग्रहों के बारे में बताना बहुत मोनोटोनियस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है. इसके अलावा हम उनको स्मार्ट क्लास में वीडियोज दिखा सकते हैं, उनको उससे रिलेटेड कुछ पीपीटीज दिखा सकते हैं जिससे कि वो ग्रहों को बेहतर तरीके से समझ जाएं. और रही बात अगर पारंपरिक शिक्षण की, तो जस्ट उसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि हम डिस्कशन कर ले, हम क्वेश्चन आंसर पूछ ले बच्चों से, या फिर मॉडल बनवा ले, या छोटी कोई एक्टिविटी करवा ले, पोस्टर बनवा ले बच्चों से. तो बच्चों में दोनों तरीके से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनका वो रचनात्मक जो पहलू है वो भी विकसित होता है और सोचने की क्षमता भी उनकी विकसित होती है.
0: मतलब कुल मिला ने पढ़ाई ने थोड़ा रुचिपूर्ण और इंटरेस्टिंग
1: पूर्ण. बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो जद बच्चा उन्हें बड़े मतलब उमंग रे साथे पढ़ेगा.
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: बिल्कुल. देखो, बार आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है विने लेयर भी घनी चर्चे हैं चालती रेवे, तो ये नीति रे तहत स्कूल रे सिलेबस और पढ़ाने रा तरीका में इस साल कई कोई बदलाव देखने मिली?

0: जी बिल्कुल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उनका उद्देश्य केवल बच्चों को परीक्षा के लिए नहीं बल्कि समग्र जीवन के लिए तैयार करना है। अब हम ये मानते हैं कि बच्चा जो है वो रट कर याद ना करे, वो जो सीख रहा है वो उसके जीवन से जीवन में उसको उपयोग कर सके। जैसे बच्चा सीख जो अगर सीख रहा है तो समझ कर सीख रहा है, उसके अंदर कौन सा स्किल डेवलप हो रहा है और वो कैसे उसको अपने अनुभव में ढाल रहा है। जैसे आज अगर कक्षा की बात करें तो सिर्फ पढ़ाने तक हम सीमित नहीं हैं, उसके साथ ही हम कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, एक्टिविटीज करवा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करवा सकते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बच्चों को हम उसको जोड़ते हैं बच्चों के, जैसे उनकी अपनी जिंदगी में जो हो रहा है उसको हम पढ़ाई के साथ उस टॉपिक के साथ जोड़ लेते हैं कि बेटा अगर ऐसा हुआ हाँ तो कैसा होगा।
1: बिल्कुल,
0: जैसे हम अगर हम वृक्षारोपण की बात करें तो सिर्फ हमने पढ़ा दिया कि वृक्षारोपण करना चाहिए ये वो, ऐसा ही सीमित ना हो, उसके साथ हम बच्चे को ये बताएं कि बच्चे आपको एक छोटा सा जागरूक अभियान करना है या फिर कोई पोस्टर बना है वृक्षारोपण, या आपको वृक्षारोपण के बारे में 5 लाइन्स लिखनी है, ये आप सोच के लिखो, ये आपको कहीं बुक से देख के नहीं लिखना है, आपको सोच के लिखना है। तो इससे क्या होगा, वो जो सीखेगा वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उसके लिए प्रभावी होगा,
1: बिल्कुल
0: आगे भी उसके लिए काम आएगा
1: और वो उनकी तरफ आकर्षित भी होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो उसको सोचने के लिए हम समय दे रहे हैं। बिल्कुल,

0: तो बिल्कुल देखो बच्चा मैंने रटने की आदत भी ज्यादा होया करे है
1: जी,
0: तो क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल्स विकसित करने वास्ते कई प्रयास कर सके हैं।
1: या आज का जो शिक्षक का उद्देश्य है वो बच्चों को सिर्फ जानकारी देना नहीं, उसको सोचने समझने और सही निर्णय के लिए तैयार करना है। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं कि उसको उसके जीवन के लिए तैयार करना है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस बात पर जोर देती है कि बच्चे केवल उत्तर को याद ना करें, वो ये समझे कि उत्तर तक पहुँचना कैसे है। जैसे मान लीजिए अगर किसी क्लास में मैथ्स पढ़ाया जा रहा है तो मेरे हिसाब से केवल

0: फॉर्मूलाज याद करने के बजाय आप उनको एक छोटा सा टास्क दे सकते हैं. जैसे कि आप उनको बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपको एक स्कूल का एक एजुकेशनल ट्रिप प्लान करना है, आपके पास एक निश्चित बजट, इतने पैसे हैं आपको आपके पास, उसी में आपको ट्रांसपोर्ट, फूड और अन्य खर्चों का मैनेजमेंट करना है, सारा मैनेज करना है. तो अगर हम ऐसे टास्क बच्चों को देंगे तो बच्चा जो क्या है, गणित को, मैथ्स को अपने रियल लाइफ से क्या होगा, जोड़ के देखेगा और उसमें उसके अंदर सोचने की क्षमता और भी ज्यादा विकसित होगी. इसी प्रकार अगर जैसे कोई स्टोरी रीडिंग है, अगर टीचर ने कोई स्टोरी सुनाया तो उसमें सिर्फ ये ना पूछे कि कहानी का सार क्या है, कि आपने क्या सीखा, आप उसको थोड़ा सा डिफरेंटली आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि बेटा अगर आप कहानी के मेन कैरेक्टर होते तो इस सिचुएशन में आप क्या करते. तो इससे क्या होगा, उनकी जो तर्क शक्ति है, उनका जो निर्णय क्षमता है वो बहुत डेवलप होगा. वो सोचेंगे, वो सोच के, और हर एक बच्चे से आपके पास अलग अलग जवाब आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग जवाब आएगा.
1: मतलब खाली किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है,
0: बिल्कुल
1: आप उन्हें अपने जीवन से जोड़ने, जीवन से पढ़ाई और ज्यादा आनंदमय बन
0: जाए. जी जी बिल्कुल
2: बिल्कुल. और जब विकास की बात आवे तो वारो जो को पूरा विकास है वो जदि हुए जब स्कूल और घर दोनों साथ चले. तो टावरा ने सगड़ा तरह का विकास सारू आप वारा माता पिता और वारा गुरु रुचि बीच में किया रो तालमेल है जो को होना चाहिए.
0: देखिए बच्चों के पूरे विकास में पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की भूमिका समान रूप से, अगर मैं कहूँ बिल्कुल इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है. अगर हम बच्चे के विकास को एक जर्नी माने, एक यात्रा माने, तो पेरेंट्स और टीचर दोनों उसके मार्गदर्शक है, दो मार्गदर्शक है. इसलिए दोनों के बीच ओपन कन्वर्सेशन होना, आपसी विश्वास और सहयोग, कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है. बच्चे की जो शिक्षा होती केवल क्लास तक सीमित नहीं होनी चाहिए. उसकी जो हैबिट्स है, उसकी लाइक वैल्यूज़ है, वो सारी चीज़ें, इवन उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी, ये सारी चीज़ें उसको दो जगहों से मिलती है. एक तो होता है घर, दूसरा होता है स्कूल. तो ये तभी पॉसिबल होता है, ये तभी संभव हो सकता है जब बच्चा, दोनों तरफ से बच्चे को पूर्ण सहयोग मिल रहा है. जैसे पेरेंट्स की अगर बात करें तो पेरेंट्स स्कूल की जो एक्टिविटीज़ है उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन, ओपनली कन्वर्सेशन रख रहा है कि कैसे चल रहा है मैम, और बच्चे को एक, इसी के साथ बच्चे को एक सहयोगी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे रहा है. और एक और बात है, पेरेंट्स जो होते हैं उनको सिर्फ बच्चे के मार्क्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको बच्चे के जो इंटरेस्ट है, उनका जो इमोशनल जो डेवलपमेंट है और उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है, उन सारी चीज़ों को भी समझना चाहिए. क्योंकि हर एक बच्चा अपनी गति से सीखता है, अपनी स्पीड से सीखता है, और ये बहुत ही नॉर्मल है. इस जगह पे आपको ये तुलना नहीं करना है कि उनका बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है, हमारा बच्चा नहीं कर रहा है. हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चा सीखता है, उनकी अलग अलग गति होती
2: है. हर बच्चा में एक अलग खास चीज हुई और भी खास चीज ने
0: टैलेंट होता है, हर एक बच्चा टैलेंटेड होता है.
1: बिल्कुल
0: जी.
1: तो जब आप अभिभावक की बात कर ही रहे हैं तो घर पर पढ़ाई रो अच्छो माहौल बनाने के वास्ते अभिभावक ने आपका ही सलाह देनी चाहोला.
0: देखिए मैं पेरेंट्स से हमेशा एक बात कहती हूँ कि घर को मिनी स्कूल बनाने की कोशिश ना करें क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी एक स्कूल में पढ़ रहा है. बल्कि उसे लर्निंग फ्रेंडली होम है. बच्चे केवल जो होते हैं ना, किताबों से नहीं सीखते हैं, वो अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं, और बच्चे सुनकर भी सीखते हैं. माता पिता आपस में कैसे बिहेव करें, उनका आपस में कैसा बिहेवियर है, वो देख के सीखते हैं. तो जैसे कि मैं मानती हूँ कि बच्चा जब घर आता है तो उसके ऊपर आते ही प्रेशर होता है. आज आपने काम किया, स्कूल में सारा वर्क कर लिया. इसके बजाय आप उनसे ये पूछो ना कि बच्चे आज स्कूल में सबसे मजेदार क्या हुआ, आज आपके कितने दोस्त आए थे, आपने क्या सीखा. तो अगर हम ऐसे छोटे छोटे सवाल बच्चों से पूछते हैं तो उनके भी मन में एक जो डर झिझक होता है वो दूर होता है. उनके मन में एक डर या दबाव होता है क्योंकि उनके पेरेंट्स को उनसे उम्मीदें होती है, बेटा आपको तो इसमें पूरा मार्क्स लाना है. ऐसे नहीं होता है.
1: स्कूल में तो पढ़ाई रो रही है और घर जाते ही माता पिता कहते हैं कि होमवर्क है जो पहला कंप्लीट करना,
0: पहले करना है आपको, ये करना है. आप होमवर्क करोगे तभी आपको खेलने को मिलेगा.
1: बिल्कुल.
0: तो माता पिता का जो ये होता है ना, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्कूल की भी है ऑलरेडी, उनकी भी है और पढ़ाई जो

0: हमें केवल टेबल चेयर तक सीमित नहीं होनी चाहिए. हम आप अगर हम अपनी दिनचर्या देखें तो किचन में सब्जियां गिनते हुए भी मैथ्स सीख सकता है बच्चा. अखबार पढ़ते हुए कि जो भाषा कौशल है वो विकसित हो सकता है. और परिवार के साथ अगर वो बात कर रहा है तो उसका जो कन्वर्सेशन है वो भी डेवलप हो रहा है. तो बच्चा अपने घर से बहुत कुछ सीख रहा है.
1: बिल्कुल, खेल खेल में भी आप अभी ने कई चीजें सिखा
0: सका. बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल. और आज भी देखो सबसे बड़ी समस्या है कि टाबरा रो जो को मोबाइल है टीवी देखना है. तो स्कूल के बाद में टाबरा ने इन स्क्रीन टाइम सो रोकन सारू या फिर कंट्रोल करण में वाला जका माता पिता है वा कई जिम्मेदारी निभा सके आप री.
0: मैं इस विषय को स्क्रीन टाइम नहीं बल्कि चाइल्ड टाइम के रूप में देखती हूँ. अक्सर हम ये गिनते हैं बच्चा कितने देर, मेरे बेटे ने मेरे बच्चे ने इतने देर मोबाइल देखा है ना. हम ये नहीं सोचते हैं कि बाकी समय में वो कर क्या रहा है. ये आजकल के टाइम में जो मोबाइल है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, आकर्षक हो गया. बच्चे को आकर्षक इसलिए लग रहा है क्योंकि वो एक टिप पे उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, बहुत कुछ सीख रहा है ना. तो तुरंत उसको सेटिस्फाई वो बच्चा हो रहा है. अगर उसके मन में कोई प्रश्न है, कुछ सीखना चाह रहा है, तो उसने सिर्फ सर्च किया और उसके सामने सारा रिजल्ट, तो तुरंत उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया. इसलिए घर पे अगर बात करते हैं तो घर पे सिर्फ नियम बनाना पर्याप्त नहीं होता है. बच्चों को उसके वास्तविक जीवन से जोड़िए. माता पिता क्या कर सकते हैं, प्रयास कि स्कूल के बाद थोड़ा सा टाइम अपने बच्चे को दे. थोड़ा सा टाइम मीन्स जो ऐसा समय जो स्क्रीन से ज्यादा रोचक हो, स्क्रीन से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे. जैसे बच्चे साथ खुलकर बात करो, बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, कौन कौन सी मैम ने क्या पढ़ाया, वो बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा. परिवार के साथ बैठ के ओपनली बात करना, कोई शौक जैसे बच्चा कोई ड्राइंग कर रहा है तो चलो चलो आज हम थोड़ा एक ड्राइंग बनाते हैं है ना. या फिर बच्चे को अगर सॉन्ग पसंद है, म्यूजिक या डांस पसंद है, चलो थोड़ा डांस करते हैं, भाई बहन कर सकते हैं, माता पिता थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं. तो जब बच्चे का जीवन विविध अनुभवों से भरा होगा तो स्क्रीन अपने आप सीमित हो जाती है. एक और महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट चीज जो मैं जोड़ना चाहती हूँ इसमें, कि स्क्रीन टाइम को हमेशा दुश्मन की तरह ना देखे. जब बच्चा कोई नई चीज सीख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है जिससे उसको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो स्क्रीन का पॉजिटिव वे में यूज कर रहा है. तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि वो स्क्रीन कितने देर यूज कर रहा है, हमें ये देखना है कि स्क्रीन पे देख क्या रहा है, उसका कंटेंट क्या है. कंटेंट पॉजिटिव होना चाहिए. कंटेंट क्या है, और मेरे हिसाब से देखिए, मैं तो मानती हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो भूमिका होती है वो निगरानी करने वाले की नहीं बल्कि मार्गदर्शक की होनी चाहिए. वो गाइड करे बच्चे को कि बेटा आपने बहुत देर देख लिया, चलो अब कुछ करते हैं.
2: थोड़ा डांट डपट में नहीं, थोड़ा सा प्यार से समझाओ तो बच्चा बिल्कुल अभी चीजें एक्सेप्ट करेगा.
0: बिल्कुल, आराम से बच्चा आपकी बात सुनेगा.

0: तो बिल्कुल स्कूल की इतनी बातें कर रहे हैं रिम्पा जी, तो थोड़ा सा आपने निजी जीवन रे माते भी बात कर ला कि जब आप छोटा हो और आपकी गर्मी की छुट्टियां खुलती तो स्कूल जाने की पहली जी तैयारी और स्कूल से जुड़ेड़ा कुछ अनुभव है वह भी मान श्रोता हमारे साथ साझा कर दो।
1: मैं अपने बचपन की बात करूँ ना तो मैं बहुत पहली बताऊँ पहली बता रही हूँ मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत शाई थी। तो समर वेकेशन के बाद स्कूल खुलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा उत्साह भी था मन में होता था और चुनौती भी होती थी।
0: अच्छा।
1: कि मैं स्कूल में जाऊंगी, टीचर्स क्या सवाल पूछेंगे, मेरे पास मेरे कौन से दोस्त बैठेंगे, दोस्त आएंगे भी नहीं, तो मेरे लिए नए लोगों से घुलना मिलना बहुत आसान नहीं होता था। तो मुझे याद है स्कूल के आखिरी दिनों में मैं अपना वही है कि स्कूल बैग यूनिफॉर्म सब ये सब अरेंज कर रही होती थी, लेकिन तैयारी तो क्या होती थी, मैं अपने आप को तय करती थी स्कूल जाना है रूटीन में जाना है। तो बट स्कूल के फर्स्ट डे ये सोचती थी कि कौन बैठेगा, किसके साथ कैसा मेरा बैठेगा कि नहीं,
0: बेंच मिलेगी या
1: फर्स्ट बेंच मिलेगी, लास्ट मिलेगी,
2: सवाल सबके मन में हुए,
1: सवाल सबके और टीचर्स मुझसे ना पूछ ले डर, तो वो सारी चीजें होती थी। लेकिन धीरे धीरे समय करीब आता था उत्साह होती थी क्योंकि बहुत दिन बाद अपने दोस्तों से मिलना, अपने फेवरेट टीचर्स से मिलना एक बहुत अच्छा रोचक होता था मेरे लिए। तो इंट्रोवर्ट थी इसीलिए शायद आज एक शिक्षक के रूप में मैं उन बच्चों की भावनाओं को समझ पाती हूँ जो छुट्टियों के बाद या पहली बार स्कूल आने में थोड़ा संकोच महसूस करते हैं या उनको डर रहता है कैसा होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो कुछ बच्चे पहले दिन ही, देखिए बच्चे तो डिफरेंट होते हैं, कुछ बच्चे पहले दिन से बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, अच्छे से घुल मिल जाते हैं, टीचर्स के साथ ओपनली बात करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डरते हैं। तो मेरे स्कूल, मेरे लिए जो मेरा स्कूल था उसकी सबसे अच्छी बात ये रही है कि उसने मुझे ये सिखाया है कि केवल पढ़ाई नहीं, जीवन में लोगों से जुड़ना, विचार व्यक्त करना या कॉन्फिडेंस रखना वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो स्किल्स मेरे अंदर मेरे स्कूल ने डाला। इसलिए मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भी थोड़े शांत या इंट्रोवर्ट डर लगता है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। स्कूल केवल सीखने की जगह नहीं बल्कि खुद को पहचानने और निखारने की भी जगह होती है।
2: बिल्कुल रिम्पा जी, जितना भी श्रोता अपना जगह है रेडियो सुन रिया है, कोई विद्यार्थी है तो उनारा जगह अभिभावक है वाने आप कहीं कह नहीं चाहोला।
1: नहीं, ये समर वैकेशन है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ मैं बच्चों से मिलने के लिए। तो स्कूल का माहौल फिर से मेरे बच्चों की हंसी, उनके एक्साइटमेंट, उनकी बातों से भरने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हर एक स्कूल का टर्म होता है वो एक नई शुरुआत लेकर आता है, एक नया चांस, एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, खुद को थोड़ा और चेंज करने का। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि सीखना जो होता है बेटा वो सिर्फ क्लास तक ही लिमिट नहीं होता है। कभी एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लेना, कभी किसी दोस्त की मदद कर देना, कभी कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, या फिर कभी किसी कोई एक्टिविटी सीख लेना, ये भी सीखने का ही हिस्सा होता है। और इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से मत डरिए, हो सकता है आपकी अगली बड़ी कोई अचीवमेंट किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि किसी स्टेज पर, किसी प्लेग्राउंड में या किसी एक्टिविटी रूम में आपका वेट कर रही हो। और पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों के साथ सीखने की इस जर्नी को एंजॉय कीजिए, उनके एक्सपीरियंस सुनिए, उनके जो क्वेश्चन, उनकी जिज्ञासाएं हैं उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, उनके साथ छोटी छोटी खुशियां मनाइए, उनकी हार को भी सेलिब्रेट कीजिए। ऐसा नहीं है तू जीत के आएगा तो साइकिल दिलाऊंगा, अगर हार के भी आता है तो भी उनको गले लगाइए, क्योंकि मैं, मेरा मानना है कि बच्चे को जो ये होते हैं ना बहुत कॉस्टली चीजों की जरूरत नहीं होती है, उनको अपने माता पिता की जरूरत होती है, उनके वक्त की, उनके टाइम की जरूरत होती है। और अगर बच्चों की बात करूँ, समय की बात करूँ, तो आज के बच्चों के पास अवसर है, अपॉर्चुनिटीज है और चैलेंजेस भी है, दोनों बराबर चल रहे हैं। तो सिर्फ हम उनको सफल बनाने के लिए नहीं,

0: जिज्ञासु, जिम्मेदार और लाइफ को कैसे टैकल करना है, कैसे सामना करना है हर परिस्थिति को, इसके लिए हम तैयार करना सिखाएं। और बच्चों से एक और बात कहना चाहूँगी कि जब भी टाइम मिले बेटा, कम से कम एक नई चीज़ सीखिए, एक नई किताब पढ़े, एक नया दोस्त बनाए और एक ऐसा काम करे जिससे आपको खुद पर गर्व महसूस हो।
1: बिल्कुल जरूर करेला। और रिम्पा जी, आज रिया जानकारी सगला विद्यार्थियों खातर मारा माता पिता रिवाज थे वो एक मोटो मार्गदर्शन बनियो है
0: जी।
1: और आप रिया सगली जानकारी टाबरा रे जीवन रिवाज थे और टाबरा ने नवा सत्र री चौकी शुरुआत करने में भी मदद करेला। तो रिम्पा चक्रवर्ती जी, आज आप टेम निकाल इतनी बढ़िया जानकारी दी इन रिवाज थे आकाशवाणी राही मंच पर पधारवा खातर और टाबरा रो हौसलो बंधाबा मार्ग दिखावा खातर आप रो पूरा जोधपुर आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सा।
0: मैं भी आकाशवाणी की पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे आज आपने अवसर दिया कि इस विषय पे, इस टॉपिक पे मैं कुछ बोल सकूँ सबके सामने। धन्यवाद। राम राम।
1: राम राम सा।

0: तो पूनम जी आपा पढ़ाई लिखाई री बात आपा कर रहे हाँ, पर आप एक चीज देखी, आधुनिकता रे मायने कितनी सुविधाएं होगी, हर एक चीज बच्चा ने आपा तैयार कर देदा। पर अपना टाइम री अगर आपा बात करा तो अलग ही माहौल हो भी टाइम जी की किताब है तो पुरानी किताब आपा लेवन वास्ते करता देखता कि आपा ने किताब है जी की किकनु लेनी है कौन अच्छी तरीका सु किताब है जो राख रही है आपा सबसे कोशिश करता कि क्लास रा जो बच्चो है जो सब होशियार है भी आपा संपर्क करा और बा किताब आपा लेवा।
1: बिल्कुल सही क्यों कोमल, और पास फेल होना कोई मतलब नहीं थोन टाइम परसेंटेज की बढ़िया है और भी आपा कोई इनको ही संबंध नहीं रखता, बस और जरूरी हो कि अपने पास होना है, परसेंटेज कोई मायना नहीं रखता। और किताबा रा मायना आपा पीपल रा पत्ता हो गया, मोर पंख हो गया या विद्या जी का पत्ता है वे रखकर होशियार हो सकता है, ऐडी धारणा आपा रखता।
0: बिल्कुल, और आपा पार्टी जत सुखा था जत कई बोलता पार्टी पार्टी सुख जा विद्या विद्या आ जा। बिल्कुल, और जो की पुरानी कॉपियां होती ना आपा संभाल रखता को बारो आपा उपयोग में लेता या और ज्यादा खाली पन्ना बचाता आपा और एक खाली पन्ना अलग कर वाने निकाल और एक आपा एक जगह पर रखता और प्रेस वाला ने ढूंढता ताकि मोल भाव कर बाकी जो की बाइंडिंग है आपा करवा सकता। और इस वास्ते आपा ने कई बार चक्कर लगाना पड़ता, आपनो कोई बड़ो भाई या बड़ी बहन होती तो बिन कहता तुम जल्दी सी करा।
1: बिल्कुल सही किया कोमल, और स्कूल में तो कुछ

0: बोलने रो सवाल ही को नहीं हो जन कई बार सजा मिलती नहीं कान पकड़ लो या पचे बेंच पर खड़ा हो जाओ कक्षा में बारे कई बार खड़ो होना पड़ता तो ये सगली सजा आप हंसता हंसता सह लेता उन टाइम इतनी सहन शक्ति ही
1: सकती ही और जब अपन ने कोई नई कॉपी भी चाहिए थी तो आप मास हुए ना पापा की सिफारिश लगा था कि ना हमारा बुक है जकी किताब है जकी लानी है और अगर बे मना कर देता तो बे ना करता तो भी ना ने भी आपस स्वीकारता ज्यों भी अपनी जकी सहनशीलता है बबड़ी
0: बिल्कुल और बस्तर मतलब एक कपड़ा थैली होती जो पुराना कपड़ा ने सीलने बनाई जाती है आजकल तो देखो हर साल बस्ता चेंज हुए और नित नया बस्ता टाबरा री मांग है जिको बहने चाहिए नित नया बस्ता
1: बिल्कुल बेग री वॉटर बेग जो अभी नाम रित तो चीज अस्तित्व में ही नहीं आपा तो सीधा जार स्कूल रो जो को हो दन वो जो को टंकी बनड़ी होती है मैं मुंह लगा आपा पानी पी लेता चाहे साफ पानी हो साफ है या नहीं है टंकी साफ है या नहीं है आ चिंता अपने मन में नहीं रहती और जो की प्यास है वह भी पूरी हो जाती शर्ट ऊपर कर श्री बाया सु आप मुंडो पहुंच लेता साइकिल भी टाइम लग्जरी ही आप भी टाइम ग्रे मायने अगर साइकिल होती भी तो हर बार चेन उतरती और चेन लगा उनमें भी अपने काफी दिक्कत हाथ और मुंडा और काला भी हो जाता
0: बिल्कुल सही क्यों कोमल बच्चा रे सगला दोस्त और पत्तो भी अपने माँ बाप ने होता हो कि बेकट्ठे जा रहा है कई कर रहा है और बड़ो डर हो और सम्मान भी हो मन रे मायने
1: बिल्कुल सब बात सु आप की ना की जरूर सीखता आज भी सीखा बस तरीका बदलगा तौर तरीका बदलगा साधन बदलगा
0: समय बदल गयो सब कुछ बदल गयो लेकिन जीवन ने खाली कागज पर स्याही रो जो धब्बा पड़िया है वे आज भी वेड़ा ही है और नीली स्याही सहन सहलता दी उज्जवल भविष्य दियो लड़ने री ताकत दीवी तो कल स्कूल जाने री तैयारी सिर्फ पोथिया ने बस्ते में घालने को नहीं व्या करे है अतः जीवन री हर चुनौती सु लड़बारी तैयारी होया करे है टाबर स्कूल सु सिर्फ आखर ही नहीं सीखे वे संस्कार भाईचारो धीरज भी सीखा करे तो आज रो टाबर जो कड़ी है वो काल ने इन देश रो उज्जलो बाग बनेला जिया टाबर स्कूल री घंटी सुनने दौड़ लगाया करे है यही आज रो कार्यक्रम आप सवारी दिलारे ने नई उमंग जगाई हुवेला
1: बिल्कुल और टाबरा री प्यारी मुस्कान और माँ बाप ने उन्हें संजय वड़ा सपना रे सागे राखता थका अब मैं इन प्रोग्राम रो अठाई समापन करा और आज इन पोताटी री बाता विशेष गणगौर कार्यक्रम में आप रे साथे ही दो सखियां कोमल राठौड़ और पूनम देवड़ा और इनरी प्रस्तुति और संयोजन हो
0: राम निवास चोयल
1: आता चलता हुई कहना है कि कोरी मारा घड़ा है टाबर जिया घड़ाला बिया ही घड़ जावेला शिक्षा और चोखा संस्कार ही वारो भाग जगावेला तो इनरे साथे ही अब दोनों सखियां ने दिलाओ सीख
0: चाला राम राम
2: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
5: हेलो
6: राजेश जी मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ
5: फिर से
6: आप डिजिटल अरेस्ट में हो दूसरे कमरे में जाइए अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं लंबे जाएंगे
7: 10 लाख दीजिए बच जाएंगे
5: सर इतने कहाँ से
7: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए बाकी बाद में
5: 2 लाख
8: क्या हुआ पापा
5: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं
6: अरे
5: काट दिया
8: पैनिक मत कीजिए पापा डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है ये सब फ्रॉड है
5: फ्रॉड
8: पुलिस बैंक RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
5: तो पैसे गवाओगे
9: RBI कहता है
10: जानकार बनिए सतर्क रहिए
11: आप जानते हो ना मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस आज ये हमारा मंत्र बन चुका है
11: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घनघोर। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी और एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 102.1 मेगा

0: और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 2:15 हुए हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +989128101915। दूसरा नंबर है +989128101909। तीसरा नंबर +989128101902। और चौथा नंबर है +9899321793। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और

0: और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: चार महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमरीका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुद्रुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गयी। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा सुशासन

0: और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया

0: कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का यह पहला गीत, जो कि है उजाला फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में यह अगला गीत, जिसे लिया है फिल्म नागमणि से। गीता दत्त की आवाज है, प्रदीप के पुल हैं और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे शरारत फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के पोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे धूल का फूल फिल्म से यह गीत आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और एन दत्ता ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: दिन है।
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं संतान फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल और दत्तराम के संगीत के साथ और इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए सदा सुखी रहिए नमस्कार।

बोले ये दिल का इशारा, आंखों ने मिल के पुकारा।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: सोनाली पाठक। तो आप सभी को सोनाली पाठक का
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। क्या कर रही हो सोनाली?
2: बैठी हुई हूँ आपके सामने।
1: भाई मेरे सामने तो बैठी हूँ, इन दिनों क्या कर रही हो? मैंने ये जानना चाहा क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है।
2: बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने बैठी हुई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, एक सुखद अनुभूति मिल रही है।
1: अरे वाह, यही तो होना चाहिए कि जब दो दिल मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, दो दिमाग मिलते हैं, तो सुखद अनुभव होना चाहिए। और ये हमारी जिंदगी में होता भी है सोनाली। हमारे श्रोता भी इस बात को कहते हैं, जब हम अपने श्रोताओं के लिए आते हैं, उनसे कार्यक्रम के जरिए मिलते हैं, तो कितना सुखद एहसास होता है हमें।
2: और हम है ना कल्पनाओं के माध्यम से महसूस भी करते हैं ना मंदाकिनी जी।
1: हाँ?
2: कि हमारे बहुत सारी सखियां बैठी हुई होगी, श्रोतागण बैठे हुए होंगे और वो क्या कर रहे होंगे,
1: हमें सुन रहे होंगे,
2: हमें सुन रहे हैं,
1: कुछ अचार भी डाल रहे हैं।
2: हाँ, हमारी कुछ सखियां जो है अचार भी डाल रही होगी कि चलिए इधर रेडियो भी ऑन है किचन में और इधर अचार बन रहा है, क्योंकि इन दिनों तो घर में अचार और मुरब्बे बनते ही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी होता है घर के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या हमारे घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष भी जब ऑफिस जाते हैं, तो अचार और परौठा एक ऐसा भोजन है जो लगभग हर लोग लेके जाते ही अपने टिफिन।
2: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी थोड़ी सी फीकी बन गई है, तो उसमें जो अचार है ना वो उसका स्वाद बहुत बढ़ा देता है खाने का।
1: और कई बार ये भी होता है कि जब घर की गृहिणियां सब्जी बनाने में थोड़ी सी आलस बरत लेती है ना, तो दाल और अचार से काम हमारे घर के पुरुष चला लेते हैं, पता है?
2: या फिर कभी सब्जी कम पड़ गई, तब भी अचार से काम चला सकते हैं।
1: और या प्याज का सलाद खाना हो ना, उसमें भी अचार डालकर
2: खा सकते हैं,
1: मस्त।
2: और साथ में मुरब्बे, वो मीठे मीठे मुरब्बे तो बहुत है, उसमें आम का मुरब्बा बनता है, फिर करौंदे का मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा।

0: मुरब्बा बनता है, अलग अलग तरह के मुरब्बे बनते हैं जो भी हर घर की शान होती है।
1: शान होते। तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम व्यंजनों पर आएंगे ना, तो हमारे श्रोता या हमारी सखियां और सखा तब तक आचार और मुरब्बे पर अपनी जो है रेसिपी लिख कर भेज चुकी होंगी
0: कि आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है। कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते हैं, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है, उस पर हमें लिख कर भेजिए।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे क्या और विषय हैं आज के?
0: शब्द हमारा विचार आपके, इसमें विषय है संयम।
1: संयम
0: जिसे कहना बहुत आसान है और उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल
1: है। बहुत मुश्किल है। और वैसे हमारे श्रोताओं ने संयम पर बहुत कुछ लिखकर भेजा भी है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सोनाली हमारे सखाओं से, हमारी सखियों से, कि जब आपके जीवन में संयम बरतने की बारी आई तो आपने कहां कहां संयम खो दिया था
0: या फिर झुंझला उठे।
1: वही बात कि मसलन आपको बाजार जाना है, किसी पार्टी में जाना है, और आपकी धर्मपत्नी ने तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और आप झुंझला गए,
0: संयम टूट गया।
1: बिल्कुल। या फिर ट्रैफिक में जब आप
0: फंस गए हो और सामने वाली, आपको पता ही नहीं है कि सामने की यानी दो गाड़ियां छोड़ के उसके आगे की गाड़ी बंद पड़ गई है और आप जोर जोर से हॉर्न देते जा रहे हैं, ये क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, क्या हो रहा है।
1: और दुनिया भर की बातें हमारे मन से निकलती है उस वक्त, है ना, जब हम फंस जाते हैं तो हम धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जहां हम अपना आपा खो देते हैं, तो हमारे श्रोताओं से हम चाहते हैं वो लिखें संयम क्या है। संयम तो सबको पता है क्या है, लेकिन संयम की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना है कि हमने जिंदगी में कब कब संयम रखा और ये कितना काम आया
0: और कब कब खो दिया संयम,
1: वो तो बताना ही है, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों
0: भी है
1: ना।
0: जी। और साड़ियों का संसार, इसमें हम इलकल साड़ी कर्नाटक के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भी भेजी है इस बारे में।
1: बहुत अच्छी साड़ी होती है इलकल साड़ी,
0: नरम मुलायम बहुत सुंदर।
1: तो सोनाली इस बार हम जब बाजार जाएंगे ना तो ये साड़ी खरीद कर लाएंगे।
0: बिल्कुल खरीदेंगे, इतने सुंदर कलर होते हैं इसकी इलकल साड़ी के,
1: क्या बात है। तो और देखिए, सोशल मीडिया पर वाद विवाद और समय की बर्बादी हम बहुत करते हैं,
0: बहुत ही ज्यादा। यानी हमने सोशल मीडिया ऐप खोले कि उसमें कोई एक विषय पे या कोई एक रील पे इतने लोग लिखते हैं और उसमें घंटों बाद, और फिर लोग वो मैसेज भी पढ़ते हैं किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा, उस पे भी 250-300 हजारों के लाइक्स होते हैं। तो ये समय की बर्बादी ही है।
1: बिल्कुल, मिलता कुछ नहीं है, है ना, लेकिन हम अपने विचार वहां थोप देते हैं। और अनावश्यक कई बार क्या होता है, साधारण सी न्यूज होती है उसको हम बहुत बड़ी बना देते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, या फिर कोई बहुत ही सेंसिटिव घटना हो गई है किसी की जिंदगी में, उस पर हम अपने विचार अनाप शनाप थोप देते हैं।
0: और कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी, आपस में लड़ाई भी हो जाती है लोगों की, ये तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये तो ऐसा है वैसा है, और उसमें हमारा बहुत सारा वक्त,
1: समय, और सोचिए दिमागी हालत कैसी हो जाती है उसके बाद।
0: अगर हमें क्रोध आ गया तो हम खुद का बहुत नुकसान कर लेते हैं।
1: बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पे लिखते हैं वक्त पहले तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, फिर ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि किस तरह के विचार आने वाले हैं। इन सब में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हम कुछ क्रिएटिव लिखें। हाँ, कुछ मुद्दों पर आप आवाज उठाएं, लेकिन उस आवाज का असर दूर तक होना चाहिए।
0: और बस मैसेज किया और छोड़ दिया, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है
1: कि किसने क्या लिखा और किसने लाइक किया किसने नहीं किया। हम नाराज हो जाते हैं, पर अब हमारे श्रोता नाराज होने वाले हैं अगर हमने गाना नहीं सुना,
0: सुनवा देते हैं।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी, पर हमने अपने अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियां होती
1: हैं। हाँ वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो हम अपनी साड़ियां और अपने कपड़े कैसे निकालेंगे भाई।
0: भाई हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियां होती है, तो कर्नाटक की साड़ी इलकल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर
1: खरीदनी पड़ेगी, है ना?
0: बहुत सुंदर साड़ियां होती है और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है। हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है और इन्हीं में से एक है इलकल साड़ी जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट, पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली, और इलकल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल नगर से है और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इलकल साड़ी पड़ा और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इलकल

0: साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियाँ विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी, लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी मांग
1: हो गई है। बिल्कुल सही कहा। और इलकल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है, बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है और पारंपरिक रूप से इसमें टोपे तेनी तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो इसे अन्य साड़ियों से अलग बनाती है।
0: और पारंपरिक इलकल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बना

0: और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
1: हाँ बिल्कुल, और इल्कल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी है और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। और इसके पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती है। बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं और कई साड़ियों में मंदिर कला या ज्यामितीय पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
0: और एक इल्कल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का परिणाम होती है। हथकरघे पर बैठकर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इल्कल साड़ी जो है कर्नाटक की पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसर हो, त्योहार हो या विशेष अवसर हो, इसमें पहनने की परंपरा रही है। और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
0: और आज इल्कल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है
0: घर चल सके,
1: उनको एक आजीविका का साधन मिल सके। और इल्कल साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा अभी आपने कहा था, ये कर्नाटक की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है। और इसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है। और ये भारतीय हथकरघा विरासत का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
0: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गए आप तो आपको इल्कल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और क्या होता है ना मंदाकिनी जी, हम साड़ियां तो खरीद ले आते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है। हाँ। तो साड़ियों को पहनना भी उतना ही जरूरी है, कि कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो तो साड़ियां जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं का ऐसा लगता है कि वक्त बहुत
1: ज्यादा लगता है,
0: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़ी एक दो घंटे पहले तैयारी करके रख ली कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसके जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे तो हम आराम से पहन के जा सकते।
1: और जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं, कुछ बहनों को अभ्यास कम होता है तो सीखा भी जा सकता है।
0: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं हम साड़ियाँ, यानी आप उसमें बिल्कुल एक हुक लगाना है और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है, तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है उतना ही समय में साड़ियां भी पहन सकते,
1: उसी तरह से पहना भी जाता है। लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली, जब खुद प्लीट्स लगाई जाती है और पल्लू को सजाया जाता है ना, उसका मजा कुछ
0: उसके बाद कुछ और होता है ना।
1: चलिए तो गीत सुन ले,
0: सुनते हैं गीत।

0: हाँ तो सोनाली, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी जी, तो हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता
0: क्या
1: है।
0: बात है, क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है।
1: तो ऐसी जब
0: बेतुकी बहसों में पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक सुने, और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं,
1: और मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है।
0: बिल्कुल, एक पन दो काज है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली, हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
1: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
0: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं, और विचारों में आपने का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है, और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, कि जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको ऐसी कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
0: हाँ, हाँ।
1: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए, और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा

0: समय की भी बर्बादी होती है।
1: हाँ हाँ
0: तो हम ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है, तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है वो हम बिल्कुल पूरे टाइम बर्बाद करते हैं।
1: बर्बाद कर देती है। और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
0: बहुत
1: है,
0: बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
1: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो है हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही। और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात लो मैं ये लिख देती हूँ,
0: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा, हाँ। रहूंगी, है ना।
1: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं
0: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और ये ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत, ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए,
0: थोड़ा सोचे समझे, संयम से काम
1: है। वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है, और समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किससे बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
0: और मंदाकिनी जी एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है। बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे, अभद्र भाषा का बहुत
1: इस्तेमाल होने लगता है।
0: तो वो एक गलत है। वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
1: जी,
0: की भाषा का।
1: आप देखिए ना समाज में कितना गलत संदेश जाता है। हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
0: सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए, समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग, और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
0: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले, तो यही माध्यम ज्ञान, जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
0: पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में,
1: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताब।
0: तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार खुला है,
1: सब कुछ बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में, कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सब कुछ आपके पास, उसका सदुपयोग करना चाहिए,
0: हमें सदुपयोग करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा अच्छा यानी जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें अनदेखा करना है।
1: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए,
0: और उसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी
1: नहीं करनी चाहिए, है ना। इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा
0: ब्रेक लेते हैं।

0: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया विराम मंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरी, आप कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सोना मेरे सामने भी सोना ही बैठी है सोनाली के रूप में।
1: चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेहुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है। मसलन हास्य व्यंग के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, बेसिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुत

0: मूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जहां लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। इससे उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव ही पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान, ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव, क्रोध अलग होता है। इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है। और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है, हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है, ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि किए तथ्य साझा किए जाते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें, और सबसे अधिक किस एप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा। और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है। किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे, जिससे हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनके पोस्ट ध्यान से पढ़ ले, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय गुस्से और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है। मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
0: वहीं एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए, ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
1: बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझ कर ही अपने विचार रखें। अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
0: वहीं एक साथी लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं, अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने। और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं सोनाली, जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां, अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है, आप सोचिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
0: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
1: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है, जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
0: एक साथ ही लिखते कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का मन

0: ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है. जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है. तो भैया अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है.
1: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण. मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अनर्थ करने की कोशिश करे, तब खुद को रोक लेना ही संयम है. संयम हार नहीं ठहराव है. बहुत अच्छा लिखा है. देखिए गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है, और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है. जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया.
0: क्या बात है. एक साथ ही लिखते हैं, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है. हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है. संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं मन की शांति भी होता है. जो व्यक्ति अपने शब्दों भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है. संयम जीवन की पतंग की वो डोर है जो उसे ऊंचाइयों तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है. नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस होती
1: है. क्या बात है. बहुत सुंदर लिखा है. बहुत सुंदर. वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है. आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है. ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं. एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है, उसी प्रकार जीवन में उपलब्धियां भी समय और निरंतर प्रयास मांगती है. बिल्कुल. हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं.
0: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं, कई कठिनाइयां, कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत न हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा और आज इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया. मेरा सभी सखियों सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखे और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करे, सफलता जरूर मिलेगी.
1: बिल्कुल सही कहा. और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में. आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं कि एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा रहे हैं. तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए. आज
0: इस
1: नहीं
0: साल
1: तो
0: नहीं तो अगले साल आपको परीक्षा में सफलता मिल ही जाएगी.
1: जिंदगी
0: और इतना सुंदर जीवन है मिला
1: उसको
0: है,
1: हम खत्म कर देते
0: जी. तो बच्चों को ये हमें कि और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते. उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए ये डिश, आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है. आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज ही लाकर देना. आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं. तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहें कि ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर लाकर देंगे या दो चार दिन बाद लाकर देंगे. तो बचपन से ही उन्हें इस
1: ये संयम सिखाया जाए. दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है. उनको संयम में रहना सिखाएं. कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए ना कि आप अपने जीवन को ही
0: समाप्त
1: कर ले, है ना. तो ये संयम हर जगह जरूरी है. और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए बोलने का.
0: कि गाना सुनाना चाहिए. सुना

0: मंदाकिनी जी,
1: जी
0: हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे सखियों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, कैरी 1 किलो कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी 1/2 छोटा चम्मच, इलायची 1 पाउडर 1 छोटा चम्मच, उसके अंदर भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और 1/2 कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे, इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोख कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दे। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है। ठंडा होने पर कांच की बरनी में रखे। इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ
1: खा सकती है। इसका मतलब हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है ना
0: कुछ मुरब्बे और अचार
1: बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर रही है
0: और एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे हैं,
1: तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं।
0: जी,
2: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने

0: हमको देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत वो सुन सकते हैं।
4: हम भी सुनेंगे उनके साथ में।
3: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है, तो भाई एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम, राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक, स्वादानुसार चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है मूंगफली का या राई का, 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है, साथ में 10-12। ठीक है, आम को तैयार करना है। कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छील कर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला ले और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गरम किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघलकर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रसा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अचार खा सकते हैं।
4: मेरे तो मुंह में पानी आ गया। थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना।
3: क्या बात है, तुम्हें तो मुरब्बे की भी याद दिला दी है।
4: अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं और 1.25 किलो चीनी है, 4 से 5 कप पानी है, 4-5 इलायची, फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोंद ले ताकि चाशनी अंदर जा सके, हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमे आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरे। मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
3: हाँ, वही एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल, सिंपल सा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं। दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेते हैं। जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और इसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं। तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सुखा कर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
4: और अब क्या करना है?
3: अब तो हमें बहुत अचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
4: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
3: बिल्कुल, सुन लेते हैं।

0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी न जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
1: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं।
0: तो इजाजत लेते हैं आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
1: जी। नमस्कार,
0: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
1: विविध भारती एक ऐसी चीज है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं, और खास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था
0: संगीत सरिता
1: अभी भी आता है। उसमें हाँ, उसको हम लोग बहुत सुना करते थे। और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे, तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
0: जी जी, और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे, मेरे ख्याल से पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
1: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया। और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में, फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे। और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहां ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कंटेम्पररी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद हुई
0: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ
1: जी।
0: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 बरस की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को
1: जी जी। जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप। किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे, उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसे और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो।
0: क्या बात है।
1: तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में यही करना है या यही रहना है।

0: तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
1: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका
0: जी
1: हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में?
0: उस वक्त हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण उनसे मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था, कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी, और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले,
1: जी,
0: और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारिका जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारिका वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी, तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी।
1: वाह,
0: तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने
0: हिला
1: वाले
0: देने वाला था, और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जब फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया, जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कंप्लीटली। और मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा, किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्जाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्जाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीजन में थे।
1: क्या बात है,
0: तो
1: बढ़िया।
0: मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले,
1: जी,
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे जांचने वाले थे उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहां पर जंगल में वन प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करते हैं?
0: मैं तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपने जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी

0: देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में, फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो है आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को। या उसको मैं तो देखता हूं कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: जी जी, चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
0: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
1: जी,
0: है।
1: और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे।
0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज खत्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: ओह क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं
0: जी।
2: ओ शाम कुछ

0: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख

0: भवन में ज्वाइन किया और वहां पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहां से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा करके उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहां से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ, तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही। और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीजें जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
1: मिलता है। कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
0: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूं, क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था, अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है, मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था और वो इतना ज्यादा चमकीला और इतना ज्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया और रोज सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया। और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार, आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि ये जो रंगों की बात की तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
0: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हरी रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम है।
1: हम अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग जी।
0: हाँ, तो मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना

0: चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है, ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीजें नजर आने लगती हैं, कई रूप भी नजर आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नजर आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है। किसी चित्र को समझने की जरूरत नहीं है, उसे देखने की जरूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज अगर देखते हैं तो रोज आपको एक नए कुछ उसमें चीजें नजर आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है लगातार। तो ये जो चीजें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनाएं?
0: मैं चाहूंगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन,
1: मौसम फिल्म का गाना है।
0: जी हाँ,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बेंगलोर में दिया था एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहां से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
0: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आया और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमंच शो था बम्बई में जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चेस्टर हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं, तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख करके मतलब जाहिर एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चेस्टर हविस आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे, और फिर उन्होंने हमसे बात बात करी, तो काफी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं, और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
0: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है, और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ खास बारीकियां सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
1: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला, और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा करके कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी, और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो बोले यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है, क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था, तो इतनी ज्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराओ तो अपन लंदन में रिलीज करेंगे। और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ, बाय द टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वनमैन शो हुआ था प्राग में, और वहां पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ, और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं सकी, और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए उन्होंने मना कर दिया कि भई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ, तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वन मैन शो किए थे प्राग में, और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया, तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने, और मैं अभी उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने मेरे 80 चित्र वो जो उनको मैंने भेंट करे थे वापस लौटा दिए, और वो उन्होंने 80 चित्र जो है अपने घर के कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे, और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956 के पहले के थे।
0: जी।

0: और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैम्प नाम की पेंटिंग से होता है, उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं। मगर ये सारे काम जो हैं 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे और बड़े खूबसूरत काम थे। ये उस जर्नी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं।
1: तो
0: मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ, तो अपन दोनों चले चलेंगे प्राग और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊंगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई, तो वो हो नहीं पाया।
1: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
0: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
1: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो, क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी,

0: यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है, अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया और इनके भीतर सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी हैं, तो आप इसके बारे में बताइए कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने है ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रजा साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बीबी कारंत थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर है वैदेही, उन को बोल करके अपनी ऑटोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में, और उसमें ये हुआ कि उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी अनुवाद तो बाबा कारंत जो है भारत भवन में थे और हम लोगों की बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और उनके साथ काफी गहरे संबंध भी थे, तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने जीवन भर काम जो किया है, ज्यादातर काम जो है हिंदी नाटकों में किया है, हिंदी भाषा में किया है, और स्कंदगुप्त जैसा नाटक किया है, चंद्रगुप्त जैसा नाटक किया है, ये जयशंकर प्रसाद के इतने कठिन नाटक हैं कि जिसको करने के लिए किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई थी, मगर बाबा कारंत एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे कि उन्होंने स्कंदगुप्त में से स्कंदगुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला, और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है, ही वाज अ ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने के प्रोसेस में है
0: जी।
1: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे, और फिर बहुत ही जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातिस का नाम लिया जाता है, तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी

0: लावी मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
1: जी जी।
0: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह करके अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पे जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीजों से वंचित रहना पड़ता था, मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूं। ये सारा उन्होंने भुगता मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त। वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली।
1: ये बहुत बड़ी बात है और एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर। हाँ। तो हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को?
0: ये जो मेरी किताब है इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला पे और चित्रकारों पे जो बातचीत करी है वो है इन सारी जगह में, और उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं जो मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है। तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं। तो ये मेरे निबंधों की किताब है एक तरह से, जो 5-7 है, एक उनके बारे में भी है शीर्षक नहीं, दरस पोथी और अचंभे के रोने के अलावा। तो इस तरह से मतलब काफी लिखने का मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है।
1: जी जी।
0: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी
1: जी।
0: वैसे ही मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे लिखी। तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो।
1: जी जी। तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन?
0: मेरे लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना तो कभी कभार है, मतलब मैंने ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ मेरे जो पर्सनल संबंध थे, इतने साल 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा, तो एक लंबा संपर्क था और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना। क्योंकि जब हम लोग 74 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहां पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहां कैनॉट प्लेस पे एक हमने बैनर देखा, 6 हू डिक्लाइन ट्रिनाल है। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने ट्रिनाल को जो है कैंसल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था तो मैं तो सबसे जूनियर था तो सबसे पीछे ही था, तो मैंने भी अपनी स्केचबुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हमारी नजरें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए
1: जी।
0: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात है।
0: तो मेरे लिए तो एकदम से मतलब
1: आश्चर्य हुआ,
0: बहुत ही आश्चर्य था क्योंकि मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, पर स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी भीड़ थी, इतना सारा क्राउड था, बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना मूर्ति सी नजर, बट ही रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके हैं
1: जी। यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी
1: इस बात का वादा कर लो, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट हैं अग्नेता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नजर नहीं आता है उसकी जो नायिका है उसका, तो एक मैंने उसका अनुवाद किया। और ये जो बाबा कारंत के ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद, तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है वो।
0: जी जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
1: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम

0: काम करते हैं और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं है। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत जरूरी पक्ष है। अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा,
1: किसी
0: मतलब
1: देखा बिल्कुल।
0: हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भी हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुंचे कैसे। तो वो जो पहुंचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं, या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
1: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक प्रेरणा
0: जरूरी
1: की
0: है कि
1: होती
0: हम
1: है।
0: जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ
1: हाँ,
0: तय कर
1: जान
0: सकते हैं।
1: पाएंगे
0: हाँ,
1: बिल्कुल,
0: मतलब वो
1: वाकिफ होना जरूरी है।
0: दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: वो जो
1: बात है।
0: बनाना है, खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
1: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है? उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
0: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना, समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं। तो
1: जी
0: मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक होकर के, एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज समझने वाला, मतलब अपने तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है और वो सारी चीजें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियां हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया और जब लंदन में हुआ तो, मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो,
1: जी।
0: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: जर्मन आदमी भी मनुष्य हैं और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। तो वो शायद रंग ही हैं जो मनुष्य को संबोधित हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि
1: जी
0: मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जैपनीज हो, चाहे वो, मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं।
1: जी जी
0: और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो
1: जी
0: ये जो चीजें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
1: जी। यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाए?
0: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा,
1: जी, सुनते हैं
0: ये
1: ये
0: वाला
1: गाना।
0: सुनता है।

0: इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: हम मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो हैं अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीजें सीखते समझते और बरतते हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
0: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें वो सब?
1: ये जो है इसमें बहुत सारी चीजें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
0: जी जी।
1: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का, 5 साल का, वो इन सब

0: तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है और वो उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज्यादा सीख सकेंगे, और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
1: ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये जरूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाए तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया।
0: हाँ,
1: ये भी थोड़ा सा बताया।
0: ये बहुत ही जरूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं, और आप रंगों को पास पास रख कर के भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीजें आपको लगातार काम करने से ही आती है। रदा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
1: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है ये बताएंगे?
0: इसमें दोनों तरह की चीज होती है। कई बार चित्र जो है खुद भी इतने जिद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं, और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं। और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया, तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है। आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहां जहां आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं, तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है, मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को। अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहां छोड़ा था। तो ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है कि जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते।
1: और वापस उस चित्र में उस यात्रा में वापस लौटना भी
0: मुश्किल होता है वो
1: जी। इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें बताई हैं, और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

FM बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है सूरी नगरी चैनल से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम युववाणी।

राम राम सा। आकाशवाणी रे मनभावने कार्यक्रम युवाणी में आप सगड़ा श्रोताओं रो गणमान स्वागत है। मु आप रेडियो साथी देवी सिंह हाजिर हूँ माइड भाषा रे इणे कार्यक्रम में। साथड़ा आज है बुधवार और बुधवार रे दिन हुआ करे खास फरमाइशी कार्यक्रम। यदि आप भी मन फरमाइशा भेजना चाहो, आप राजस्थानी लोक गीत और लोक भजन सुनना चाहो तो मासू इन प्रोग्राम में जुड़ सको। जुड़न सारू आपने माने व्हाट्सएप रे नंबर माते मैसेज लिखकर भेजनो है। मारा व्हाट्सएप रा नंबर है 94133 29359। नंबर एक बार फिर सुन ले रहो 94133 29359।

सदरा और आप सुने चौकस राजस्थानी लोक गीत चंपे खान री आवाज में। सदरा इन प्रोग्राम में आप आज एआई टेक्नोलॉजी रे बारे में बात कराला, पानी रे बचाव रे बारे में, जल स्रोत रे बचाव रे बारे में बात कराला।

और आपने सुना वाला चौकी से एक भेंट वार्ता। सदना हर प्रोग्राम में मैं आपने एक राजस्थानी शब्द भी दिया करा। आज राजस्थानी शब्द है बाखड़। इन बाखड़ शब्द रो आपने हिंदी अर्थ बताना है और आपने इन अर्थ माने लिखकर भेजना है हमारा व्हाट्सएप नंबर माथे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94133 29 359। एक बार नंबर फिर सुन ले रहा हूँ, 94133 29 359।

0: સદણા આપના સુણાવા એક ભેટ વાર્તા સામાજિક કાર્યકર્તા શ્રી ધર્મેન્દ્ર વિશ્નોઈ સે નિતેશ દેવડારી વાતચીત.
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर FM 102.1 पे आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आरजे नीतीश. और आज हमारे साथ एक ऐसे युवा मौजूद है जिन्होंने जीव दया, गो सेवा और जल संरक्षण को अपना जीवन का मिशन बना लिया. हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में धर्मेंद्र विश्नोई का. सबसे पहले आपका युवाणी में बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र. अपने बारे में और अपने सेवा कार्य की शुरुआत कैसे की हमारे श्रोताओं को बताएं.
2: नमस्ते धर्मेंद्र विश्नोई, मैं बचपन में मेरे दादाजी वन्य जीव में पशुओं की सेवाएं करता था. उस टाइम मैं छोटा था, उस टाइम दादाजी को काम को देखते हुए मैंने भी ये, मैं बड़ा होकर मैं भी ये सेवाएं स्टार्ट करूंगा. मेरे को आज 7-8 साल हो गए हैं वन्य जीव में पशुओं के लिए सेवा कर रहा हूँ. मैं सवेरे 5 बजे उठ के चला जाता हूँ और 10-11 बजे वापस आता हूँ. काफी खेलियां हैं, तालाब हैं, उनके मैं वन्य जीव में पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करता हूँ, साथ साथ चूगे की. और मैं एक ये बताना चाहता हूँ, मैं गाँव में मेरे 15-20 है देसी मटकियों में पानी भरता हूँ, वो खेजड़ियों के ऊपर बाउलियों के ऊपर रखता हूँ मैं. उसके साथ पास में जीवों के लिए चूगे पानी की भी व्यवस्था करता हूँ.
1: वही मैं साथ ही साथ जानना चाहूंगा कि गर्मियों में आप प्रतिदिन हजारों लीटर पानी पशु पक्षियों तक पहुँचाते हैं, इस अभियान को संचालित करने में सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या आती है?
2: अब की बार राजस्थान में पानी की ज्यादा किल्लत चल रही थी, तो मेरे को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था. मैं दिन में 15-25 हजार लीटर पानी डालता हूँ अलग अलग गाँव में, गुड़ा विश्वान, खेजली, अपने बिडासनी, पास पास के जहाँ जहाँ मेरे पास कॉल आते हैं, मैं वहाँ वहाँ जाके वन्य जीव पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करता हूँ.
1: तो धर्मेंद्र जी, आप इतने हजारों लीटर पानी एक दिन में सब जगह पहुंचाते हैं, आप ये अकेले करते हैं या आपके पीछे पूरी टीम है इस सेवा में?
2: मैं पर्सनल करता हूँ, मेरे पास फोन भी आते हैं कि मेरे नाम से 2 पानी के टैंकर डालने. मैं नहीं भाई साहब, मैं सिर्फ मैं पर्सनल घर से पैसे डाल के मैं सेवाएं करता हूँ. दूसरे करते हैं उनको मैं उनके नंबर दे देता हूँ, वो उनके पानी के लिए व्यवस्था कर देते हैं.
1: मतलब आप ये सारी चीजें 8 साल 10 साल से कर रहे हैं और निरंतर आप ऐसा करते जा रहे हैं. और मैं ये साथ ही साथ जानना चाहूंगा कि मतलब रोज लगातार सालों साल लिए जो आप में एनर्जी है कि सुबह उठना और हजारों लीटर पानी खुद की जेब से पैसे लगाकर इन वन्य जीवों तक पहुंचाना, तो वो ऊर्जा आप में कहां से आती है?
2: मैंने ये दर्द देखा था, मैं पहले बचपन था, उस टाइम मैं वन्य जीव बेचारे एक खेली के अंदर 2-3 ये छोटा गाय का बछड़ा पानी की तरस ले पानी के अंदर खेली के अंदर डेथ हो गई थी पानी के पीने के चक्कर में. उससे मैंने प्रेरणा ली, बेचारे ऐसे जीव जंतु, लोग तो पानी मांग के पी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था कौन करे.
1: तो आप निरंतर 8-9-10 सालों से पशुओं की सेवा कर रहे, कोई ऐसा मोमेंट रहा है क्या जब आप पानी पिलाने गए हो, कोई पशु पक्षी आपके पास आए हो, आपको देख के लगा उनकी आंखों में कि हाँ भाई कि जो भी मैं ये काम कर रहा हूँ अब मुझे फील हो रहा है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ.
2: मैं ट्रैक्टर की आवाज आती है तो वे मेरे कम 40-50 गए हैं, सांड है, वो मैं ट्रैक्टर की आवाज देके वो आ जाते हैं, मैं बुलाता हूँ. उस टाइम 40-50 झुंड पूरा आता है मेरे देखने को, भाई पानी पानी आ गया है. फिर उनको मैं गुड़ भी खिलाता हूँ, मेरी आवाज से कहीं दूर 2-2 किलोमीटर की आवाज चली जाएगी तो वो चला के वहाँ मेरे पास आ जाएंगे.
1: और धर्मेंद्र जी, वही साथ ही साथ देखा गया है कि कोरोना काल के दौरान भी आपने सेवाएं, जो आपका कार्य है वो आपने जारी रखा, आपने उसे रोका नहीं. और उस समय कोई एक ऐसा अनुभव जो आज भी आपके दिल के करीब हो?
2: कोरोना काल में मैं उस टाइम 4-5 दिन तो मैं घर पर रहा, फिर मैं थाने से परमिशन ले ली थी मैं गाड़ी की, उसका कैंप लगा था कुड़ी में, वहाँ खाना बनाते थे सुबह शाम. एम्स में, वहाँ एम्स में होटले सब बंद हो गई थी, उनके परिजन रहते थे, उनको खाने की व्यवस्था करता था. उसके बाद में गलियों के अंदर गए थे, उनको रिजी की व्यवस्था करता. फिर मैं शाम को गाँव जा रहा, तो बेचारे झुंपड़ पट्टी वाले पानी के लिए तरस रहे थे, क्यों तरसने का वजह ये था कि टैंकर वाले सब गांव चले गए थे, सब लॉकडाउन लग गया था, तो वो झोंपड़ वाले पानी पानी के लिए तरसे थे, घर में किसी को एंट्री करते देते नहीं थे. तो उससे मैंने भाई ये झोंपड़ी पट्टी में मैंने बहुत सारी व्यवस्था की पानी की पिलाने के लिए.
1: धर्मेंद्र जी, आपने बताया कि जब आप आपके पास किसी का फोन आता है तो आप फटाफट वहां पहुंच जाते हो, कभी गांव में, कभी जंगलों में, और कभी कभी ऐसे सूखे जल स्रोतों तक जहां मतलब आम लोगों का पहुंचना संभव नहीं है. तो जब ये सारी चीजें एक साथ आपके साथ हो जाती है तो इन सब चीजों को आप मैनेज कैसे करते हो?
2: मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो भाई आज आप फोन आ जाता है 1-2 दिन पहले, मैं हमारा आज पानी खत्म होने वाला है तालाब में, तो मैं वहाँ सुबह जल्दी उठ के वहाँ पानी डाल देता हूँ. फिर कंटिन्यू मैं जहाँ जहाँ फिक्स होता है वहाँ पानी डालता हूँ मैं, तो पहले जाके वहाँ व्यवस्था करता हूँ. फिर वहाँ कोई और आ जाता है तो दूसरे तालाब और भी व्यवस्था करता हूँ मैं.
1: कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग आपके पास आते हो कि आप जैसा काम करते हो

0: वैसे हम मेरे को भी करना है, तो आप मेरे को मोटिवेट करो कि हम कैसे करें।
1: ये घटना बता दो, मैं लॉकडाउन टाइम में मेरे मित्र है झालमंड में, एक प्रजापति है, वो वैष्णव है, उन्होंने मेरे को कॉल किया, भाई साहब मैं आपसे प्रेरणा लेके मैं प्रतिदिन मैं वन्य जीवों के लिए सेवाएं करूँ। वो मेरे को बराबर फोटो भेजते थे मेरे पीछे काकानी में, काफी गाँव में मेरे पीछे, मैंने इसलिए सोशल मीडिया पे हर पोस्ट करता हूँ, लाइक आए नहीं आए ये वो अलग बात है, पोस्ट मैं करता हूँ, मेरे देखने से लोग प्रभावित होते हैं और वो सेवाएं बहुत करते हैं, तो मेरे जिससे उनको

0: और वो सेवाएं बहुत करते हैं, तो मेरे जैसे उनको देख मेरे को बहुत सुकून मिलता है भाई, मेरे इस एक काम से हजारों काम हो रहे हैं वन्य जीवों के लिए, पानी की राहत मिल रही है।
1: और वही देखा गया सोशल मीडिया पे जो चीजें ट्रेंडिंग चलती हैं लोग उसी को ही फॉलो करना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे लोग सोचते हैं अगर हम पर्यावरण के लिए कुछ करेंगे, दो चार पेड़ लगा लिया या कहीं पानी नहीं है पशु पक्षियों के लिए वहां पे पानी पहुंचा दिया, तो लोगों को लगेगा कि ये पर्यावरण प्रेमी है या फिर जल संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, तो वो ये सारी चीजें रीलों के लिए करते हैं या फिर फेमस होने के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सबसे यही कहूंगा भाई कि रील बनाओ, अलग बनाओ, बाकी ये अलग सेवाएं करनी चाहिए वन्य जीवों पशुओं के लिए। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है अपने राजस्थान में, तो इसलिए मैं सबसे यही कहूंगा भाई सबसे ज्यादा वन्य जीवों पशुओं के लिए सेवाएं करें।
1: और आपने कभी ऐसा देखा है कि जहाँ आपने एक नया जल स्रोत बनाया हो वहाँ पे कोई प्रजाति विलुप्त हो रही हो, और आपके वहाँ जल स्रोत बनाने से और निरंतर उन जीवों का ध्यान रखने से जो प्रजाति विलुप्त हो रही थी आज वो कुछ संख्या में वहाँ पे और जीव हो गए, तो ऐसा कहीं आपने देखा है?
0: एक मैं ये आपसे ये कहना चाहूंगा भाई कि हिरण अभी हमारे इस इलाके में काफी गुड़ा में कम हो गए हैं। कम होने का कारण यह है कि उन्होंने पहले दोरे बने, अब तारबंदी कर दी, जालियां लगा दी, उससे हिरण का भी कम हो गया, हिरण आगे चले गए पाली उस शेड में। तो मैं सबसे यही कहूंगा भाई तारबंदी और ये जाली हटानी चाहिए।
1: और वही साथ ही साथ अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, यदि कोई युवा समाज सेवा से जुड़ना चाहता है तो उसे कहां से शुरुआत करनी चाहिए?
0: मैं मेरे युवा भाइयों से यही कहना चाहूंगा, किसी का जन्मदिन आए तो बड़ी बड़ी होटलों में हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने आसपास में जहाँ भी गौशाला हो या कहीं भी हो तो अपने गौशाला में बर्थडे मनाना चाहिए, वहाँ चारे की व्यवस्था करनी चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, या टीन शेड लगाना चाहिए, या कूलर की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा सभी युवाओं से भाई बर्थडे वहाँ गौशाला मनाना चाहिए, आप मनाओगे, आपके दोस्त मनाएंगे, इससे हजारों लोग मनाएंगे, तो आप गौशाला के लिए गायों के लिए अपना फायदा मिलेगा।
1: और वही साथ ही साथ जानना चाहूंगा कि आपको कई सम्मान मिले लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार क्या था?
0: मेरे को सम्मान का मैं शौक नहीं, मेरे को वन्य जीवों की सेवा करता हूँ, मेरे ये सबसे बड़ा ये सम्मान है। मेरे को 2025 में राज्यपाल ने और मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया था उदयपुर में, वो सम्मानित मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे वन्य जीवों के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, वो मेरे सबसे बड़ा सम्मानित है। मैं सबसे यही कहूंगा ये जो सम्मान मिला ये सब आपकी बदौलत मिला है, वन्य जीवों का आशीर्वाद से मिला है, और मैं तो निरंतर जब तक सांस है तब तक ये सेवाएं करता रहूंगा।
1: वही मैं साथ ही साथ जानना चाहूंगा कि आप आने वाले समय में आपके कौन कौन से नए लक्ष्य हैं और क्या क्या योजनाएं हैं आप वन्य जीव के लिए और क्या क्या करना चाहते हैं?
0: मैं अब तो बारिश की सीजन आएगी तो मैं हर साल पेड़ पौधे लगाता हूँ, पेड़ पौधे लगाता हूँ, पानी भी पिलाता हूँ, वो नहीं को पेड़ पौधे लगा दिए फोटो लगा दिए फोन नहीं, पेड़ पौधे लगाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, उनको बड़ा भी करता हूँ। सब भी युवा से ये कहूंगा अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, सभी युवा अपने आसपास अपने घरों में अपने स्कूलों में या गार्डनों में पेड़ पौधे लगाएं तो अपने गर्मियों में इस पेड़ पौधे से राहत मिलेगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और धर्मेंद्र जी आपने अपने कार्यों से ये साबित किया है कि आप समाज बदलने के लिए बड़े संसाधनों से ज्यादा बड़ा दिल और मजबूत संकल्प चाहिए। हमारी पूरी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ प्रोग्राम युववाणी में जुड़े। पेड़ों की छांव, परिंदों की प्यास और धरती की मुस्कान, यही है इंसानियत की सबसे खूबसूरत पहचान। जो जीवों की रक्षा में अपना जीवन लगा दे उससे बड़ा नहीं होता है कोई और इंसान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आज आप हमारे साथ प्रोग्राम युववाणी में पधारे और जो भी आपके एक्सपीरियंस है, जो भी आपने आज तक अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है वो सारी बातें हमारे साथ साझा की, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: સાધના દ્વારા પાછોની ચોકીસી ભેટ વાર્તા સામાજિક કાર્યકર્તા શ્રી ધર્મેન્દ્ર વિષ્ણુ સુની તેજ દેવડારી બાતચીત ઇણમાં જીવ દયા પર ચોકી ચોકી બાતા કરી ઉણાને પાણી પિલાણું રહેણ ઉનકી રહેણ વાસ્તે વ્યવસ્થા કરણી ઓર સગળા મેનખાને પૂરે સમાજને વન્ય જીવારી સુરક્ષા વાસ્તે જાગૃત કરના।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सदन ब्रेक के बाद आप फिर स्वागत है। फरमाइश है जी के लोगों लग मा दूर पहुंचन लाग रही है। बालर वासों फरमाइश लिखन वे जी है शरण कुमार सुथार और जुगत सिंह। साथ ही साथ गांव लूणी जोधपुर से फरमाइश लिखन वे जी है सबाना बानो काजोल और आदिल खान और रुखसार बानो। मांगीलाल जी सिरवी अपने साथ जुड़िया है चेन्नई से।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
4: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
4: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
4: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
4: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
4: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

छतरा यदि आप मासो प्रोग्राम में जुड़ना चाहो, आप फरमाइशा भेजना चाहो, आप पसंद रा गीत सुनना चाहो, तो आप माने व्हाट्सएप पर नंबर माते मैसेज लिखा ने भेज दे रहो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94133-29-359। कई फरमाइशा है जिकी माँ दूर पहुँचती हुई है। मोखा बाड़मेर से फरमाइश लिखन भेजी है प्रहलाद सारण। सुमित जांगिड़ है जगह अपने सागे जुड़िया है माता का थान जोधपुर से। और कंवरा राम सारण, सतीश सारण, चंद्रिका फरमाइश लिखन भेजी है खारिया खुरद बाड़मेर से। भेड़े भेड़े नाग सिंह जी राजपुरोहित अपन फरमाइश लिखन भेजी है गाँव मीठा तहसील सिंधरी से।

इनमें कंप्यूटर, मोबाइल, सैटेलाइट और घणी मशीना आपने जीवन में आई, लेकिन अब आपारे बीच में आर उबो है एआई। एआई रो पूरो नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनरो उपयोग कंप्यूटर मोबाइल माते हुए मोटी बात आ है कि कई मिनखा रो ओ काम है जको अकेलो कर देवे। तो लोगों ने डर भी लागे कि मारी नौकरी है भी को काई हुसी। इनमें घना कम टाइम के मान AI काल्पनिक फोटो बना सके, वीडियो एडिट कर सके, आपा खुदरा प्रोजेक्ट सारू जरूरी जानकारी ले सका। देश दुनिया रे हर हिस्से और मिनखा से जुड़ी उड़ी जानकारी आपन एक क्लिक में मिल जावे। पर आपा सब देखता आया हाँ कि कोई नई टेक्नोलॉजी आवे तो मिनखा ने अपना उतना टेम लागे और डर भी, और ये सब लाजमी भी है। लेकिन इनरो उपयोग आपा खुदरी जानकारी बढ़ावन सारू करा, खुदरे व्यापार वास्ते नई नई मार्केटिंग रणनीति बना सका, कुछ भी लिखने री कला, संगीत री कला आपा सीख सका। बस ध्यान में रहना चाहिए कि इनरो उपयोग आपा समाज रे हित और खुदरे जीवन ने आसान बनान सारू ही करा, इनरो दुरुपयोग नहीं करा। तो डरनो नहीं है और इन बदलते जमाने सागे खुद ने भी बदलनो है।

सजना राजस्थानी में एक कहावत है, घी ढोलिया मारो की नहीं जावे, पानी ढोलिया जीव जावे। सजना जिंदगी ने जीवन वास्ते पानी रो घणो मोल है, और आ बात आपा राजस्थान में बैठर मारवाड़ री और इशारो करता थका करा तो इन रो मोल और बढ़ जावे। घरणी पुरानी बात कोनी, जद आज जका युवा मिनक है उनारा परिवार में बड़ा बूढ़ा मिनक पानी बचावन रे सारू, दिन में एक दो बार तो कई देवता की पानी ने क्यों कमाओ। इन रो बचाव करो, संरक्षण करो, काई ठा हो कि आ समस्या घणी बढ़ जाए। बदलते पर्यावरण में बरसात री कमी सालों साल ज्यादा होती जान लाग रही है। भूजल रा स्रोत है जगह खत्म हो रहा है। सरकार पानी घर घर पहुंचा तो रही है, लेकिन समय समय माथे इन री कमी रो एहसास भी आपन हुए। और जो पानी आवे वो कतोक साफ है, पीवन जोगो है कोनी है, इन रो सवाल घनी बार उठे। नीति आयोग री रिपोर्ट रे सारू 60 करोड़ लोग जल तनाव रो सामनो अबार कर रिया है पानी री कमी हो। पानी यदि प्रदूषित है तो उनसू सालाना 2 लाख है जिकी अकाल मौतां भी हो रही है। केंद्र सरकार 2019 में जल जीवन मिशन शुरू तो करियो, उन टाइम घर घर नल जगह पुग्या, उना रोज को प्रतिशत है वो है 16.72%। वर्तमान में उनरी बढ़ोतरी हुई है 82.03% रियो है। विचार लायक बात तो आ है कि जगो पानी आपा काम में ले रिया हाँ पीवा हाँ, जगो भारत में है 70% जगह सतही पानी है वो दूषित है। ये सब आंकड़ा कोनी, आने वाले भविष्य सारू घनी मोटी चेतावनी है। आपा सभा ने मिलर जल स्रोत रो बचाव करनो चाहिए, उनारी साफ सफाई रो ध्यान रखनो चाहिए, बरसात रे पानी रो भंडारण करनो चाहिए, ताकि इन पानी री लड़ाई में आपा जीत सका, खुद रो और आने वाली पीढ़ी रो जो को जीवन है बिना आपा सोरो बना सका।

साधना और फरमाइशें जगह पहुंची है। मेरा नाम बावड़ी जोधपुर सूँ, लिखने वाला है चेलाराम मेघवाल, रविंद्र, देवेंद्र, अनीता और फूली देवी, बीक सिंह राठौड़, विजेंद्र, रक्षा, मोनिका, जसो कंवर सोलंकी। अपने साथ जुड़िया है गांव चोरड़िया, तहसील सतरावा, फलोदी सूँ, गाँव इसरोड़, चौहटन सूँ। अपने साथ जुड़िया है जसवंत बेनीवाल, दलपत बाना, नवल किशोर बेनीवाल, भेड़े भेड़े दिने सोडा।

0: FM बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति

0: की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। समय हो चला है गुड इवनिंग FM का।

For 2.1 FM friends, this is Radio Sansri and I am your host and दोस्त विनीता जैन. खूब सारी बातें करेंगे, बातें होंगी कुछ काम की, कुछ ज्ञान की और साथ ही करेंगे सुरों से दोस्ती भी. ज्ञान की बातों में होगी खास बातें सोशल नॉलेज और महीना जून का, और साथ ही होगी काम की बातें, और तो काम की बातों में खास बात होगी करेंसी नोट की हिफाजत और हेल्दी लाइफ स्टाइल. फ्रेंड्स, बातों का क्या है, 7 बजे तक यूं ही आप और हम मिल बैठेंगे और बातें करते रहेंगे. लेकिन पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं ये प्यारा सरगम.

फ्रेंड्स, जीवन उतना जटिल नहीं होता है जितना कि हम कर देते हैं। बहुत सारे लोग अपनी सेहत को लेकर परेशान रहते हैं, हो भी क्यों ना, जान है तो जहान है। फ्रेंड्स, सेहतमंद रहने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल का होना बहुत ज़रूरी है। हम स्वस्थ तो सभी रहना चाहते हैं, पर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत कम लोग चाहते हैं। तो स्वस्थ कैसे रह पाएंगे? याद है आपको, जब हम छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तब हमें स्कूल में एक पोइम याद करवाई थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसी पोयम का हिंदी वर्जन हमें स्कूल में सिखाया था, शायद आपको भी सिखाया हो। वो कविता कुछ ऐसी थी, जल्दी सोना जल्दी उठना नियम बहुत ही अच्छा है, जो भी इसका पालन करता वो ही अच्छा बच्चा है। बचपन में नियम का पालन कर लिया क्योंकि हमें पोयम सिखाई थी, कविता सिखाई थी, और मम्मी पापा का कंट्रोल भी था, और तो हम अच्छे बच्चे भी कहलाए। अब क्यों हम इस अच्छाई से पीछे हटते जा रहे हैं, क्यों इस अच्छाई को छोड़ते जा रहे हैं? क्योंकि देर रात तक हम बैठे रहते हैं मोबाइल लेकर।

लैपटॉप लेकर, कंप्यूटर लेकर, कुछ नहीं हुआ तो टीवी लेकर, टीवी पे कोई मूवी चलाकर हम बैठ जाते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हम यदि जल्दी सोएंगे नहीं तो जल्दी उठेंगे कैसे, और जल्दी उठेंगे नहीं तो हमारा अगला दिन जो है वो पूरा डिस्टर्ब रहेगा। सुबह के काम दोपहर तक होंगे, दोपहर के काम शाम तक होंगे, और शाम के काम शायद होंगे ही नहीं, क्योंकि शाम को फिर वही हो जाएगा, हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, सोशल मीडिया, और उसी पर हम बिजी। तो हम हमारे काम टाइम पे कर ही नहीं पाएंगे, और ये काम टाइम पे नहीं होंगे, और हमारा साथ ही हमारा स्वास्थ्य जो है वो भी कुछ इफेक्टिव रहेगा, तो स्वस्थ हम नहीं रह पाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारा जीवन, हमारी लाइफस्टाइल को व्यवस्थित रखें।

ट्रेंड्स हम बातें कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की, तो क्या हमने गौर किया है कि हम क्या खा रहे हैं, हमारी थाली सेहतमंद है या नहीं, और हम जो खा रहे हैं वो आहार जो है वो कहीं संयुक्त विरुद्ध आहार तो नहीं है, यानी जो कॉम्बिनेशन हम खा रहे हैं वो बैड कॉम्बिनेशन तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमने एक चीज़ खा ली और उसके साथ में दूसरी चीज़ ऐसी है जिसे खाने से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है या हमारे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हमने दूध से बनी हुई चीज़ें खाई और साथ ही साथ दही से बनी हुई चीज़ें या दही भी खा लिया, तो वो जाके फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इसके लिए हमें संयुक्त विरुद्ध आहार का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो खा रहे हैं उससे हमारा पेट तो भर जाएगा लेकिन उससे जो हमें शरीर को ऊर्जा मिलनी चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हमारी सेहत को पुष्ट करती हैं, वो हमें मिल रहे हैं या नहीं, इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़रा सा समय अपने लिए निकालिए और सोचिए अपनी

फूड हैबिट्स कैसी हैं, अगर वो बैड हैबिट्स हैं तो उन्हें सुधारने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए साधारण परिस्थितियों में आपका स्वास्थ्य उत्तम ही रहेगा।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: कार्यक्रम चल रहा है गुड इवनिंग FM, और गुड इवनिंग FM में हम अभी बातें कर रहे हैं हेल्थी लाइफस्टाइल की। तो गेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से छठा महीना होता है जून महीना, और जून महीने में बहुत सारे ऐसे दिवस मनाए जाते हैं जो कि हमें स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमें संदेश देते हैं। जैसे 3 जून को हमने मनाया विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस मनाने के पीछे ऑब्जेक्ट यही है कि साइकिल को फिर से प्रमोट करें। जो साइकिल आजकल बच्चों से भी लुप्त होती जा रही है, बच्चे छोटी उम्र में साइकिल सीखते ज़रूर हैं लेकिन बस वो सीखने के लिए ही सीखते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं वो साइकिल का दामन छोड़ देते हैं और अपना लेते हैं टू व्हीलर्स का दामन, यानी टू व्हीलर्स चलाने लगते हैं, जबकि उन्हें लाइसेंस नहीं मिलता है। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना तो अपराध है, अपराध भी है और साथ ही साथ हमारे लिए नुकसानदेह भी है, चालान भी हो सकता है। इसी तरह से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भी हमें संदेश देता है कि स्वच्छ पर्यावरण होगा तो मानव स्वस्थ रह पाएंगे। इसी तरह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति भी है। योग भगाए रोग, तो क्यों ना अपनाएं योग। ये कुछ प्रमुख दिवस हैं जिनकी चर्चा हमने की। इसके अलावा भी कुछ और दिवस भी हैं, जैसे वो ब्लड डोनर डे भी था, इसी तरह से वर्ल्ड ट्यूमर डे भी था। तो ये सभी जो दिवस हैं, सभी यानी बहुत सारे ऐसे दिवस हैं जो जून महीने में मनाते हैं और वो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। तो ये जो जून महीना है ये भी हमें स्वस्थ रहने का संदेश देता है। जून महीने में गर्मी तो भयंकर पड़ती है लेकिन इस भयंकर गर्मी में भी यदि हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, यदि हम खाने पीने का बराबर ध्यान रखेंगे तो हम लू के प्रकोप से बच पाएंगे, तापघात के प्रकोप से बच पाएंगे। बहुत ज़रूरी है लाइफस्टाइल का बहुत ध्यान रखें। अभी गर्मी ज़्यादा है तो जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उन्हें ज़्यादा पिए, कोल्ड ड्रिंक्स यानी छाछ पिए, पानी तो पीना ही है, कुछ शरबत पिए जा सकते हैं जिससे हमारी शरीर में हाइड्रेशन बराबर रहे, डिहाइड्रेशन के शिकार हम ना बने, और जब ऐसा रहेगा तो स्वस्थ तो हम रहेंगे ही। वैसे भी अभी चल रही है गर्मी की छुट्टियां, और गर्मी की छुट्टियों में छुट्टियां इसीलिए होती है कि हम हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएं।

0: सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
3: आज ही पधारे लाल जी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
2: लाल जी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
4: लाल जी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
5: स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे कार्यक्रम गुड इवनिंग FM में। चलिए कार्यक्रम में एक ट्विस्ट लाते हैं, एक नया मुद्दा उठाते हैं। मुद्दा है सोशल नॉलेज का। डिजिटल हो रही दुनिया में टिन एजर्स ने एक नई शब्दावली ईजाद की है। ये बहुत कुछ शॉर्ट हैंड से मिलती जुलती है। चैटिंग से जुड़ी शब्दावली के कुछ कॉमन चैटिंग वर्ड्स जो हैं वो तो हम सभी जानते हैं, हम सभी यूज़ भी करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल चैटिंग वर्ड्स हैं, उनमें से कुछ वर्ड्स आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। कुछ क्या, दो ही वर्ड बता रही हूँ। एक वर्ड आता है YSK, तीन लेटर्स का ये वर्ड है, और इससे आप क्या समझते हैं। इसी तरह से है WBU, इन तीन अक्षरों से आप क्या समझते हैं। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए, कुछ जोड़ तोड़ बिठाइए। एक लवली सॉन्ग हमारा इंतजार कर रहा है, हम और आप सभी मिलकर सुनते हैं। साथ ही साथ आप कुछ जोड़ तोड़ बिठाने की कोशिश कीजिए, और उस गाने के बाद में मैं बताऊंगी आपको क्या होता है YSK WBU।

सोचा आपने? कुछ जोड़ तोड़ बैठा? चलिए मैच कीजिए अपने जोड़ तोड़ को सोशल मीडिया की शब्दावली से। हमने आपको पूछा था YSK और WBU का विस्तार क्या होता है, आपको ढूंढना था, तो शायद आपने ढूंढा भी होगा, आपको ध्यान भी होगा। चलिए मैच कीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या है विस्तार YSK WBU का। तो YSK का विस्तार है यू शुड नो, यानी आपको पता होना चाहिए। अक्सर इस शब्द का प्रयोग किसी तरह के विचार विमर्श में किया जाता है या जो सोशल मीडिया पे चैटिंग करते हैं उस चैटिंग में, जैसे थैंक यू के लिए हम TY लिख देते हैं, उसी तरह से YSK यानी यू शुड नो, आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी, आपको पता होना चाहिए था। इसी तरह से मैंने आपको एक और शब्द बताया था WBU, तो उसके लिए भी आपने ढूंढा होगा, नहीं तो अब थोड़ा सा वेट कीजिए और मशक्कत कीजिए, शायद आपको WBU का जो विस्तार है वो आपको पता चल जाए।

एक और विस्तार की चर्चा हमें करनी बाकी है। आपने उस विस्तार को सोचा होगा, WBU। इसका विस्तार है व्हाट अबाउट यू, यानी आप कैसे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर इस शब्द का प्रयोग यूथ्स अपनी स्थिति बताकर फिर दूसरों के बारे में पूछते हैं। जैसे जैसे किसी ने कहा कि आई एम गोइंग टू US दिस ईयर, व्हाट अबाउट यू। तो व्हाट अबाउट यू के लिए वो लिख देते हैं WBU। अब अबाउट में बी क्यों आया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ए को चैटिंग लैंग्वेज में नहीं गिनते हैं, बाउट, तो बी आ गया, और यू को हम सिंपल यू लिख देते हैं, तो WBU यानी व्हाट अबाउट यू।

फ्रेंड्स, हमने आज की गुड इवनिंग एफएम में बहुत सारी बातें की, कुछ ज्ञान की बातें की, कुछ काम की बातें की. एक और मुद्दा है जो ज्ञान का मुद्दा भी है, काम का मुद्दा भी है और हमारी लाइफस्टाइल में होना बहुत ज़रूरी है, और वो मुद्दा है करेंसी नोट्स की हिफाजत. फ्रेंड्स, आपको याद होगा आज से करीब 25-30 साल पहले करेंसी नोट्स के जो फ्रेश पैकेट्स आते थे वो स्टेपल्ड होते थे. यदि आपको याद नहीं हो या यदि आप यूथ हैं, आपने कभी वैसा नहीं देखा है, तो दिवाली पूजन पर जो पुराने पैकेट्स रखे जाते हैं, थाल में सजाकर रखे जाते हैं, उन पैकेट्स को एक बार देखिए ज़रूर. वो स्टेपल्ड दिखेंगे, पर आरबीआई ने आजकल फ्रेश पैकेट्स जब इशू करते हैं तो उसे स्टेपल करना बंद कर दिया है. आपने सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि उन पर स्टेपल करने से उसमें छेद हो जाते हैं, तो आजकल उस पर सिर्फ एक प्लास्टिक की रिंग ही लगी होती है. क्योंकि स्टेपल करने से नोट में छेद हो जाते हैं और पिन निकालने में यदि असावधानी हो जाए तो वो नोट फट भी सकता है, नोट की लाइफ कम हो जाती है. नोट का कागज़ जो है वो इम्पोर्ट होता है और उसकी छपाई भी बहुत महंगी होती है, उसके जो कलर्स हैं वो भी महंगे होते हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट भी लगती है, इंक महंगी आती है. कुल मिलाकर कई बार तो ऐसा होता है कि छोटे नोट्स की वैल्यू जितनी है उससे ज़्यादा तो उसे इशू करने तक उस पर एक्सपेंसेस हो जाते हैं. और हम क्या करते हैं, हम कोई भी छोटी बड़ी कैलकुलेशन करनी है, यदि हमारे आसपास कागज़ नहीं दिख रहा है, उठे कौन, तो जेब में नोट पड़ा है उस नोट पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं. जैसे किसी को पेमेंट करना है, बस वो पेन से उस नोट पे पेमेंट की काउंटिंग की और हमने वो पेमेंट दे दिया, या कोई हिसाब करना है तो उस नोट पे कर लिया. कुछ लोग क्या करते हैं कि वो नोट जो है उसे बहुत सारे फोल्ड करके अपने पर्स में रखते हैं, तो उस

जितने फोल्ड करेंगे उतने उस पर फोल्ड हो जाने से उसकी लाइफ कम हो जाएगी। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं या यूथ्स हैं, वो उस पर कोई भी तरह की ड्राइंग बना लेते हैं। और कुछ लोग तो बड़े कमाल के होते हैं, किसी को उस नोट पर कोई अपना पसंदीदा नंबर दिखा तो अब इस नोट को तो मुझे संभाल के रखना है, इसे खर्च नहीं करना है, इसे जमा नहीं कराना है, तो उस नोट के कई तरह के शेप बना लेते हैं, फ्लावर्स बना लेते हैं और उसे अपनी पॉकेट में रख लेते हैं या अपने घर में, अपनी अलमारी में, अपने शोकेस में, कहीं भी ले जाकर रख देते हैं। क्या इससे नोट की लाइफ कम नहीं होती? थिंक अबाउट इट। क्या वो लंबे टाइम तक सर्कुलेट में रह पाएंगे? नहीं ना। तो नोट्स की हिफाजत का पूरा पूरा ख्याल रखें। और ये जिम्मेवारी किसकी है? ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आम नागरिक की है। सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें भी हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व सब समझना होगा। सागर में बूंद सरीका ही सही, पर देश की इकोनॉमी के लिए ये हमारा एक छोटा सा योगदान है। इस योगदान को ज़रूर निभाइए, निभाने से हमारे देश की इकोनॉमी में कुछ अंश में, बहुत कम अंश में हमारा योगदान हो पाएगा।

पैसा होना अलग बात है, लेकिन पैसों का सही यूज़ होना अलग बात है। कई लोगों के पास दौलत होती है, लेकिन दौलत का वो सही तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धन की गति अरु तीन है, दान भोग और नाश। दान भोग में ना लगे तो निश्चय होत विनाश। यानी यदि हमने खुद के काम में नहीं लिया, खुद के खाने पीने खर्चने में काम में नहीं लिया, किसी ज़रूरतमंद को नहीं दिया, तो उस पैसे का विनाश होना निश्चित है। यानी कुछ समय में और दौलत के लिए ऐसा भी कहा जाता है, लक्ष्मी चंचल है, वो हर समय हमारे साथ रहेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चंचला है, आज हाथ का मैल है, आज हमारे हाथ में, कल किसी और के हाथ में। बहुत सुंदर एक लाइन है, जिस मंजिल को पाने के लिए जिस रास्ते पर चल रहे हो, उस रास्ते का लुत्फ उठाओ, उस रास्ते पर उलझने की कोशिश ना करो। मंजिल को अगर पाना है तो जल्दबाजी करने की कोशिश ना कर, है ना, तो कुछ चीज़ें हालातों पर छोड़ देनी चाहिए, है ना। गुड इवनिंग एफएम का आज का सफ़र बस यहीं तक, होगी फिर मुलाकात कुछ नई काम की और कुछ ज्ञान की बातों के साथ। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त विनीता जैन को इजाज़त। डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। Bye-bye.

एफएम बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। अब से 8:45 तक हम सुनेंगे राष्ट्रीय प्रसारण सेवा विविध भारती पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला। पहले सुने कार्यक्रम जयमाला।

कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत हेमंत कुमार और साथियों की आवाजों में, गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीतकार हैं नौशाद और फिल्म का नाम है गंगा जमुना।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत, गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रोबीला और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन, कौन
2: लव स्टोरी। इस फिल्म का गीत सुनिए अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

नूरी। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है नक्श लायलपुरी, तर्ज है खयाम की।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन है कल्याण जी आनंद जी की और फिल्म का नाम है गजब।

0: रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय माला।

हे विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिए राग अनुराग में रागों पर आधारित कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। गीतकार हैं भरत व्यास, संगीतकार हैं सी रामचंद्र और ये गीत आधारित है राग माल कौंस पर। फिल्म का नाम है नौ रंग।

अगला गीत है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं भरत व्यास, संगीतकार हैं एसएन त्रिपाठी। फिल्म का नाम है रानी रूपमती और ये गीत आधारित है राग मधु माधवी सारंग पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है रोशन, फिल्म का नाम है ममता और ये गीत आधारित है राग यमन पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग में आज आपने सुने रागों पर आधारित कुछ फिल्मी गीत।

हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं झलकी वो कैसी होगी, लेखिका सुधा जौहरी, प्रस्तुतकर्ता H.S. व्यास।

0: वही तो उठाओ मुझे।
1: अरे अरे राम, कैसे चलती हो माँ? क्या हुआ?
0: अरे अरे बेटा उठाओ, हाथ तो पकड़ो बेटा।
1: अरे हाथ दो ना माँ।
0: अरे मार दिया।
1: अरे भगवान को दुआ दो अम्मा के हड्डी पसली नहीं टूटी, और भीड़ भाड़ की वजह से स्कूटर की स्पीड कम थी।
0: अरे बेटा मैं तुम्हारी अपनी ही धुन में चली जा रही थी, तुम्हारे स्कूटर से ना मेरा थैला टकराया और बस फिर पैर उखड़ गए बेटा।
1: लगी तो नहीं ना अम्मा?
0: अब बेटा बुढ़ापे का शरीर है तो गिरी तो झटका तो लगा ही ना, भीड़ को देखो कोई मेरा रुका भी नहीं। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो बेटा?
1: मैं तो यही पास सब्जी मंडी तक।
0: अच्छा बेटा तो चलो मुझे भी वहीं पर उतार देना, मुझे भी उधर ही जाना है, फिर मैं चली जाऊंगी।
1: अच्छा कुछ पानी वानी पियोगी अम्मा?
0: नहीं अब ठीक है बेटा, अब चले।
1: अच्छा लो बैठो पीछे। हाँ, हाँ, कस के पकड़ना मुझे।
0: हाँ, बेटा।
1: और सड़क पर चलो ना अम्मा तो दाएं बाएं देख के चला करो। हाँ
0: अरे वो तो मैं बड़ी होशियारी से चलती हूँ हमेशा, वो तो क्या है ना आज मंगलवार है तो हनुमान चालीसा बोलती जा रही थी, वो तो अच्छा हुआ कि पवन सुत ने बचा लिया।
1: वैसे कौन हो अम्मा, कहाँ रहती हो?
0: अरे बेटा मैं कौन, छोटी थी तो सब शंभू की छोकरी कहते थे, बड़ी हुई तो राम नारायण की बहू, फिर शंकर की अम्मा और अब सोनू की दादी।
1: फिर भी माँ बाप ने कोई तो नाम रखा होगा ना अम्मा है?
0: हाँ बेटा रखा था नाम शारदा। अरे बेटा तुम्हारा नाम क्या है?
1: मेरा नाम अंशु, अंशुमान।
0: ओ अंशु, ये तो बेटा आंसू जैसा नाम लगे, आगे क्या बोला बेटा?
1: मान, अंशुमान। सूरज को कहते हैं अम्मा।
0: अब आजकल के नाम तो बेटा समझ में भी ना आवे, अब मेरा ही नाम देखो ना शारदा, नाम विद्या की देवी और पढ़ी कुल पांचवी तक। अरे बेटा सब्जी मंडी तो आ गई।
1: हाँ, आपको कहाँ उतारूँ अम्मा, मुझे तो यहीं सामने जाना है।
0: बस बेटा यहीं सामने उतार दे। अरे ये तो कुछ जासूस इंटरनेशनल है बेटा, तुम जासूसी करते हो?
1: नहीं नहीं वो तो ऐसे ही कुछ काम है अम्मा।
0: अच्छा भगवान तेरा

0: भला करे। अच्छा चलती हूँ।
1: क्या बुढ़िया है, वहाँ तो हाय हाय कर रही थी और अब क्या फुर्ती से जा रही है मटक मटक कर। खैर
2: जैन सर, ये जासूसी कंपनी खोले एक हफ्ता हो गया पर कुल 2 केस आए और वे भी हमसे सुलझे नहीं।
3: यू नो मधु, हर काम में वक्त लगता है। पहले कुत्ता खोने का केस आया था, दे वर स्टूपिड पीपल। छोटा कुत्ता छत पर चढ़ गया, उतरना उसको आता नहीं था और बस उन्होंने शोर मचा दिया।
2: राइट सर, एकदम बुद्धू लोग थे।
3: और दूसरा, लड़की भागने वाला, हम तो उसे ढूंढ ही लेते पर लड़की समझदार थी, ब्राइट गर्ल। पता चल गया उसको कि दोस्त गड़बड़ है, सो घर लौट आई।
2: अगेन यू आर राइट सर।
3: यू नो ये शहर बहुत बड़ा यानी मेट्रो टाइप नहीं है। जब मैं न्यूयॉर्क में था
2: सर, लाल बत्ती जली, कोई गेट पर है सर।
3: देखो देखो उस छिपी खिड़की से देखो, मैं भी देखता हूँ।
2: वो देखिए सर, स्कूटर पार्क करके एक नौजवान आ रहा है।
3: हाँ, तुम बाहर के ऑफिस में जाओ क्विक। बस इसे ऐसा लगना चाहिए हम बेहद व्यस्त जासूस हैं। यू नो द यूजुअल ट्रिक्स।
2: ऑफ कोर्स सर, 5 मिनट में लेकर आती हूँ। गुड लक सर।
3: तब तक मैं ऑफिस जमा लूँ। ओहो, कितनी मिट्टी है मेज पर, साफ करने का भी वक्त नहीं है। खैर देखा जाएगा। हाँ, मेरी किताब है, ये मोटी वाली खोल लेता हूँ।
2: मे आई कम इन सर?
3: कम इन।
2: सर ये मिस्टर अंशुमान है।
3: हेलो, आई एम जयंत, जयंत भंडारकर।
1: हेलो सर। सर आप अभी लेंस से क्या देख रहे थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
3: आप देख रहे हैं ना मेज पर कितनी धूल है, इस पर जो भी आता है अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ जाता है। और भी बहुत कुछ है, वो हमारी सीक्रेट स्पेशल बातें हैं।
1: जी जी।
3: मैं बता नहीं सकता। कहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं?
1: वो बात ये है सर कि वो क्या हुआ कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी है सर।
3: और आप करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप किसी और लड़की से मोहब्बत करते हैं, राइट?
1: नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बात यह है सर कि मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ, उसे मिलना चाहता हूँ और उससे भी पहले ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़की है कैसी।
3: तो आप उसके घर या कॉलेज को नहीं चले जाते?
1: नहीं जा सकता ना सर।
3: क्यों?
1: क्योंकि सर वो एमए कर चुकी है और उसके घर के सब लोग मुझे पहचानते हैं। लड़के लड़की को एक दूसरे को दिखाने का चलन हमारे यहाँ आज भी नहीं है ना।
3: ठीक है, आप हमें सिर्फ उसका पता दे दें फिर सब कुछ हम पर छोड़ दें। वो लड़की का नाम क्या है?
1: जी लड़की का नाम है शारदा। लाइए पता मैं लिख देता हूँ। सर आपकी फीस?
2: फिलहाल तो आप 500 रुपए जमा करा दें।
1: बिल्कुल, ये लीजिए, ये लीजिए सर। सर आप लोग कैसे क्या करेंगे?
3: लिसन मिस्टर, मेरी सेक्रेटरी मधु उससे दोस्ती करेगी, फिर वे उसको किसी सुनसान पार्क में ले जाएगी।
1: फिर सर?
3: उधर एक गुंडा इनको छेड़ेगा।
1: सर फिर?
3: दूसरी तरफ से मैं और आप आकर उस गुंडे को पीटेंगे।
1: हाँ सर।
3: मैं उसे कॉलर पकड़ कर ले जाऊंगा और आप उससे आराम से बातें करिएगा।
1: वाह, क्या बढ़िया ब्रिलियंट आइडिया है सर, क्या प्लान है सर, एकदम फिल्मी अंदाज में। बाय गॉड, मजा आ जाएगा सर।
3: आप जानते हैं न्यूयॉर्क में लोग मुझे क्या कहते थे?
1: क्या कहते थे सर?
3: जयंत नहीं, जायंट।
1: जायंट? पर सर जायंट तो मतलब वो क्या कहते हैं कि बड़ी बड़ी भारी भारी भरकम चीज को कहते हैं, और आप तो माशाल्लाह बड़े मुख्तसर से एकदम मिनी इंसान हैं, छोटे से बिल्कुल हल्के फुल्के हैं।
3: यही तो है, कोई देखने में जायंट लगता है विशाल का है और कोई दिमाग से जायंट होता है जैसे शर्लिक होम्स, जेम्स बॉन्ड, हरक्यूलिस।
1: ये सब तो सर दुनिया के मशहूर उपन्यास वाले जासूस है ना सर।
3: हाँ, और मैं असली जासूस हूँ, जयंत द जायंट।
2: सर दूसरे ऊपर के खर्चों के लिए जैसे गुंडे को देना होगा और फिर हम लोगों का आना जाना।
3: राइट, क्या नाम है आपका?
1: जी वो क्या बोलते हैं, अंशुमन। अंशुमन
3: अंशुमन, 500 रुपए और जमा करा दीजिए।
1: लीजिए सर, ये लीजिए मैडम।
3: तो ठीक है अंशुमन, हम आपको संपर्क करके जगह और दिन बता देंगे।
1: ठीक है सर, मैं चलता हूँ। सर जितनी जल्दी हो सके प्लीज। अच्छा सर मैं चलता हूँ, बाय सर।
2: सर गया, हमें 1000 रुपए दे गया।
3: पैसे लेने वाले गुर तो तुम्हें याद है ना मधु?
2: यस सर, पहले 500 रुपए बोलो, अगर उसके चेहरे पर कोई रेखा ना उभरे तो किसी बहाने 500 और मांगो, और फिर कोई रिएक्शन ना हो तो

0: आंसर और
1: खैर अब तुम बताओ उस लड़की शारदा से दोस्ती कैसे करोगी?
0: वो तो मैं कर लूंगी, पर गुंडे का इंतजाम वो मुझसे नहीं होगा।
1: अरे दूर जाने की क्या जरूरत है, मेरा भाई है ना, वो मेरी बुआ जी का लड़का, वो तो लड़की छेड़ने की बात सुनते ही फौरन मान जाएगा।
0: आप चंद्र जी की बात कर रहे हैं? वो तो इतने हैंडसम हैं, गुंडे कैसे लगेंगे सर, और फिर वो तो जेंटलमैन लगते हैं।
1: मेकअप माय डियर मेकअप, तुम बस देखे जाओ।
0: पता तो यही लगता है, वो पीला वाला घर है। चलो घंटी बजाते हैं। चल मधु, ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डरना।
2: जी कहिए, क्या काम है आपको?
0: मैडम मैं कुछ सर्वे कर रही हूँ इस क्षेत्र की महिलाओं का, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ?
2: हाँ हाँ आइए बैठिए, अब पूछिए जो भी पूछना है आपको।
0: आपका नाम?
2: टाइप किया हुआ फॉर्म है ना आपके पास, लाइए मैं खुद ही भर देती हूँ। वैसे मेरा नाम शारदा है, आप?
0: मधु, मैं मधु हूँ।
2: इस सर्वे से क्या होगा मधु जी?
0: पता चलेगा ना किस उम्र यानी एज ग्रुप की महिलाएं क्या क्या कर रही हैं।
2: अच्छा ये लीजिए, भर गया आपका फॉर्म।
0: ओ तो आपने एमए किया है, आजकल क्या कर रही हैं आप?
2: अभी तो कुछ नहीं मधु जी, सिर्फ बोर हो रही हूँ।
0: शारदा जी कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बने आपके, यानी आजकल तो चलन है फैशन है?
2: अरे नहीं मधु जी, हमारी तो परवरिश हमारे संस्कार कुछ ऐसे ही हैं। पर ये बताइए आपका है कोई खास?
0: अरे कहाँ, ना किसी ने सीटी बजाई, ना कभी किसी हैंडसम यंग मैन से टक्कर हुई, पर हाँ मन जरूर करता है कि कोई स्पेशल मिले।
2: जरूर मिलेगा मधु जी, ऊपर वाला सबका जोड़ीदार बनाता है। वैसे आप रहती कहाँ है?
0: शारदा जी बस यहीं पास ही। तुम शाम को बोर होती हो तो घूमने क्यों नहीं आती?
2: अब अकेले कहाँ जाऊँ मधु।
0: मैं भी अकेली हूँ, ऐसा करें कल शाम पार्क चलें, पर जरा सुनसान है।
2: अरे अच्छा है मधु, भीड़ भाड़ से वैसे भी जी घबराता है, मुझे तो सुनसान जगह ज्यादा पसंद है। चलो एक दोस्त तो मिली आप जैसी।
0: तो कल शाम 6 बजे?
2: हाँ ठीक है मधु, कल साथ चलते हैं। ऑलराइट, ओके मधु, बाय
0: बाय। ओके ओके।
3: चंदर, ये चंदर।
4: वो देखो वो आ रही है मधु और शारदा।
5: हाँ। जयंत भैया आप देखिए, आपकी मधु कितनी अच्छी लग रही है पिंक लिबास में, एकदम गुलाब के फूल जैसी।
4: अबे तुझे मधु को नहीं, मधु को नहीं शारदा को छेड़ना है।
5: हाँ।
4: वो देख, वो देख उधर, वो वहाँ अंशु भी छिपा बैठा है।
5: हाँ।
4: अरे वो पास आ गई है, जा।
2: सच मधु, कितनी ताजगी है हवा में, जी चाहता है इसे बाहों में समेट ले।
0: पर सन्नाटा कितना है, पता नहीं लोग यहाँ क्यों नहीं आते। शारदा देखो तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है।
2: आने दो, होगा पार्क में कोई।
0: शारदा अजीब सा आदमी है।
2: अरे कुछ नहीं करेगा, आराम से चलो। ओ देखो मिस्टर, यह बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ पर, उधर जाकर टहलो जो तुम्हारी कोहनी जो है ना लड़कियों को ना लगे।
5: एक कोहनी जरा तिरछी हो गई, आपकी ये चुन्नी भी कितनी खूबसूरत है, इसे छू लूं?
2: आपकी टोपी बनियान रुमाल और लूंगी भी बहुत खूबसूरत है, मैं भी जरा इन्हें छू लूं। ये ले गुंडा।
5: अरे मेरी
2: अरे, अरे ये खा, अरे अरे, ये भी मन।
5: अरे अरे, अरे, अरे, अरे मेरी लूंगी, मेरी लूंगी।
0: बस शारदा बस बस बस, अरे बस करो लोग आ रहे हैं। बस शारदा अरे बस करो, बस करो लोग आ रहे हैं।
5: अरे जयंत भैया मर गया। अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ?
2: तुम अंशु माँ,
5: तुम आप मुझे जानती हैं?
2: फोटो देखी है तो ये ड्रामा तुमने किया है?
5: मैं दरअसल तुम्हें देखना, तुमसे मिलना, बात करना चाहता था शारदा।
2: तो अब ये बेचारा तो बीच में ही पिट गया ना, अब उठा भाई इसे।
0: इन्हें मैं संभालती हूँ। चंदर जी अब ठीक तो है ना?
4: अरे क्या झबला हो गया, जासूसी कैसी की तैसी।
0: चंदर जी ज्यादा लगी क्या?
5: तुम्हारा हाथ लगते ही दर्द गायब हो गया मधु, लग रहा है गुलाब के फूलों का सहारा मिल रहा है।
0: हटिए भी,
2: तो इसलिए तुम जासूसी संस्था में गए थे?
5: हाँ वो, पर तुम्हें कैसे मालूम? ओ तुम्हारी शक्ल तुम्हारी आवाज पहचानी सी क्यों लग रही है मुझे?
2: वो लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है।
5: नहीं, तुम कल
6: तुम यूं अम्मा तुम ही थी ना, है? है?

0: तुम्हें भी ना?
1: हाँ बेटा, मैं हूँ शंभू की छोरी शारदा।
2: तू कैसा लगा शारदा? ए, शर्माने से काम नहीं चलेगा। चलो मैं ही बता देता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी शारदा, बस मेरी कल्पना साकार हो गई। अब तुम बताओ ना।
3: अरे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे, अरे ये इन दोनों को क्या हुआ? लगता है कि जासूसी का धंधा बंद करना पड़ेगा। ये सेक्रेटरी तो गई काम से। मधु मधु।
4: सॉरी सर, सॉरी सर। लो चंदर जी, पानी पियो।
1: क्यों मधु, हो ही गई ना हैंडसम यंग मैन से टक्कर। हट।

0: वो कैसी होगी। अभी आप सुन रहे थे ये झलकी, लेखिका थी सुधा जौहरी, प्रस्तुति HS व्यास।
1: ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए गायक और संगीतकार एआर रहमान और श्वेता शेट्टी की आवाजों में महबूब का लिखा गीत। फिल्म का नाम है रंगी।

जाए अगला गीत अलीशा चिनॉय, कुमार सानू और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं जफर गोरखपुरी और फिल्म का नाम है होंडा राज।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यह है राष्ट्रीय सेवा विविध भारती। आइए सुनिए अगला गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रावण और फिल्म का नाम है राजा।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं वाजिद खान श्रिया।

0: देश की सुरीली धड़कन।
1: FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार, आइए सुने समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट।

0: के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
2: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
1: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
3: We heard 26 delegates from
4: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है।

0: ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
1: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर ₹94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के

महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। अब से रात 11 बजे तक आप सुनेंगे राष्ट्रीय प्रसारण सेवा विविध भारती के कार्यक्रम।
1: नमस्कार साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए आशा भोसले की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देवबर्मन और फिल्म का नाम है समाधि।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अगला गीत। नगमा निगार है हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की, और फिल्म का नाम है इशारा।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में वो नगमा जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है पूजा के फूल।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। इंदिवर के बोलों को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम सुन लीजिए हिमालय की गोद में।

साथियों कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है हसरत जयपुरी, तर्ज है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है संगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: इसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया कहने लगे यहाँ हम डोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बड़ा रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में सुनने को दे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित कपूर परिवार की सदस्य हैं। परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती हैं लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोलीमा तो कोई लोला भी कहता है।

करिश्मा कपूर परिवार की ऐसी पहली महिला सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। हालांकि इससे पहले उनकी मां बबीता और चाची नीतू सिंह भी फिल्मों से जुड़ी थीं, लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया। और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने। और इस तरह करिश्मा आ गई फिल्मों में। तब उनकी पहली फिल्म आई प्रेम कैदी।

करिश्मा को अपने फिल्मी करियर को संवारने में उनकी माँ बबीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और करिश्मा ने भी अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि फिल्मों में आने का उनका फैसला गलत नहीं था।

करिश्मा कपूर के शुरुआती फिल्मी करियर में आने वाली ज्यादातर फिल्में गोविंदा के साथ आईं और बाकी की फिल्मों में भी करिश्मा के डांसेस और खूबसूरती का करिश्मा उनकी एक्टिंग पर हावी रहा।

करिश्मा कपूर एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो खुद भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

करिश्मा कपूर की कुछ और चर्चित फिल्में थीं अनाड़ी, खुद्दार, राजा बाबू, कुली नंबर वन, बीवी नंबर वन, शक्ति, राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल। आइए सुने कुछ सुरीली झलकें।

0: रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

प्रस्तुत है छाया गीत, सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, मैं आजकल सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। हाँ, मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। ढूंढ रही हूँ उसे, दुख का दरवाजा खुला, करुणा के कमरे में झांका, हंसी को हटाकर देखा, सपनों की भी तलाशी ली, कहीं न मिला तो आज ही थाने में जाकर रपट लिखाती है कि प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है। हाँ, प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है एक भी पल।

कहते हैं चखे बिना तो नमक तक की परख पूरी नहीं होती, और मैंने मोहब्बत कर ली, स्वाद चख भी लिया। हाँ, कैसे थे मोहब्बत के वो पल, इश्क की वो गलियां। अब कुछ याद नहीं रखना चाहती मैं, कुछ भी तो याद नहीं रखना चाहती।

तुमसे ही की थी मोहब्बत। हाँ कुछ कुछ याद है मुझे, पर अब मैं भूलने लगी हूँ। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरेदो। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरेदो। मेरे सीने में गुलाब भर भर के बिखेर तो चाहे। मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ कि तुम करते थे मुझसे कभी प्यार। चूमते थे मेरी पेशानी को, मेरे हाथों पर करते थे बोसों की अनगिनत बरसात। हाँ भूल चुकी हूँ मैं अब सब, भूल चुकी हूँ मैं अब सब।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बदल चुकी हूँ मैं, भुला के तुमको आगे बढ़ चुकी हूँ मैं। और प्रेम ही तो सब कुछ नहीं है, हुँ? ये न तो मांस है, न ही कोई पे, न नींद, न तूफानी बारिश से बचने के लिए छत, नहीं डूबते हुए लोगों के लिए कोई तैरता हुआ सहारा। फिर क्यों करूं मैं मोहब्बत, क्यों याद रखूं तुम्हें मैं, हाँ फिर क्यों तुम्हें याद रखूं मैं।

जीवन में जो आई थी उमंग, पतझड़ में जो आया था वसंत, सर्दियों की वो बहकी बहकी रातें, प्यार की सारी वो गहरी गहरी बातें, वो प्रेम को निभाने का अटल इरादा, हमेशा साथ रहने का वो वादा, सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तुमने आसानी से कह जो दिया था, भूल जाओ ये सब, और मैं भूल गई हूँ सब, सब कुछ, सब कुछ।

जब प्यार खत्म होता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है। निसंदेह तुम्हारे जाने से घर खाली हो गया था और जीवन सूखी बंजर जमीन, पन्ने जिंदगी के खाली रह गए थे। दिल के किसी सुनसान कोने में पीड़ाएं चुपचाप घर कर गई थीं। हाँ, ये सच है, पर अब समय का मरहम उन्हें भर चुका है। हाँ, समय का मरहम उन्हें भर चुका है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मेरा साथ दे ना दे, मैं अब आजाद हूँ। अब मैं अपने वश में हूँ। हाँ, अब मैं अपने वश में हूँ, किसी और के नहीं।

मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें

तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

0: जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

एफएम बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटिव चैनल है। आइए सुने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार। समाचार पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में होंगे।

0: हजार करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटिव चैनल है। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सवेरे 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।